सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार दिनांक 22 मई वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आपके साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था।

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये मिट्टी केवल धरती नहीं, हमारी पहचान है। इसकी खुशबू में त्याग है, इसकी हवाओं में वीरों की गाथाएं हैं। देश प्रेम केवल शब्द नहीं, बल्कि वह भावना है जो हमें अपने लोगों और अपनी संस्कृति से जोड़ती है। जब दिल में वतन के लिए सम्मान हो, तभी सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्ति जन्म लेती है। इसी भावना के साथ प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

0: के पास बांह उठे।
1: माँ वह शक्ति है जो बिना थके हर परिस्थिति में अपने बच्चों का संबल बनती है। उसकी दुआएं जीवन की सबसे बड़ी दौलत होती है। दुनिया बदल जाए लेकिन माँ का प्रेम हमेशा वैसा ही रहता है, निश्चल, निस्वार्थ और अनंत।

ईश्वर दिखाई भले न दे, लेकिन उनका एहसास हर उस पल में होता है जब कोई टूटे हुए मन को सहारा देता है। जब कोई अजनबी भी अपनों जैसा साथ निभा जाए, तब लगता है कि भगवान सचमुच इंसानों के रूप में हमारे बीच मौजूद है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि प्रेम, दया और विश्वास भी है।

ईश्वर का नाम मन के भीतर एक ऐसी शांति जगाता है जहां सारी चिंताएं धीरे धीरे मिटने लगती है। भक्ति हमें यह सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर विश्वास और संतोष में छिपा होता है।

कृष्ण केवल एक नाम नहीं बल्कि जीवन को प्रेम और धैर्य से जीने की प्रेरणा है। उनकी मुरली की मधुरता मन की बेचैनी को शांत कर देती है। जब मन उलझनों से भर जाए तब कृष्ण का स्मरण भीतर एक अद्भुत शक्ति का, शांति का अनुभव कराता है। इसी मधुर भावना के साथ सुनते हैं अगला भजन।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है सुधा शर्मा का और वाचक स्वर है मोना ठाकुर के।
1: प्रसन्न चित्त से ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। अगर चित्त प्रसन्न नहीं है तो परमात्मा से साक्षात्कार भी संभव नहीं। इस सूत्र के विपरीत हम बात बात पर दुखी होने को अपना स्वभाव बना लेते हैं। हमारी इच्छा के विपरीत घटित होने वाली किसी भी घटना को विपत्ति मान लेते हैं। जो हमारी इच्छा के अनुकूल घटित हो उसे हरि कृपा मान लो और जो विपरीत घटित हो उसे हरि इच्छा मान लो। हम किसी भी विपरीत परिस्थिति को या किसी भी कठिनाई को विपत्ति समझ लेते हैं। विपरीत परिस्थिति से दुखी ना हो, दुखी होने का स्वभाव ना बनाए, प्रसन्न रहें। श्री रामचरितमानस गान में कहा गया है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति तो तब है जब व्यक्ति हरि भजन भूल जाए। सुंदरकांड की चौपाई है, राम चंद्र गुण बरने लागे, सुनते ही सीता कर दुख भागा। जानकी दुखी थी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने राम कथा सुनाना शुरू किया तो सीता जी का दुख भाग गया। मानस उपाय बता रही है कि भगवत गुणगान से, श्रवण से दुख भागते हैं, संग से दुख भागते हैं, संत मिलन सब सुख नाही। सुख पाना है तो अच्छा संग करें, दुख को भगाकर प्रसन्न रहना है तो शुभ सुनने की आदत डालने का प्रयास करें। दुख के प्रति दृष्टि बदली जानी चाहिए। जीवन में सुख का निर्माण दुख ही करता है। दुख ना होता तो भक्ति ना होती, भक्त ना होते, गुरु ना होते, शिष्य ना होते। दुख व्यक्ति को जागृत करता है, सुख उसे सुला देता है। सुलाने वाले से ज्यादा महत्व जगाने वाले का है, फिर दुख से घबराना कैसा। सुख के सब साधन और कारण होने पर भी सुख का अनुभव ना होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर तीन बाधाएं प्रमुख हैं। ये है क्रोध, काम और लोभ। मानस में लक्ष्मण का इन तीनों से जब जब सामना हुआ, भगवान राम ने कुछ संकेत कर हमें बताया है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। भगवान राम जगत गुरु हैं और लक्ष्मण उनके अनुज भी हैं, सेवक भी हैं, शिष्य भी हैं। धनुष तोड़े जाने के प्रसंग में परशुराम से क्रोधित होने से हम सब परिचित हैं। परशुराम क्रोध में हैं। पूरी जनकपुरी जब लक्ष्मण के लिए कह रही थी कि ये बालक अनुचित कर रहा है, तब राम ने संकेत कर लक्ष्मण को नियंत्रित किया। इसका प्रभाव ये रहा कि कुछ देर बाद ही स्वयं परशुराम कहने लगे कि मैंने बहुत कुछ अनुचित बोल दिया। क्रोध से जब भी पाला पड़े व्यक्ति को उल्टी वाणी का त्याग कर देना चाहिए जो क्रोध को भड़का देती है। मानस में शूर्पणखा के प्रसंग में हम सब परिचित हैं। शूर्पणखा काम है, वह भड़काने वाला रंग रूप लेकर पंचवटी में आई तो राम ने लक्ष्मण को संकेत किया कि इसके नाक कान काट लो। काम से मुक्त होना है तो उसके नाक कान काटने होंगे। गंध और ध्वनि के बाद ही काम में व्यक्ति दृष्टि और स्पर्श तक और फिर पतन तक पहुंचता है। कोई भी गंध हो उसे प्रभु की गंध मानो। कान से श्रवण करो तो भगवत कथा का ही श्रवण करो, धीरे धीरे काम पर विजय हो जाएगी। मानस में भगवान राम ने तीसरी बार लक्ष्मण को संकेत उस समय किया जब उनका सामना समुद्र से हुआ। समुद्र द्वारा रास्ता न दिए जाने से लक्ष्मण गुस्से में थे। समुद्र लोभ है, उसके पास न जाने कैसे कैसे रत्नों का भंडार है, मगर वो सब कुछ छिपाए हुए है। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। उस समय राम ने संकेत किया कि धैर्य रखो, जीवन में जब लोभ से सामना हो जाए तो व्यक्ति को धीरज रखना चाहिए, लोभ समुद्र।

0: है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उस पर सेतु बनाकर उसे पार अवश्य ही पाया जा सकता है। जीवन में सुख की अनुभूति करनी है तो यथासंभव अहंकार से बचे, निंदा और ईर्ष्या से बचे। भगवान को पाने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। दूसरों की निंदा करने से सदैव बचना चाहिए। पहले तो संकल्प लिया जाना चाहिए कि हम अपनी वाणी से किसी की निंदा न करें। भले ही मन में किसी के प्रति कोई बात आए तो उसे वाणी तक न आने दें। यह अभ्यास हो जाने पर ही धीरे धीरे मन में भी निंदा के विचार नहीं आएंगे। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से ही कोई मनुष्य ऐसे हैं जो क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं, और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। जो सत्य के रास्ते चलता है वो ही सुखमय जीवन के रहस्य को समझ सकता है।
1: चिंतन अभी सुन रहे थे आप आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। आलेख था सुधा शर्मा का और वाचक स्वर थे मोना ठाकुर के। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानिए लू से बचाव के विषय में। जानकारी दे रही है संध्या कोठारी।
2: किसान भाइयों, राम राम। अपन का जो भी काम करनु वो खेत में करनु, और अभी समय जो गर्मी का मौसम, बाहर काम करने वाला मनुष्य कारण देखो बहुत कठिन समय छे। इना मौसम में अभी भी देश का हमारा कई हिस्सा में भीषण गर्मी अपनो रिकॉर्ड तोड़ी रही। देखो गर्मी को पारो बहुत हाई भी हुई रोज। चिलचिलाती धूप अने गर्म हवा में लोग न का देखो काम करनु ना, अपन न कभी खेत न में काम करनु बहुत मुश्किल हुई रोज। ऐसा में जब भी हम घर से बाहर निकला वो तो हम खास बात को ध्यान रखा कि अपनो स्वास्थ्य का, हम अपना शरीर का हम कसा बचा सकें। बाहर लोग बात न कर रहा है हीट स्ट्रोक, आप समझ गए हो कि लू लगणो। तो लू जब लगी जाए और लू नहीं लग, पहले तो हम उसको उपाय करा कि लू हमको नहीं लग। हम बाहर जाई रहा तो सबसे पहले तो जावाज क्यों, अगर बहुत आवश्यकता छे तो जज हम घर से बाहर निकला। और घर से अगर बाहर निकला तो सबसे पहले तो कान हमका हमेशा सूती इन अच्छा मोटा कपड़ा से बंधेल होनो चाहिए। कान बांधे निकला, आवश्यकता हो एकदम हल्का कलर का रंग का अन्न ढीला कपड़ा पहननो चाहिए। पाँव भी हमारा पेक होनो चाहिए, ऐसा जूता नसी कि उन्हें पाँव न में भी गर्मी नहीं लगे, तो जब हम बाहर जाए ना वहाँ काम करना जावा। ओका साथ में अगर हमको बाहर निकलनु छे न जानू छे तो ई सावधानी का साथ साथ हमको सबसे बड़ी सावधानी यह रखनी कि हम जो पेय पदार्थ पानी तो साथ में लई न निकला, जैसे बिना पानी लेना हम कभी भी घर से नहीं जावा। पीणों को पानी जरूर हमारा पास में रखा। साथज में पीणा की जो चीज़ न छे हमका फल है जिनमें पानी सबसे ज़्यादा हो, जैसा तरबूज है, खरबूज है और मौसम्बी को रस छे, गन्ना को रस छे, ऐसो पेय पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम करा। अब हम हमारा लू से हमको बचे लेवा, खान पीन से बचावा, पेन न उड़ना से बचावा। पर कभी लू लगी जाए तो वो कहूँ आपको खास बात बताऊँ कि लू को जो लक्षण छे ओमो उल्टी होनु और दस्त लगी जानू, तेज बुखार। अने बुखार भी भाई होना सो आवे कि हमारो शरीर पूरो गर्म हो जाए और पसीनो नहीं आवतो है, और शरीर हमारो इतो तपज कि हाथ जड़ जाए अपना इतरो तपी जाए, तो का समझी जानो चाहिए कि यह लू लगी गई। अब लू का ये जो लक्षण छे एकासी समझा, और ओकासी लू उतारने का भी बहुत सारा घरेलू उपाय भी रहे उनका से लू उतारा। और लू में खास तौर पर बुखार उतरने की गोली जरूर लेवा। ओका साथ पणो जो हमारी कच्ची केरी को पणो रहे ओको सेवन करा, कच्चा प्याज को सेवन करा। और कच्चा प्याज किसी न अगर ओको रस हम हमारा पेल पैर का तलवा हाथ में, हमारा हाथ पाँव का नाखून में, हमारा माथा की दोई चावणी न तरफ अगर हम अच्छे से एको लगे लेवा रस तो भी लू उतरी जाए। अन घरेलू लू और एक साथ कि अपन गीला कपड़ा से भी उतारी लेवा तो

0: से भी लू उतरी जाए। जित तो हो ही सका तो हम बाहर नहीं जावा, और जावा भी तो ये खान पीन को ध्यान रखा। खान पीन में तो आपको बताया सही कि केरी को पड़ो जरूर पेवा, और जावान तो भाई उन साथ में आपको तो मालूम है अपन तो गांव का लोग आए रहने वाला, एक कांदो जरूर हम जेब में रखे ले जावा। और खाता समय कांदा को कच्चा कांदा न को सेवन हम जरूर करा। और अपन तो खावा जैसे सही भाई, दाल रोटी का साथ कांदो तो हूणो अपन का, और गर्मी का मौसम में तो हमका कांदा को उपयोग जितो हो सका, कच्ची केरी को जितो उपयोग हो सका, और पानी की हमारे शरीर में कमी नहीं होए एक कारण शकर नमक को घोल भी पानी का साथ हम ले सका। तो भाई हूँ अपना स्वास्थ्य को जरूर ध्यान रखा, खेती बाड़ी का हमका काम करना है, और हम देखो हम खुद अच्छा रहेंगा तो जे सब हम करी सकेंगे। तो सभी हमारा किसान भाई बहनों का आज भारो योज करणु छे।
1: लू से बचाव के विषय में अभी जानकारी सुन रहे थे आप संध्या कोठारी से। कार्यक्रम का नाम था खेती की बातें। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग पंडित जसराज की गायन स्वर में।

श्री रामचरितमानस का स्थान हिंदी में ही नहीं जगत के साहित्य में निराला है। ऐसा सर्वांग सुंदर श्रेष्ठतम काव्य के सभी लक्षणों से युक्त, साहित्य के सभी रसों से परिपूर्ण तथा काव्य कला की दृष्टि से सर्वोच्च कोटि का ग्रंथ अन्यत्र दुर्लभ है। प्रथम प्रकरण के रूप में प्रस्तुत है बाल कांड का प्रारंभिक श्लोक मंगलाचरण, जिसमें भक्त कवि ने सर्वप्रथम अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों की कर्त्री सरस्वती तथा मंगलकारी गणपति की वंदना की है। तत्पश्चात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती और शंकर की स्तुति की गई है। भक्त कवि की उक्ति है कि उसने अनेक पुराणों, वेद और शास्त्र से सम्मत आदि रामायण में वर्णित तथा अन्यत्र उपलब्ध राम कथा को अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत किया है। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात नौती।

अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग पंडित जसराज के गायन स्वर में। यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

इंदौर परिक्रमा आज इस कार्यक्रम में सुनिए सुबह 7:20 पर आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर विशेष प्रस्तुति। प्रस्तुत करता होंगे मुकाम सिंह चौहान।

कवि गोष्ठी का आनंद लीजिएगा सुबह 8:30 बजे और लोक संगीत में आप सुनिए सीमा चौरी के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत सुबह 9 बजे से। लोकगीतों के कार्यक्रम के बाद समय होगा सुगम संगीत का सुबह 9:15 पर, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे हिमांशु शर्मा के गाए कुछ भजन। श्रोताओं, सुबह 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनना मत भूलिएगा पंडित गणपति भट्ट का गायन, राग होगा गुजरी तोड़ी, और जिले की चिट्ठी का समय होगा सुबह 10 बजे। आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्षों के सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम सुनिए सुबह 10:10 से। दोपहर 12 बजे से आनंद लीजिए फिल्म संगीत का और संग्रहालय से ये कार्यक्रम सुनिए दोपहर 12:30 बजे। श्रोता, महिला कार्यक्रम में दोपहर 1 बजे आज आप सुनेंगे इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर एक चर्चा, साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के विषय में होगी एक भेंटवार्ता और साथ ही जानेंगे बहुत सारी रोचक जानकारियां। दोपहर की सभा में लोक संगीत आप सुनेंगे 1:30 से और सुगम संगीत 1:45 पर, और साथ ही 2 बजे से सुनिएगा फिल्म संगीत। चित्रपट संगीत का समय होगा दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5 बजे। आज सुनिए भारत में एआई का विश्लेषण, इस विषय पर मनोज कुमार श्रीवास की चर्चा, साथ ही आज का क्रम विषय में सुनिए साप्ताहिक विज्ञान और खेल गतिविधियों के विषय में। शाम की सभा में फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:45 पर। 6 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का तरंग और सुगम संगीत में सुनिए वारसी बंधु की का गायन शाम 6:30 बजे। श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस, परिवहन संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि पांच देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं के प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीगंज मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने एसआईटी को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का यह फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों में संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी, इसलिए मैंने शपथ ली, लॉबी में औपचारिकताएं पूरी की और फिर मैं सीधा ऊपर चला गया और वह मेरी पहली बैठक थी। और मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23-26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतोगी तुशिमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। गुजरात टाइटंस के 230 रन के लक्ष्य के जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम भोपाल में होने वाले इस प्री समिट इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्यप्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्य जीव संवर्धन, विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स कल नई दिल्ली पहुंचे, ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल है। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इंदौर में आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में संरचित संवाद, अनुभव साझाकरण और सहयोगात्मक आदान प्रदान किया गया। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, युवा उद्यमी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। दूसरे दिन का सत्र क्रिस्टल IT पार्क में आयोजित हुआ। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26

0: मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और देशभर के फील्ड अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के लिए आवास, आरोग्य और जन कल्याण के प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को पाडुना के ग्राम आंवला में आयोजित जनजातीय समुदाय से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे दो मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों भोपाल और इंदौर उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन बन जाने से ये संपूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कल मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी के चपेट में है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो में 47.4 डिग्री, नौगांव में 40 डिग्री और मंडला में 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पंखे और ग्रीन नेट भी लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल आयोजित किसानों की समस्याओं संबंधी बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उदहन सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आगर मालवा में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित 4 कृषि रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसत ने जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे और बांद्रा टर्मिनल जाने स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को आगामी 24 मई से नियमित ट्रेन का दर्जा देने नोटिफिकेशन जारी किया है। निंडौरी में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। गुना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर रिजु वाफना की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, इंदौर परिक्रमा। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर विशेष प्रस्तुति, प्रस्तुत करता है मुकाम सिंह चौहान।
0: इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा। इंदौर परिक्रमा।

श्रोताओं नमस्कार, स्वागत अभिनंदन और आप सभी को आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयां। श्रोताओं, हमारा अपना आकाशवाणी इंदौर लंबे सफर में इसने न केवल मध्य प्रदेश में अपितु देश के कई राज्यों के करोड़ों सुनने वालों के मन पर राज किया है। एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों के माध्यम से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का प्रसार किया है। इस सुहाने सफर में श्रेष्ठतम उम्दा हरफन मौला प्रसारकों का योगदान रहा है। पूरी आकाशवाणी की टीम ने इस केंद्र को प्रसारण की दुनिया में अनूठी पहचान दी है। इसके कई राही अब अनंत गगन में सितारे बन चुके हैं, जिन्हें हम शत शत नमन करते हैं, और कई उम्र के उस पड़ाव पर हैं जो सुनहरे दौर की यादों के सहारे हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नई पीढ़ी को आकाशवाणी के स्वर्णिम दौर की झलक इस तरह से दिखा रहे हैं मानो कल की ही बात हो। 22 मई 1955 से लेकर अब तक आकाशवाणी इंदौर ने कई आयामों को छुआ है। अपने उत्कृष्ट कार्यक्रमों, प्रसारण की उच्च गुणवत्ता और श्रेष्ठ प्रसारकों के अथक प्रयासों से ये केंद्र न केवल मालवा निमाड़ अपितु पूरे देश में आज भी इतनी ही तन्मयता के साथ सुना जाता है जितनी की रेडियो के स्वर्णिम युग में। आज भी आकाशवाणी इंदौर की सुरभित स्मृतियां हमारे उन प्रसारकों, कलाकारों और श्रोताओं के मन मस्तिष्क में व्याप्त है जिन्होंने आकाशवाणी को अपना पहला घर माना है। आज का इंदौर परिक्रमा का ये अंक लंबा अवश्य है, परंतु आप भी इसे सुनकर रोमांचित अवश्य होंगे, क्योंकि आज इस विशेष अवसर पर कुछ वे व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जिन्होंने आकाशवाणी के साथ ही विविध क्षेत्रों में ऊंचाइयां हासिल की है। तो आइए जानते हैं उनके विचार, उनकी यादें और उनकी प्यार भरी बातें।

0: तो इस कार्यक्रम का आरंभ हम रणजीत सतीश बागड़िया की ही यादों से कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी इंदौर जब शुरू हुआ पहले दिन से मैं उससे जुड़ गई, जबकि मेरा रेडियो से कोई संबंध नहीं था। मैं तो लखनऊ से आई थी और लखनऊ की पढ़ी लिखी थी, लखनऊ से आई थी। लखनऊ में मैं जरूर आकाशवाणी गई थी एक बार। तो यहाँ जब आई, किसी ने बताया कि यहाँ भी आकाशवाणी खुला है, तो हम आए थे। और तब तो बक्से बक्से आ रहे थे दिल्ली वगैरह से, बड़े बड़े बक्से थे, तो उन्हीं के ऊपर बैठ के लोग बातें करते थे। तो मतलब अभी खुल रहा था सब कुछ, सामान प्रोग्राम शुरू नहीं हुए थे। तो उस वक्त आए और बहुत सारे कुछ लोग ऐसे थे जो यहाँ इंदौर के लेखक थे, ये थे, तो उन लोगों को भी बुलाया तो नहीं गया था, कोई मीटिंग नहीं थी, बट खुशी खुशी सब लोग देखने के लिए आ रहे थे कि आकाशवाणी है। और जो आ रहे थे वो कोई बक्सों पे बैठे हुए थे, कोई टेबलों पे बैठे हुए थे, कोई कुर्सियों पे, तो कुछ भी बना नहीं था, शुरुआत हो रही थी। उस दिन का पहला प्रसारण अनाउंसमेंट का वो मैंने ही किया था, और लाइव हम लोगों ने पढ़ा था, पहली बार पहला प्रसारण इंदौर से वो हुआ था।
2: मैं नरहरि पटेल, मालवीय का कवि और रंगमंच का भी कवि रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आकाशवाणी इंदौर की जो स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई डॉक्टर श्याम परमार, इसके लिए मुकर्र किए गए सरकारी कोर्स से, और उन्होंने ही मुझे शुरू में प्रेरित किया कि नरहरि भाई अब स्टेशन पे आ जाओ। करके कौन से स्टेशन? आकाशवाणी स्टेशन पर आ जाओ। मैं कहाँ आए? तो रेसिडेंसी एरिया में, ये उस जमाने में ये था ग्वालियर हाउस था इसका नाम, तब ये मालवा हाउस हुआ, बाद में आकाशवाणी निर्मित हुआ, तब से एक ख्याति मालवा हाउस के। और मैं मालवी का भी, तो मालवा हाउस तो मेरे लिए मेरा दूसरा घर क्या पहला घर हो गया। देवयोग से श्याम जी ने मुझे मेरा ऑडिशन दिया था। ऑडिशन की मामूली टूटी फूटी व्यवस्था थी, वहाँ टेम्पररी पर्दा लगा दिया। और उस जमाने में ग्राम सभा में कृष्णकांत दुबे और सीताराम वर्मा, दो रामजी बेराजी थे। तो सीताराम वर्मा बेराजी के नाम से आकाशवाणी पर बाद में आए नाम उनका। तो उनसे बेराजी से कहा कि सास बहू की स्क्रिप्ट लेकर चलो। तो मेरा ऑडिशन उसी टूटे फूटे स्टूडियो में दिया गया और देवयोग से मुझे पास कर दिया गया। और बिल्कुल 6 महीने के अंदर ही मेरे को ए ग्रेड प्राप्त हो गया, क्योंकि मैं यहाँ इंदौर इफ्ता से जुड़ा हुआ था, रंगमंच से जुड़ा था, और तो इसलिए नाटक मेरे लिए बहुत ही निजी और पारिवारिक एक कला ऐसी थी जिसने मुझे मेरा स्वरूप दिया जो कि जुता था करता था कहते। और उस जमाने में सबसे बढ़िया चीज आकाशवाणी जी ने जहाँ हमको दी वो उच्चारण, जो तलफ़ुज़ भाषा केवल पढ़ने से स्कूलों में और कॉलेज में आ जाती होगी, लेकिन उच्चारण जिसको कहते हैं वो तो आकाशवाणी एक तरह से देखा जाए तो पहली पाठशाला आकाशवाणी में। और मैं मालवी आदमी, मेरे पास में उर्दू के उच्चारण और आकाशवाणी के शुद्ध हिंदी के उच्चारण कैसे हो सकते, इसके लिए बहुत कम समय में, क्योंकि मेरे जो उर्दू के गुरु थे उस जमाने की इंदौरी थे, बदुद्दीन राहत इंदौरी, तब एक शायर थे और टीचर थे, तो हर शाम को उनसे सीखना मिलता था बोलना और उच्चारण और ये सारी तमीज बोलने की। और नाटक कहने का आशय के उस जमाने में इंदौर स्टेशन रेडियो नाटकों के लिए प्रसिद्ध था। वैसे कवि भी यहाँ बाल कवि बैरागी से लेकर के और बीरबल सिंह भंवर और हमारे मालवा के उस जमाने के मालवीय के जो पहली पंक्ति कवि थे वो, उनका आमंत्रण मिलता था और वैसे मैं भी एक शरीक माना जाता था। तो मुझे बहुत कुछ सीखना और अपने आप को व्यक्त करना आकाशवाणी के माध्यम से जाए। आकाशवाणी कार्यक्रम गांवों में हुए उसमें हम लोग पहली पंक्ति में होते थे, क्योंकि हम लोग मालवा के, तो हमारे लिए बहुत ही उस क्षेत्र में जनजीवन को जागृत करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको कला से परिचित कराने के लिए हम लोग माध्यम बनाए जाते थे। तो मैं क्या बताऊं, आकाशवाणी ने जो मुझे दिया उस जमाने, जो लोग कृष्णकांत दुबे, महेंद्र जोशी, प्रभु जोशी, चंद्र कुमार ओझा, काफी एक पूरा परिवार हुआ करता था कलाकारों का, तो वहाँ कोई भेद होता नहीं था, इतनी आत्मीयता के साथ में चीजों को बताया जाता था, हम समझते थे। और हमारे जो प्रोडक्शन होते थे वो दिल्ली और बाहर बम्बई जाते थे। आकाशवाणी के प्रांगण में भी कार्यक्रम हुआ करते थे जिससे कि नगर के लोग बुलाते थे। कारण है कि इंदौर उस जमाने में काफी प्रसिद्ध था।

0: यानी आप क्रिकेट में सीके नायडू, लता मंगेशकर का जन्म स्थान और आमिर खान साहब की भूमि, तो इसलिए बड़ा प्रसिद्ध इंदौर कल्चरली काफी उन्नत था। तो इंदौर ने काफी कुछ दिया और खास करके आकाशवाणी इंदौर ने बहुत कुछ दिया और आज भी आकाशवाणी, चाहे वो इंदौर हो चाहे विविध भारती हो, आकाशवाणी अगर जिंदा है तो हमारी संस्कृति जिंदा है। तो मैं इस मौके पर, जबकि आकाशवाणी खास करके इंदौर आकाशवाणी और आकाशवाणी पूरी उम्र दराज हो रही है, मैं तो कहता हूँ कि हम रहने रहे आकाशवाणी रहे और देश का नाम और देश की संस्कृति बनी रहे इसके बाद।
1: हाँ नमस्कार, मेरा नाम सतीश बागड़िया है। मैं 1960 में आकाशवाणी इंदौर से एज ए कैजुअल आर्टिस्ट जुड़ा, फिर 1962 से 1964 तक टोरा में अनाउंसर रहा, फिर उसके बाद की मुकर्रर शुरू कर दी थी इसलिए टोरा में अनाउंसर की नौकरी छोड़ी, फिर एज ए ड्रामा आर्टिस्ट मैं करीब 15-20 साल तक आकाशवाणी से जुड़ा रहा। तो एक बात तो यह है कि उस जमाने में अनाउंसर्स का कोऑर्डिनेशन आपस में काफी अच्छा था, जैसे हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती थी कि जो सीनियर अनाउंसर होते थे वो अपने न्यू कमिंग अनाउंसर्स को खुद ट्रेन करते थे। जैसे मैं जब आया आकाशवाणी में तो उस वक्त हमारे सबसे सीनियर अनाउंसर थे चंद्र भारद्वाज, बड़े लोकप्रिय आदमी थे, उन्होंने मुझे ट्रेन किया। फिर कभी कभी हमारे एक मित्र थे स्वतंत्र कुमार ओझा, वो भी समझाते थे। फिर जब मेरा नंबर आया तो वीरेंद्र मुंशी जी नए नए अनाउंसर बने थे, तब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनको ट्रेन करने का। सब कुछ बताते थे, फेडर कैसे ऑन होगा ऑफ होगा, टर्न टेबल कैसे चलेगी, टेप डेक कैसे चलेंगे, क्योंकि अब तो काफी कंप्यूटर का युग आ गया, तब सब कुछ मैनुअल था, उसी के साथ काम चलता था, पर कोऑर्डिनेशन अच्छा था, लोगों में प्यार मोहब्बत अच्छी थी। और एक मुझे याद है, जब नेहरू जी की डेथ हुई तब मैं ड्यूटी पे था, और जब ड्यूटी करके और मैं आकाशवाणी से बाहर निकला तो यकीन मानिए ऐसा लग रहा था कि शहर में अघोषित कर्फ्यू लग गया है। सड़क पे कोई वाहन नहीं था, कोई दुकान खुली नहीं थी, सब कुछ बंद था और किसी ने कुछ करने को नहीं कहा, अघोषित बंद था। ऐसा उस वक्त उनके प्रति लगाव था, फिर वैसा लगाव किसी नेता के लिए हुआ नहीं। हालांकि बाद में बहुत सारे राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, बाद में कई लोगों ने विचार भी अलग अलग रखे, पर यह घटना मेरे को हमेशा याद रहेगी। इसके अलावा जो भी आकाशवाणी के अच्छे काम होते थे, जैसे हमारे यहाँ एक एक घंटे के प्ले होते थे, कई बार नेशनल प्ले में भी जाता था, हमारे यहाँ म्यूजिक रिकॉर्ड होता था, तब अखिल भारतीय स्तर पर इंदौर आकाशवाणी का बहुत अच्छा नाम था। और अच्छे अच्छे कलाकार थे वहाँ पे, जैसे कि अमी हनफी साहब थे, वेल नोन ऑथर थे, प्रभाष चंद जी शर्मा थे, कुछ समय तक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी हमारे यहाँ रहे, कुछ दिनों तक वीरेंद्र मिश्र भी इंदौर में पोस्टेड थे। तो इन सब लोगों ने आकाशवाणी इंदौर की बहुत शान बढ़ाई और देश में इसका नाम बढ़ाया। तो हमें खुशी की बात है कि आकाशवाणी के शुरू के दिनों में हमको इससे जुड़ने का मौका मिला, और उससे भी ज्यादा खुशी ये है कि आज आपसे ये याददाश्त और ये यादें शेयर करने का मौका मिला। नमस्कार।

मेरा नाम सुरेश अवस्थी है, मैं आकाशवाणी इंदौर में ठीक से तारीख तो याद नहीं है, जहाँ तक मेरे जून या जुलाई में 1982 में आया था पहली बार आकाशवाणी में, किसी कंपनी पहली बार आया था। इंदौर का प्रसिद्ध मालवा हाउस उस समय प्रदेश का सबसे लोकप्रिय आकाशवाणी केंद्र हुआ करता था। मेरे आने के

0: पहले वहाँ प्रादेशिक समाचार एक साल पहले ही खुला था, उसके पहले था ही नहीं। एकांश की स्थापना के एक साल बाद मुझे भेजा गया था। मैं उस समय क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय में था, अंबिकापुर में था, और मेरे पहले थे सीपीपी अवस्थी जिन्होंने मुझे चार्ज दिया था। दूसरे अधिकारी थे हमारे हेमचंद शर्मा जी, वो छुट्टी पे थे, कोई था नहीं। दफ्तर में कोई चार पांच लोग थे उस जमाने में, संदीप श्रोती समाचार वाचक थे, हिसाब ये होते थे बुलेटिन, हम लोग 5 बजे आ जाते थे। उसके लिए रात भर के रोल खड़ा होता था, दिन में कोई होता नहीं था, तो पीटीआई यूनाई के रोल होते थे लंबे लंबे बड़े, उनको रोल इकट्ठा करना देखना यही बड़ी काम था, सबसे बड़ा काम यही दिक्कत थी। खैर करते करते तो हो गया, धीरे आदत पड़ गई। सबसे अच्छी बात थी उस समय हमारा समाचार जो था अजीत जोगी के साथ बहुत सुनते थे, कलेक्टर थे इंदौर में, जो बाद में छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे मंत्री करके, वो अच्छे दोस्त थे हमारे बन गए थे, उसमें बुलेटिन सुनते थे, तो रोज उनका फोन भी आता था, कभी कभी ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया बताते थे, तो बड़ा हमको प्रोत्साहन मिलता था कि कोई कलेक्टर सुन के हमारी फोन सुन के बताता है बताता है। मोतीलाल वोरा जी, वो भी सुबह के बुलेटिन सुनते थे, उनके पीआरओ हमको बोल रहे थे कि आपका फोन सुनते हैं, वो रोज सुन के घर के बाहर निकलते हैं, तो वो प्रोत्साहन मिलता था कि चलो मुख्यमंत्री है प्रोग्राम सुनते हैं, इससे बड़ी खुशी होती थी कि सुनकर इंदौर का आकाशवाणी केंद्र जो है इतना लोकप्रिय हो गया कि मुख्यमंत्री सुनते हैं, अच्छा लगता था। इंदौर का वो दिन 10 साल बीते, इंदौर आकाशवाणी में काम करते करते बहुत अच्छे दिन बीते। सबसे अच्छा लगा कि इंदौर के जो कल्चर था, संस्कृति थी, और एक खास बात और भी थी इंदौर में, जो सबसे पहला भोपाल में जो गेस्ट हाउस भी हुई थी, कि पहली बुलेटिन हमने इंदौर आकाशवाणी दी थी, 7-5 के बुलेटिन पे सबसे पहले समाचार हमने दिया था, उसका दिल्ली में समाचार नहीं गया था, पहले समाचार हमें नहीं दिया था। ये बड़ी उपलब्धि हमारे आकाशवाणी इंदौर के थी, जो सब किसी ने स्वीकार नहीं किया देखते, लेकिन हमने अपने मन से मांग के रखा है कि
1: मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्र सक्सेना बोल रहा हूँ। मैं अपने समय का पुराना पथालॉजिस्ट हूँ, आजकल अब बिल्कुल सेवानिवृत्त हूँ। आकाशवाणी के नाटक विभाग से मैं 50 के दशक में जुड़ गया था, जब मैं मद्रास में MBBS कर रहा था। वहाँ का जो आकाशवाणी का चेक मिलता था वो हॉस्टल के बिल में देता था, तो वहाँ का क्लर्क बहुत खुश होता था कि आपकी अपनी कमाई आप हॉस्टल के बिल में दे रहे हैं। वहाँ से मैं MBBS करके 1960 के दशक में इंदौर आया, और तब से इंदौर में आकाशवाणी से जुड़ा रहा। नाटक में श्री महेंद्र जोशी बच्चों का कार्यक्रम भी देखते थे, नाटक विभाग भी देखते थे, तो उनसे संबंध बना, बहुत अच्छा संबंध उनके पूरे जीवन भर उनसे बना रहा। बाद में नाटक विभाग स्वतंत्र कुमार ओझा जी के पास आया, वो संगीत के प्राथमिक कलाकार थे, मगर नाटक उनको दिया गया कंडक्ट करने के लिए, उन्हीं के साथ जुड़ा रहा। और कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाम हैं, रंजीत अहलूवालिया, हमीदा इब्राहिम, कृष्णकांत दुबे, इन सब से बड़े अच्छे संबंध उस वक्त थे। और नाटक के प्रोग्राम में अहलूवालिया जी, हमीदा इब्राहिम जी हमेशा साथ रहती थी। पहले आकाशवाणी एक पुरानी बिल्डिंग में था, मालवा हाउस इंदौर, और अब भी शायद वही है, मगर स्टूडियो अब कुछ नए बन गए हैं, हमने नए स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग कराई। कुछ साथी कलाकार थे, नरहरि पटेल, बाबा ढीके, इन लोगों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला था। प्रभु जोशी जी से अच्छा परिचय था, मगर उनके साथ कभी नाटक वाटक में काम नहीं किया। स्वतंत्र कुमार ओझा जी पर लिखी पुस्तक वह दीप अकेला स्नेह भरा में एक चित्र में मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। नई बिल्डिंग व स्टूडियो में भी रिकॉर्डिंग करवाई है, उस समय के स्टेशन डायरेक्टर भी नाटक में साथ में आ जाते थे। मधु जी से संबंध बहुत अच्छे बने, इस रिकॉर्डिंग की सूचना मुझे उन्हीं ने दी थी। उन्होंने मेरे व्यक्तिगत जीवन पर कार्यक्रम रिकॉर्ड किया, आकाशवाणी से सेवानिवृत्ति के बाद भी संबंध हमारे

बने हुए हैं। अब हमारी उम्र 92 वर्ष की हो गई है, बस कुछ यादें ही शेष हैं। आवाज भी हमारी अब विकृत हो गई है, पहले जैसी, पहले बहुत अच्छा गा लेता था, बोल लेता था, हर तरह की आवाजें निकाल लेता था नाटक में, अब वो सब संभव नहीं है। खैर, इस उम्र में जैसा हो सकता है वही हुआ है।

0: मैं मालती जोशी, मैंने आकाशवाणी में 77-78 से शुरू किया था। सबसे पहले मैंने आकाशवाणी में लोकगीत के लिए ऑडिशन दिया था, परंतु फिर बाद में अंसारी जी थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप निमाड़ी लोकगीत के बजाय, आप हमारे यहाँ खेती गृहस्थी ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम होता है, आप वो करिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो तब से मैं ये कार्यक्रम कर रही हूँ। 77-78 से किया है मैंने शुरू। तो पहले मैं ग्राम लक्ष्मी देती थी, फिर उसके बाद श्रमिक जगत और खेती गृहस्थी। तो सबसे पहले तो मैं पुराने स्टूडियो की बात करूंगी कि जब पुराने स्टूडियो में हम लोग आते थे तो इतना मजा आता था। पहले क्या था कि जितने भी मंडलियां आती थी गांव की, वो सब बाहर आंगन में गार्डन में बैठ करके पहले चर्चा कर लेते थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग होती थी। और छोटा स्टूडियो होने के कारण बगीचे का बहुत फायदा होता था कि वही बैठ करके सारी बातें होती थी। पुराना जो स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था। धीरे धीरे जैसे जैसे सब बढ़ने लगा, प्रगति होने लगी स्टूडियो की, तो नया स्टूडियो बना, फिर नए के हिसाब से सभी लोग आने लगे, फिर स्टाफ भी थोड़ा सा बढ़ा, उसके बाद प्रोग्राम भी बढ़ने लगे।
1: मैं चंद्र प्रकाश बाजपेयी बोल रहा हूँ। मैं आकाशवाणी से करीब 1956-57 से जुड़ा हूँ, 55-56 से करीब। जब मैं बहुत छोटा था, 8-9 साल का था, तब से मैं पहला प्रोग्राम बाल बच्चों का जब चालू हुआ वहाँ पर, उसमें शामिल हुआ था। एक तो मैं आज के दिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आज हमारा आकाशवाणी का स्थापना दिवस है और सभी लोगों को, सभी के मिलजुल कर ये सब चीजें आज यहाँ तक पहुंची हैं। एक जमाने में हमारे समय लोग बाग इंतजार करते थे कि आकाशवाणी का कोई सा भी प्रोग्राम हो, चाहे नाटक का हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे महिलाओं का हो, सबको, चाहे ग्रामीण हो, सबकी वो इंतजार किया जाता था। रेडियो में इतना पॉपुलर होता था। मैं पहला बचपन में मुझे जब मालूम पड़ा तो करीब करीब पहले ही कार्यक्रम में मैं वहाँ शामिल हुआ। मैं बहुत छोटा था, कुछ यादें अभी भी आती हैं। उस समय बच्चों में एक भैया होते थे और एक दीदी होती थी, हमारे महेंद्र जोशी जी थे जो हमारे भैया थे, और रंजीत जी थी जो दीदी होती थी। और उस समय कार्यक्रम में काफी लोगों को बुलाया जाता था, बच्चों से बातें की जाती थी, बच्चों से छोटी छोटी कहानियां सुनवाते थे, और इस तरह की शुरुआत हुई। और एक बार पृथ्वीराज जी भी आए, बच्चों के कार्यक्रम में शामिल हुए, तो बहुत हम लोग इंतजार कर रहे कि पृथ्वीराज जी हैं, कोई बहुत बड़े कलाकार हैं वो हमारे उसमें आ रहे हैं। तो पृथ्वीराज जी को स्टूडियो में, जो पुराना स्टूडियो था हमारा, उसमें जाके जमीन पे ही बैठे, वो भी उस समय नीचे ही बैठ के कार्यक्रम हुआ करते थे, स्टैंडिंग माइक बहुत कम यूज होता था। तो उस समय वहीं बैठ के उन्होंने बातें की, पूछते रहे बच्चे।

0: चितरंजन जी थे उस समय जो हमारे चाचा बनते थे, बाद में एयरफोर्स में चले गए और उनको हम चितरंजन चाचा ही कहते थे। और फिर वो कार्यक्रम में बढ़ते हुए कुछ नाटक में भाग लेना चालू किया। उसके उसमें शुरू शुरू में 4 रुपए मिलते थे हमको, और रुपए की जगह जब वो रुपए दिए जाते थे तो एकदम कड़क नोट होते थे तो बड़े अच्छे लगते थे, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी प्राइज मिल गई। वहां से करते करते करते जब ए ग्रेड आर्टिस्ट तक मैं आखिर तक काम करता रहा वहां पे एज ए सीनियर आर्टिस्ट, और नए स्टूडियो में जब शामिल हुआ, पुराने स्टूडियो में, हर स्टूडियो में किया, म्यूजिक स्टूडियो, ड्रामा स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी। रंजीत जी हमेशा ऐसी जुड़ी रहती जैसे कि परिवार की वो हो, और सारे स्टाफ जितना था सब एक दूसरे से इतना अच्छा मिलता था। आप अनाउंस वहां पे जाओ, कोई कैरेक्टर में कोई आपको बुलाना हो तो आप अनाउंसमेंट में जो बैठा हो, मधु जी मिलती थी, मधु जी का नेचर इतना अच्छा था, जब कभी बुला लो उनको और कभी भी आके बैठ के बड़ी देर तक बात करती हैं, कैरेक्टर करती हैं, बहुत अच्छा तो उस समय का पारिवारिक रूप हुआ करता था। फिर ये कार्यक्रम चलते रहे, हमारे कई अच्छे अच्छे स्वतंत्र कुमार ओझा जी आए, बहुत अच्छे डायरेक्टर रहे, भारत रत्न भार्गव जी आए। भारत रत्न भार्गव साहब ने कुछ अलग तरीके से काम करना सिखाया, उन्होंने कभी भी ये बोल के स्क्रिप्ट पढ़ के नहीं सिखाया, उन्होंने बोला कि आप ये कैरेक्टर हैं, इसको कैसे बोलना, आप अपने सहज लहजे में आप अपना बोलिए। ये एक नया तरीका था जिससे बहुत लाभ हुआ। ओझा जी एक बहुत बारीकी से करते थे और एक एक चीज को इतना बारीकी से देखते थे और इतना अच्छा डायरेक्शन देते थे और बहुत ज्यादा जुड़े रहे। दुबे जी थे, ऐसे बहुत सारे पुराने पंडित साहब थे, सारे लोग अब बहुत याद आते हैं, और बहुत पुराना एक पारिवारिक माहौल रहा और सब इस तरह का समय निकला। हमारे ड्रामे जब होते थे वो हवा महल में नंबर 1 पे पॉपुलर थे। हमारे कंपटीशन में उस समय जो आता था ड्रामों के तो वो जयपुर आता था, लखनऊ केंद्र आता था, मगर हमारे ड्रामे इतने अच्छे बनते थे और यहाँ से उसमें जाया करते, वहाँ पे बजते थे तो लोग इंतजार करते थे कि हम इंदौर का नाटक सुनने के लिए, तो बेताब रहते थे उस समय। तो उस समय का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, ड्रामे बहुत अच्छे तरह लिखे जाते थे और बहुत अच्छा पारिवारिक माहौल रहा। लाल चावला जी थे, हमारे स्टेशन डायरेक्टर रहे उस समय, वो भी वहाँ के बीच में बैठते, एक दूसरे से बात करते, सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह प्रोत्साहित करते। और इवन स्टाफ में कुरेशी जी थे, जब आप वहाँ पे जाएं उतने छोटे छोटे स्टाफ मेंबर भी एक दूसरे को इतना जानते थे, कुछ पूछे नहीं। मंच में हम लोगों को ड्रामा कराया जाता था, ओपन लॉन में बैठ के कि स्क्रिप्ट लीजिए और यहाँ पे उनके कुछ पर्टिकुलर दिन में दिवस पर वहाँ पर स्क्रिप्ट के साथ में ड्रामा करें और स्क्रिप्ट बोलिए और उसमें नाटक कीजिए। इस तरह बहुत सारी यादें हैं जो कि उस समय की इतनी अच्छी थी कि वो इस समय भूली नहीं जाती।
1: मेरा नाम आनंद अय्यर है और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 इंदौर में हिंदी का शिक्षक हूँ। मैं आकाशवाणी इंदौर से बहुत पहले यानी सन 1989 से जुड़ा हूँ और लगभग 15 वर्ष आकाशवाणी इंदौर से जुड़ा रहा। आकाशवाणी की यदि बात करूं तो रेडियो आज भी हमारे लिए जीवन है, सांसें हैं। रेडियो से आज भी हम सुबह उठते हैं, हमें घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आकाशवाणी होता है, आकाशवाणी इंदौर होता है, तो घड़ी की आवश्यकता नहीं होती। और जहां तक मैं आकाशवाणी इंदौर की बात करूं तो यहां से मुझे वैचारिक संपदा मिली है, कैसे हम अपने विचारों को सिलसिलेवार या व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं, यह मैंने सीखा। मैंने आकाशवाणी में रहते हुए वॉइस मॉड्यूलेशन सीखा और पहले मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन आता नहीं था, तो विजय रॉय सर, सुरेंद्र तिवारी जी अक्सर कहते थे भाई वॉइस मॉड्यूलेशन नहीं है तुम्हारी आवाज, तो मैं समझ नहीं पाता था ये क्या है। लेकिन जब मैंने स्वतंत्र कुमार ओझा जी को रिकॉर्डिंग करते हुए देखा, मैंने देवेंद्र कौर मधु जी को देखा कि कैसे बोला जाता है रेडियो पर, विजय रॉय सर हमारी उच्चारण की अशुद्धियों को सुधारते थे और उनका, इन सबका हमारे जीवन में बहुत अमूल्य योगदान है। और संतोष जोशी जी, उन्होंने भी हमें सिखाया और मुझे लगता है कि हमने बहुत अच्छा किशोर कुमार पर एक कार्यक्रम किया था जिसमें संतोष जोशी जी के योगदान को मैं भुला नहीं सकता। और रेडियो पर रहते हुए मैंने नाटकों में काम शुरू किया, नाटकों में संगीत निर्देशन

किया, और आज जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ तो आपको जानकर के खुशी होगी कि कक्षा 11वीं और 12वीं की हिंदी में रेडियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा रेडियो पर है। तो मुझे वो सिखाने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आकाशवाणी इंदौर का ही अनुभव मुझे काम आता है। और लीजिए, मैं एक रेयर अंतरे के साथ कोशिश करता हूँ आपको कुछ सुनाऊं।

0: अरे शुक्रिया आकाशवाणी, तुम्हारे बगैर हम किनारे कुछ भी नहीं। तुम बरखा हो तो हम बादल हैं, ये निश्चित बात है। थैंक यू आकाशवाणी, आपकी वजह से हम सब कुछ हैं। थैंक यू।
1: आप हैं संदीप श्रोत्रिय।
2: यूं तो रेडियो में आकाशवाणी इंदौर में नौकरी का सिलसिला बना, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ रेडियो नाटकों में आता रहा, कहानी पढ़ते आता रहा, युववाणी में आता रहा। और इसके बाद जब नौकरी शुरू हुई सहायक संपादक की तरह, तो मैंने रेडियो के लिए ज्यादा लिखना और पढ़ना शुरू किया। बाद में मैं यहाँ समाचार वाचक से अनुवादक की तरह काम करने लगा। और आज सोचता हूँ पलट के, तो ये 40 साल के लगभग का सफर जो है, ये बार बार यही याद दिलाता है कि क्या भूलूं और क्या याद करूं। दरअसल रेडियो ने मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो सिखाया ही। इसके साथ कलाकारों और कला की समझ, उनसे रिश्ते और उन्हें सम्मान देने की बात जो सिखाई, वो शायद कहीं और सीखने को नहीं मिलती। जहां तक याद आता है, कई बड़े लोगों से यहाँ मुलाकात हुई और उनसे सीखने समझने का मौका मिला। कुमार गंधर्व उनमें थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे, भगवत शरण उपाध्याय थे, हमारे अपने शिव मंगल सिंह सुमन जी थे, गुलजार चिंचालकर जी, और याद करें तो एक बड़ा नाम ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में देवकी नंदन पांडे, इनसे दिल्ली में मुलाकात हुई। इनके बारे में कहा जाता था कि लोग दिल्ली में लाल किला, कुतुब मीनार और देवकी नंदन पांडे को देखने के लिए आते हैं। सच में एक विराट व्यक्तित्व था। और वो जब हम लोगों से मिले तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अब रिटायर होने वाला हूँ, लेकिन आने वाले दिनों में आकाशवाणी आप लोगों के कंधों पर होगा। पता नहीं हम अपने कंधों पर कितना ले जा सके, इस संस्थान को कितनी ऊंचाइयां दे सके, ये हम नहीं जानते, शायद हमारे श्रोता जानते हों। लेकिन ये जरूर है कि हमने जो कुछ सीखा, ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश की। मुझे याद है एक बार भोपाल में किसी कार्यक्रम में झाबुआ के गांव की एक लड़की मुझे मिली, और जब उसे पता पड़ा कि हम लोग आकाशवाणी इंदौर से हैं और समाचार वाचक हूं, तो उसने सबसे पहली बात कही कि हमारी तो सुबह ही आपसे होती है। मुझे लगा कि ये अपने आप में एक बड़ा भारी कॉम्प्लीमेंट है और जिम्मेदारी भी। तो हम आकाशवाणी इंदौर का आभार व्यक्त करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि ये संस्थान बहुत आगे बढ़े, ऊंचाइयां छुए, लोकप्रियता हासिल करे और अपने मकसद को पूरा करे। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय।

0: नमस्कार, मैं रेन मोड और गृहिणी हूँ। मैं इंदौर में ही रहती हूँ। मेरा मायका और मेरा बचपन भोपाल में गुजरा है, जहाँ मैं बचपन से ही विविध भारती से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में परिवार में सबको वही सुनते हुए पाया है। मुझे उसकी यादें ऐसी हैं कि मैं और मेरा भाई छत पे गर्मियों में जब सोते थे तो रात को 10 बजे छाया गीत जरूर सुनते थे हम लोग मिलके, और उस समय उसमें बेला के फूल आता था 11 बजे, वो सुनकर ही हम सोते थे। आजकल वो 11 बजे आपकी सभा समाप्त हो जाती है। दूसरा ये कि मुझे विविध भारती इसलिए पसंद है क्योंकि ये श्रोताओं की भावना और संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल के चैनल तो विज्ञापन से चलते हैं, लेकिन विविध भारती हमें अपनी संस्कृति से जोड़ता है। और जैसे आजकल रेडियो जॉकी बोलते हैं दूसरे चैनलों पे, लेकिन हम आपके यहाँ हम उसको सखी, सखा, उद्घोषक ये सब बोलते हैं। तो ये चीजें बहुत हमको जो है श्रोताओं से जोड़ते हैं, इसीलिए मैं बचपन से सुनती आई हूँ। आज मैं 64 साल की हो गई हूँ, लेकिन मेरा छाया गीत अभी भी नहीं छूटा है। ना मैं टीवी देखती हूँ उस समय और ना कुछ और, सिर्फ छाया गीत के लिए मैं इंतजार करती रहती हूँ। अभी आपने उसको 9:30 कर दिया था कुछ समय पहले, तो थोड़ा अजीब लगा था क्योंकि बचपन से वो छाया गीत मैं 10 बजे सुनती आई थी। अभी आपने वापस चेंज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश शेषमोट, मैं व्यवसाय से कार्डियक सर्जन हूँ, हृदय शल्य चिकित्सक इंदौर में, और बचपन से ही रेडियो और खासकर विविध भारती सुनने की एक तरह से आदत की ही है। घर में बचपन से आज तक हमेशा रेडियो में विविध भारती ही लगा रहता है। विविध भारती के जो उद्घोषक हैं, उनका शुद्ध उच्चारण, उनकी भावनाएं और उनके प्रस्तुत करने का अंदाज बहुत ही सौम्य और बहुत ही प्रेरणादायक रहता है। हिंदी अगर किसी को बोलना सीखना हो तो उन उद्घोषकों के उच्चारणों से सीख सकता है। आकाशवाणी इंदौर का जो विशेष कार्यक्रम और जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की सूचना देने के बाद आते हैं, इन फोन इन कार्यक्रम, यह सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं, और इन सभी कार्यक्रमों से जो विविधता अपने जीवन में आती है, विभिन्न समयों पर अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो हमें कुछ सीखने को मिलता है, इसके लिए आकाशवाणी इंदौर का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और उसकी शुभकामनाओं की मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैं मोहिनी ओझा, केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड, और शायद मैंने बहुत पहले, आज से 30 साल पहले यहाँ पर लगातार 10-12 साल तक कैजुअल अनाउंसर भी रही हूँ। तब मैं मोहिनी मिश्रा थी और अब मैं मोहिनी ओझा हूँ। मैं यही कहूँगी कि ये एक वह स्तंभ है हमारे जीवन का जिसने हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रातःकालीन मुझे आज भी ट्यून याद है कि जैसे ही सुबह आकाशवाणी रेडियो स्टार्ट होता था और जो धुन बजती थी, हम डर के मारे भागते थे कि कहीं हम लेट ना हो गए हों। हमारे पापा नीचे बस रेडियो स्टार्ट करते और हम सब अपने कामों से लग जाते थे। बहुत अच्छा लगता था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क पर अंकित हैं। बहुत अच्छा लगता था जब हम युववाणी कार्यक्रम में कई लोग इकट्ठा होकर, अन्य कई क्षेत्रों के, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ हम एक ही जगह के हों, कई लोग इकट्ठे होकर कहीं नाटक कर रहे हैं, कहीं हम सामूहिक गीत गा रहे हैं, सब कुछ याद है आंखों के आगे। आज भी वो दिन इतने अच्छे लगते हैं कि शायद मैं कहती हूँ कि टीवी या उससे भी बड़ा जो आजकल नेट के ऊपर लोग रील बना रहे हैं, सब उन सबसे एक अलग हटके इसका ग्लैमर था। और मन में एक जब आकाशवाणी या विविध भारती शब्द का प्रयोग होता था तो एक देश प्रेम की भावना का भी हमारे अंदर कि हम पूरे देश से जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि इसने हमारी संस्कृति को बहुत आगे बढ़ाया है। आकाशवाणी में चाहे, मुझे तो आज तक याद है कि एक बिल्कुल ब्लाइंड एक हमारे मामा थे, उन्हें कुछ नहीं पता, सिर्फ मेरे हमेशा कार्यक्रम सुनते थे। तो एक बार मैं उनसे मिलने गई तो मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मामा जी नमस्ते। उन्होंने पट से कहा, अरे मोहिनी बहन तुम, और इस तरीके से ऐसी ऐसी बातें मैं आपको सुना सकती हूँ। उन्होंने
3: इंदौर परिक्रमा में अभी आप सुन रहे थे स्थापना आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस पर विशेष प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में समाचार प्रभात सुनिए दिल्ली केंद्र से।
4: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: घर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजीत टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडोलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडोलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में पहली जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
8: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
6: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
5: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
7: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
5: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासु और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लो ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
8: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
5: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $5,00,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
9: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, यूएई से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्य के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर पीएम सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्ययोजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाए तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है, दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
5: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st, postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Vefaidis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulidis to India in his current capacity. A report.
10: Prime Minister Narendra Modi and the President of Cyprus will hold discussions on further strengthening bilateral cooperation in various areas of mutual interest. The areas include trade, investment, technology, education, culture, mobility, defense and security, artificial intelligence, fintech, innovation and research. They will also exchange views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Several agreements will be signed and exchanged after the talks. The President of Cyprus will meet President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan today evening. The visit of President of Cyprus taking place within a year of the historic visit of Prime Minister Narendra Modi to Cyprus in June last year, which was the first visit by an Indian Prime Minister to Cyprus in over 2 decades. This visit also assumes added significance in view of Cyprus's ongoing presidency of the Council of the European Union. India and Cyprus share close and time-tested partnership. The two countries will mark 65 years of diplomatic relations in February next year. Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
3: Prime Minister Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices relating to boosting ease of living, ease of doing business and how to further reforms in order to realize the shared dream of a Vikasit Bharat. The first International Big Cat Alliance IBCA summit, which was scheduled to take place in New Delhi on the 1st of June, has been postponed to a later date. The summit focuses on the conservation of 7 big cat species, which are tiger, lion, leopard, snow leopard, cheetah, jaguar and puma, and their ecosystems. A report.
11: The International Big Cat Alliance IBCA Summit was being organized in conjunction with the 4th India-Africa Forum Summit, as several African countries host big cats and are important partners in global efforts towards conservation, ecological sustainability and biodiversity protection. Following the decision taken in consultation with the chairperson of the African Union and the African Union Commission to convene the 4th India-Africa Forum Summit at a later date, it was decided that set in order to ensure broad and active participation from all range countries, including African countries. The first IBCA Summit 2 will be convened at a later date. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change has said that the new dates for the summit will be announced in due course following consultations with participating countries and stakeholders. The ministry added that India remains firmly committed to working with all partners to advance the shared objectives of biodiversity conservation and sustainable development. Samarth Singh for Akashvani News, Delhi.
12: Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwini Vaishnav at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. We have a report.
13: According to Ministry of Railways, initial investigations into several recent incidents, including some fire-related cases, have pointed towards the involvement of anti-social elements. The Railway Protection Force is actively probing these incidents. Officials noted during the meeting that timely and proactive action by railway authorities in several instances helped prevent larger mishaps. The railway said it is intensifying the use of modern technology tools such as artificial intelligence, drones and CCTV systems to strengthen the safety of passengers, trains and the wider rail network. The initiative is being carried out in mission mode with a focus on improving intelligence gathering at the beat level of the RPF. Railways Minister Ashwini Vaishnav said intelligence gathering from the field is being strengthened using modern technology tools. Meanwhile, the advisory from the ministry is crucial amid rising Russian trains due to vacation season, and so it is important for passengers to remain alert and vigilant while travelling. Komudi Parekh for Akashwani News, Delhi.
12: The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team SIT of the CBI to probe the developments from the time the R.G. Carr Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. We have more from our correspondent.
14: The 3-member seat will be led by the Central Bureau of Investigations Joint Director for Eastern Zone. The court has asked the team to find its report by 25th June. A division bench of Justice Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh directed the CBI to retrace events from the victim's dinner on 9th August 2024 through to her cremation. The agency has also been given freedom to investigate all related aspects. The court decision follows repeated concerns from the victim's family alleging tampering of evidence and suspension of facts. The bench emphasized that the SIT must examine every detail to ensure a comprehensive investigation. The crime, which shocked the nation in 2024, saw civic volunteer Sanjay Rai sentenced to life imprisonment. But widespread protests by doctors and civil society have kept the demand for justice alive. Shondipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
12: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIINewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, POJK. We have a report.
15: Burhan Hamza, alias Arjumand Gulzar Dar, alias Doctor, a commander of the Al-Badr terror group, was designated as a terrorist by India in April 2022 for his involvement in a series of terror acts in Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. According to local police, Burhan, a principal of a private college in Gojra, Muzaffarabad, was targeted when he came out of his college Thursday morning. The attackers fired multiple shots at close range and he sustained 3 bullets to the head. Hamza Burhan, born in 1999, hailed from Pulwama in Jammu and Kashmir. He went to Pakistan on valid documents where he joined the Al-Badr terror group. According to the Union Home Ministry, he was an active terrorist and commander of Al-Badr. Since going to Pakistan, he had been motivating youth to join Al-Badr and funding the outfit's terror activities. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
12: Punjab police has arrested a Pathankot resident for spying for Pakistan-based handlers by installing internet-linked CCTV camera on the Pathankot-Jammu National Highway 44. Pathankot SSP Daljinder Singh Dhillon told Akashwani News that as per the preliminary investigation, the accused Baljeet Singh installed a CCTV camera near a bridge on the National Highway 44 to allegedly keep an eye on the movement of the army and paramilitary forces. U.S. Secretary of State Marco Rubio has said that the U.S. is ready to sell as much energy as India is willing to buy. He said this while responding to a question about India being affected by high energy prices due to the closure of the Strait of Hormuz. The minister said this in the interaction with reporters in Miami as he embarked on the trip to Sweden and India. He also described India as a great partner and said his visit is important as it would give him an opportunity to meet with ministers from the Quad nations.
16: There's a lot to work on with India. They're a great ally, a great partner. We do a lot of good work with them. And so it is an important trip. I'm glad we're able to do it because I think there'll be a lot for us to talk about. And we'll also meet with the Quad there, which is important. Something, I think my first meeting as Secretary of State was with the Quad. So I believe like I went, I got sworn in, I did the thing in the lobby, and then I went right upstairs and that was my first meeting. And I'm glad we're able to do it now in India. And we're going to do one later in the year as well.
12: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for today. Meanwhile, in Uttar Pradesh, temperature is breaking all records as the entire state is reeling under heat wave. On the fifth consecutive day, Banda district in the state recorded the highest temperature in the country of 47.6 degrees Celsius. More from our correspondent.
17: Torture of temperature continues in a state where mercury is touching new heights every passing day. Bundelkhand is worst hit area where temperature has gone beyond 45 degrees Celsius in most parts of the region. 47.6 degrees in Banda was not just highest in the country but also 4 degrees above normal, which paralyzed life in the city. Prayagraj was not far behind with temperature reaching 46.6 degrees, 5 degrees above normal. Varanasi recorded 45.6 degrees Celsius. State capital Lucknow also experienced the hottest day of this season with mercury rising to 43.6 degrees, 5 notches above normal. People are having sleepless nights also because of mercury reaching 30 degrees in night. Met department has warned about severe heat wave in some parts of the state. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
12: In IPL cricket, Gujarat Titans defeated Chennai Super Kings by 89 runs at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad last night. With this, CSK were officially eliminated from the season of IPL after finishing the league stage with just 12 points. Chasing a target of 230 runs set by Gujarat Titans, CSK were bundled out for just 140 runs in 13.4 overs. Shivam Dubey was the top scorer with 47 runs. For Gujarat Titans, Mohammad Siraj, Rashid Khan and Kagiso Rabada each took 3 wickets. Siraj was a just player of the match. Today, Sunrisers Hyderabad will take on Royal Challengers Bengaluru at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad at 7:30 p.m. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Sarabjit.
18: Thank you, Pramod. Explore alternative energy sources, PM tells government amid West Asia crisis, headlines the Indian Express, while the Hindustan Times headlines reforms, delivery, West Asia in focus as PM meets ministers, and the Statesman headlines PM Modi chairs high-level governance review meeting amid global concerns. The Asian Age headlines, first coalition government in Tamil Nadu in 74 years, 23 join cabinet, while the Times of India says, Vijay expands Tamil Nadu cabinet with 7 Dalit ministers, Congress back in government after 59 years. Almost all newspapers carry the story of the India-Africa-Delhi summit being postponed due to the Ebola crisis. The Tribune headlines, Ebola scare delays India-Africa summit. Most papers cover the story of Hamza Burhan, a key figure linked to the 2019 Pulwama attack, which killed 40 CRPF jawans being shot at in POK. The Hindu, in its editorial titled Castaway, writes that people must have the option to state they are casteless in the census. The paper adds that the Supreme Court was not wrong to dismiss a petition that sought to stall the caste census, which is part of the ongoing census 2027. The Chief Justice of India remarked that any government of the day must know how many people are backward and how many need welfare. And finally, the Statesman on its front page says, ahead of North Upper, plain simmer, but some respite around May 29th. And with that, it's back to you, Pramod.
19: Thank you. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Cyprus Nikos Christodoulidis in New Delhi today. First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on the June 1st postponed. Railway urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RJ Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. U.S. Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
20: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं. लीजिए प्रस्तुत है कवि गोष्ठी. प्रतिभागी है सुरेंद्र संधव और कुलदीप रंगीला.
21: आइए मित्रों, आकाशवाणी की इस कवि गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है. आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद. तो हम आज की इस गोष्ठी की शुरुआत करें, उसके पहले मैं आपको हमारे साथी कविगण जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उनसे परिचय कराना चाहूंगा. मेरे पास में बैठे हैं श्री कुलदीप रंगीला. कुलदीप रंगीला देवास से हमारे बीच यहां उपस्थित हुए हैं. टोकखुर्द से हमारे बीच आए हैं सुरेंद्र जी सेंधव. सुरेंद्र जी सेंधव का भी मैं यहां पर इस कवि गोष्ठी में स्वागत करता हूं. और मैं स्वयं पंकज जोशी एक बार फिर हास्य कवि के रूप में देवास से आपके बीच रूबरू हो रहा हूं. तो साथियों, इस गोष्ठी की शुरुआत इन चार पंक्तियों के साथ करते हैं कि शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं. शारदा गणपति सकल क्लेश हरते हैं. नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं. और दो अपना आशीर्वाद आज इन कवियों को. हम आज की इस कवि गोष्ठी का श्री गणेश करते हैं. तो साथियों, श्री गणेश करने के लिए मैं उस शख्स को यहां आवाज दे रहा हूं जिसका नाम होता है सुरेंद्र सेंधव. और सुरेंद्र जी सेंधव को इन चार पंक्तियों के माध्यम से आपके बीच बुलाना चाहूंगा कि चीजें खराब होंगी. चीजें खराब होगी तो नालियों तक पहुंचेगी. जुबा खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी. और सुरेंद्र सेंधव की कविताएं चिंतन का विषय है दोस्तों. दिल से निकली तो जरूर आपकी तालियों तक पहुंचेगी. सुरेंद्र जी सेंधव,
22: बहुत बढ़िया, वाह, धन्यवाद पंकज भाई. माँ वीणा पाणे को प्रणाम करता हूँ. आकाशवाणी के सभी सुधी श्रोताओं को मेरा यानी कि सुरेंद्र सेंधव का प्यार भरा नमस्कार. इस काव्य गोष्ठी में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. हमारी संस्कृति के अनुसार माँ के लिए सिर्फ एक दिन नहीं वरन हर दिन माँ का होता है. जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीशी हमारा ध्येय वाक्य रहा है. माँ क्या होती है और क्या ताकत होती है माँ के आशीर्वाद में, चार पंक्तियों से आपके बीच रखता हूं. सभी काव्य अनुरागी सुने.

0: देती है। और पंकज भाई क्या होती है माँ, चार पंक्तियों में सुने कि रोते हुए चेहरों पे है मुस्कान जैसी माँ,
1: वाह
0: रोते हुए

0: मोह का फल आजकल यहीं पे मिलता है, क्योंकि गिव और टेक का जमाना है। कि किए कर्मों का फल आजकल यहीं पे मिलता है, तो किया जैसा हश्र उनका वही तेरा हशर होगा। किया जैसा हश्र उनका वही तेरा हशर होगा। एक माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर ज्ञानी ज्ञानी और गुणवान बनाती है, नौकरी के लिए शहर भेजती है और फिर इंतजार करती रहती है उनके लौट आने का, दिवाली होली रक्षाबंधन पर। तब उस पीड़ा की चार पंक्तियां सुने
1: जी।
0: कि दिलों में उत्सवों वाले अब वो

0: से लड़के वो फिर वापस नहीं आते, गए जो गांव से लड़के वो फिर वापस नहीं आते। कुलदीप भाई, किसी मित्र ने मुझसे
1: जी
0: मदर्स डे पर माँ की महिमा पर एक कविता लिखने को कहा, लेकिन मैं कैसे लिख पाता। माँ शब्द कितना विशालतम और कितना महान, और मेरी लेखनी कितनी तुच्छ। फिर भी मैंने एक प्रयास किया, छोटी सी कविता मैंने उसे प्रेषित की, वही आपके बीच रखने का प्रयास करता हूं।
1: स्वागत है।
0: कि माँ का दर्जा सबसे ऊंचा,
1: वाह।
0: एक चिर परिचित धुन में माँ

0: नवाऊं, और अंत में भावुकता की चार पंक्तियां।
1: जी
0: एक न एक दिन वो जरूर हमारे जीवन में आता है जो कि बहुत बुरा दिन होता है। चार पंक्तियां सुने कि माँ के आंचल का ये साया सदा नहीं होगा,
1: वाह
0: माँ के आंचल का ये साया सदा नहीं होगा, तेरा आशीष जो पाया जुदा नहीं होगा, दे के कांधा चिता को अग्नि दे आएंगे, दे के कांधा चिता को अग्नि दे आएंगे, पर तेरे दूध का कर्जा अदा नहीं होगा, पर तेरे दूध का
1: बहुत
0: कर्जा अदा
1: बढ़िया।
0: नहीं होगा। अपने माता पिता का ख्याल रखे, उनको सम्मान दे, उनकी सेवा करे। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सही बात सुरेंद्र जी, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माँ का ख्याल रखना चाहिए, माँ का सम्मान करना चाहिए। मैं भी अपनी माँ का बहुत सम्मान करता हूँ, मैं गौ माता का भी बहुत सम्मान करता हूँ, मैं अपनी सासू माँ का भी बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं अपने बच्चों की माँ का भी बहुत सम्मान करता हूँ।
0: वाह,
1: और जहां तक माँ की बात है, मुझे बरबस कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि जीने की
0: अच्छा,
1: आस माँ है, अंधेरे में प्रकाश माँ है, रोटी पेट उपवास माँ है, और अमिताभ के पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, शशि कपूर के पास क्या है? शशि कपूर के पास माँ
0: माँ है।
1: है।
0: वाह वाह,
1: मेरे घर की छत पे बिल्ली ने दिए 6 बच्चे, बड़े ही सुंदर, बड़े ही अच्छे बच्चे, तोड़कर आए अपना नीड़, उनको देखने के लिए लोगों की लग गई भीड़। एक बोला इन्हें भूख लगी है, दूसरा बोला नहीं नहीं इन्हें तो लगी प्यास है, तीसरा बोला इन्हें अपनी माँ की तलाश है, चौथा बोला माँ माँ तो शशि
0: शशि
1: कपूर
0: कपूर
1: के
0: के पास।
1: पास
0: वाह वाह वाह,
1: है, माँ माँ तो शशि कपूर के पास है, माँ माँ तो शशि कपूर के पास है। अब साहब जनगणना अधिकारी आए अमिताभ बच्चन के द्वार, अमिताभ बोले अंदर आइए फरमाइए, जनगणना अधिकारी बोले हमें आपके परिवार के सदस्यों का विवरण बताइए, अमिताभ बोले देखिए मेरा मेरी प्रतिभा ही मेरा धन है, मेरा नाम अमिताभ है और पत्नी का नाम जया बच्चन है, बेटा अभिषेक है और बहू ऐश्वर्या बच्चन है। तो जनगणना अधिकारी बोले वो सब

0: तो ठीक है, पर एक बात बहुत खास है, हमें आपकी माँ की तलाश है। हमें आपकी माँ की तलाश है। तो अमिताभ बोले, माँ माँ तो शशि
1: शशि कपूर के
0: कपूर के
1: पास
0: पास
1: है।
0: है।
1: वाह,
0: माँ माँ माँ तो शशि कपूर के पास है। और साहब, शशि कपूर रो रहा था, आपे से बाहर हो रहा था। अमिताभ बोला, यार क्यों रोता है, आजकल तो अपुन की माँ पे भी तेरा ही अधिकार होता है। शशि कपूर बोला, तुम नहीं समझोगे, ये बात सही है कि तुम्हारी माँ मेरे पास है, लेकिन मेरी माँ तो भगवान के पास है। माँ की याद में मेरी आत्मा हर वक्त रोती है, और माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती
1: वाह
0: है।
1: वाह वाह,
0: माँ का महत्व तो वही जानता है जिसकी माँ नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक आस है, अंधेरे में प्रकाश है। माँ ज्योता वाली है, माँ शेरा वाली है, माँ दुर्गा है, माँ काली है। माँ की हर बात निराली है, और माँ से ही पूरे जग में प्रकाश है। पर माँ माँ तो
1: शशि
0: हम
1: कपूर के,
0: सबके पास है, हम सबके
1: वाह
0: पास
1: वाह,
0: है,
1: बहुत
0: हम
1: बढ़िया।
0: सबके पास है। आइए मित्रों, माँ से जब हमने अनुमति ले ही ली है, तो इस कवि गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरे क्रम पर मैं मेरे साथी भाई कुलदीप रंगीला को आवाज दे रहा हूं।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मित्रों, कुछ हास्य के छंद और मुक्तकों के माध्यम से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूं।
0: स्वागत।
1: जोशी जी को धन्यवाद, उन्होंने बहुत अच्छी हास्य की भूमिका के साथ मुझे आमंत्रित किया। चार पंक्ति देखिए। जीवन में जो कभी था वो रंग ढूंढ रहे हैं, हाँ
0: जीवन में जो कभी था वो रंग ढूंढ रहे हैं, चक्री पकड़ने वाले के संग ढूंढ रहे हैं, और बचपन में जो कट

0: ढूंढ रहे हैं। और मित्रों, हास्य कवियों के साथ घटनाएं नहीं होती है, उनके साथ दुर्घटनाएं होती है। मैं कुछ दुर्घटनाएं कुछ छंदों के माध्यम से बताता हूं। आज से 10 वर्ष पहले की एक सत्य घटना, आनंद लीजिएगा, एक छंद के माध्यम से।
1: स्वागत है।
0: कि एक लड़की वाले मुझे देख कर कहने लगे, आपके संग हम हमारा रिश्ता जोड़ डालेंगे। लड़की खूबसूरत है पर एक आंख से है काणी, जिसे हम आपके हवाले छोड़ डालेंगे। मैं बोला लड़की काणी तो लड़का भी काणा।

आंख फोड़ डालेंगे। वो बोले शादी के लिए। और मित्रों क्या होता है, एक पाउ छोड़ देता हूं, एक छंद का और आनंद लीजिएगा कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम पूछा मैं बोला नबीन रख दीजिए। एक वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया। नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े के इसके

0: अनबीन, दूसरे का है प्रबीन, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। और मित्रों हम हास्य कवियों का क्या, कई जगह कवि सम्मेलन होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग कवि सम्मेलन आजकल करवाते हैं। अभी जोशी जी हमारे साथ थे, कवि सम्मेलन में हम गए थे, उसके आयोजक का नाम था प्रेमनाथ तिवारी, और तिवारी जी ने कवि सम्मेलन सिर्फ इसलिए करवाया क्योंकि उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन भावुक होकर वो मंच पर आए, आकर के घोषणा कर दी कि कवियों को पारिश्रमिक जब ही दिया जाएगा जब वो मेरे पुत्र पे चार चार पंक्ति सुनाएंगे। तो सारे कवि परेशान, अब सारे काम छोड़ो और तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। तो सारे कवि प्रारंभ हो गए। किसी ने कहा तिवारी जी का पुत्र डॉक्टर बनेगा, कोई कहने लगा इंजीनियर बनेगा। आठ कवियों के बाद में मेरा नंबर आया तो मैंने कहा तिवारी जी आपका पुत्र डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, परंतु मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। तो वो तिवारी जी टेंशन में आए, जो चार पंक्ति तिवारी जी को सौंपी उसका आनंद लीजिए।
1: स्वागत
0: के घर पे तिवारी जी के पुत्र।

बन जाएगा। पापा जी तिवारी इसके, माता जी तिवारी इसकी, बड़ा होके यह भी तिवारी। और मित्रों आजकल क्या होता है, शादी का सीजन चल रहा है, कई जगह हम जाते हैं। पहले हमारे देश की संस्कृति रही कि हम बैठ के खाना खिलाया करते थे शादियों में, लेकिन आजकल परिवर्तन ऐसा हुआ कि बफेट पार्टी हर जगह होती है, जहां पर आदमी खड़े खड़े खाना खाता है। तो जिस समय बैठ के खाना खिलाया जाता था उस समय भी कई प्रकार की परेशानियां आती थी। एक परेशानी एक छंद के माध्यम से कि एक श्रीमान के घर बैठ गए पंगत में, खाना खा के बोले भोजन बड़ा ही सलोना है। एक श्रीमान के घर बैठ गए पंगत में, खाना खा के बोले भोजन बड़ा ही सलोना है। पड़ोस में बैठे श्रीमान मुझे टोकते थे, और कितनी पूड़ी इस पेट में डुबोना है। मैं बोला मेरी पूड़ी है पेट मेरा पत्तल मेरी, मेरे जल्दी खाने से क्या लाभ तुम्हें होना है। वो बोला मेरी थाली में पड़ोसी हाथ धो के गया, मुझे अब आपकी थाली में हाथ धोना है। और मित्रों हम हर जगह गीता का एक श्लोक लिखा हुआ देखते हैं, जिस पर लिखा होता है कि इस धरती पर आदमी अकेला आता है और अकेला जाता है। मैंने इस बात का थोड़ा सा विरोध किया, मैंने कहा यह बात पूरी तरीके से सत्य है कि आदमी आता अकेला है, परंतु ये गलत है कि आदमी जाता अकेला है। आदमी अपने साथ क्या लेके जाता है, एक आध्यात्मिक हास्य कि बूढ़ा हो जवान हो गरीब धनवान हो, सबको एक दिन अपने संग काल लेके जाता है। वो गाड़ियों में घूमता था बंगलों में रहता था, पर संग में न कोई कुछ माल लेके जाता है। तो अकेले ही आए थे हम अकेले ही जाना हमें, विद्वानों का कहां ये ख्याल लेके जाता है। पर कहे कुलदीप ना अकेला कोई जाता वहां, 10-12 लोगों के वो बाल लेके जाता है। कहे कुलदीप ना। और मित्रों एक छोटा सा गीत में और पढ़ देना चाहता हूं, क्या है जब ऊपर वाले ने इस सृष्टि का निर्माण किया, ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो हास्य की बातें थी आपसे जुड़ने के लिए, लेकिन एक संदेश का गीत मैं आपके बीच में रखता हूं। जब ऊपर वाले ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया, तो सृष्टि पे कई प्रकार के जीव जंतु बनाए, सभी को कुछ न कुछ विशेष दिया। जैसे हाथी को दी ताकत, हाथी ने कभी अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। सांप को दिया जहर, सांप ने कभी अपने जहर का दुरुपयोग नहीं किया। परंतु इंसान को दिया दिमाग, इंसान ने आज तक अपने दिमाग का कभी सदुपयोग नहीं करा। बस यहीं से मेरी कविता प्रारंभ होती है। हमारे देश में जो छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद होते हैं, उन विवादों से हटके एक सांप्रदायिक एकता से संबंधित में कविता का उद्देश्य यह है कि हमारे शरीर का जो संरचना है इसमें कौन सा अंग किस काम में आना चाहिए। चार पंक्तियां पहले भूमिका की फिर गीत। के भगवान में अल्लाह में कोई भेद नहीं है, भगवान में अल्लाह में कोई भेद नहीं है, सच हम कहेंगे कहने में कोई खेद नहीं है। जाना था जिन वीरों को तो वतन के रास्ते, आंखें झुकाए जा रहे पतन के रास्ते। अंगों के दुरुपयोग पे न शोक कीजिए, इस काया के अंगों का सदुपयोग कीजिए। इस काया क्यों, यहां से एक एक अंग किस काम आता है। के कांधा वो क्या जो अर्थी के न काम आ सके, वो पांव ही क्या जो न दर खुदा के जा सके। वे उंगलियां ही क्या कि जो मुट्ठी न बनाए, मुट्ठी ही क्या दुश्मन के जो न

ही क्या जिसमें किसी के प्यार नहीं हो, वह दिल ही क्या जिसमें किसी के प्यार नहीं है। और मित्रों अभी नवरात्रि का पर्व है, कई लोग नवरात्रि को उपवास रखते हैं, तभी रोजे, कई हमारे मुस्लिम भाई रोजे रखते हैं, तो रोजे रखने वालों को और उपवास करने वालों को ये छंद समर्पित। जो इंसान फूलों पे चला है उसे ऐसा वक्त भी आ सकता है कि कांटों पे चलना पड़े, उसे कांटों पे चलने के लिए भी सदैव तैयार होना चाहिए। कि वह एड़ी क्या जो कांटों की चुभन न सह सके, वे बाल क्या गृहस्थी की पवन न सह सके, वह रक्त ही क्या खुद में जो न आग उबाले, जुबान ही क्या मुख से जो दुआ न निकाले, अरे त्वचा ही क्या जो ताप का एहसास ना करे, त्वचा ही क्या जो ताप का एहसास ना करे, और वो पेट ही क्या जो कभी उपवास

0: भी उपवास ना करे। और अंतिम पंक्तियां निवेदित है, एक शब्द होता कंदोरा जिसे मालवा में कहा जाता है, कड़धनी जिसे मालवा में कहा जाता है कंदोरा, वो शब्द इस छंद में आएगा। बात श्रृंगार से शुरू होती है और कहा जाती है कि कमर वह क्या कि जिस पे कंदोरा न कसा हो, वे गाल गोरे क्या कि जिस पे तिल न बसा हो, वे गाल गोरे क्या कि जिस पे तिल न बसा हो, इंसान वह क्या जिस पे जमाना न हंसा हो, अरे छाती वो क्या दुश्मन के आगे जो न डट सके, छाती वो क्या दुश्मन के आगे जो न डट सके, और गर्दन वो क्या जो देश के लिए न कट सके, गर्दन वो क्या जो देश के लिए न कट सके। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए, जो इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे थे भाई पंकज जोशी जी, मैं चाहता हूं कि उनका संचालन का तेवर आपने देखा है, उनके काव्य पाठ का भी रंग आप देखें। मैं पंकज जोशी जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए और अपनी काव्य यात्रा का शुभारंभ करें। स्वागत है
1: मित्रों। जिनकी शादी हो गई वो खुश खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे कई कुंवारे हैं जिनका ये संयोग नहीं बैठ रहा, तो उन कुंवारे लोगों की तरफ से कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। वो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, गोविंदा ओ गोपाला, गोविंदा ओ गोपाला, खोल दे किस्मत का ताला, मेरी भी बाहों में दे दे कोई सुंदर सी वाला, गोविंदा ओ गोपाला, खोल दे किस्मत का ताला, मेरी भी बाहों में दे दे कोई सुंदर सी वाला, ऐसी दे या वैसी दे,

0: गोपाला खोल दे किस्मत का ताला। और साहब आगे के सपने एक कुंवारे व्यक्ति के क्या होते हैं देखिए, कि मेरा भी घर बार बसे सपनों का संसार बसे, मेरा भी घर बार बसे सपनों का संसार बसे, मेरे भी आंगन में खेले, मेरे भी आंगन में खेले तेरे जैसा नंदलाला। गोविंदा ओ
1: वाह
0: गोपाला, गोविंदा ओ गोपाला खोल दे किस्मत का ताला। और साथियों, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है और कुलदीप ने एक बात कही थी और एक छंद सुनाया था पंगत के ऊपर। आज हमारे यहाँ संस्कृति ये हो गई कि बफेट में हम जाते हैं और खड़े खड़े खाते हैं, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि बफेट हो या किसी भी प्रकार की शादी हो, लेकिन अगर वहां पर रोटी रख दी गई है तो सबसे ज्यादा भीड़ रोटी के स्टॉल पर ही मिलेगी।
1: सही बात है।
0: और जब ये परिस्थिति है तो रोटी के ऊपर कुछ पंक्तियां
1: वाह
0: देखिए, कि रोटी प्रेम तराना है, रोटी प्रेम तराना है, रोटी सबको खाना है, रोटी के कारण ही देखो भोजन आज सुहाना
1: वाह
0: है।
1: वाह
0: रोटी प्रेम तराना है, रोटी सबको खाना है, रोटी के कारण ही देखो भोजन आज सुहाना है। कि रोटी एक वरदान है, भोजन की ये शान है, खाने की थाली में रोटी, खाने की थाली में रोटी, सच पूछो तो भगवान है, मान है, सम्मान है। रोटी कोई वस्तु नहीं है, कुदरत का नजराना है,
1: वाह
0: रोटी प्रेम तराना है, रोटी हमको खाना है। और साहब बफेड़ में हम जाते हैं लेकिन हम खड़े खड़े खाते हैं,
1: क्या बात है।
0: वास्तविकता ये कि रोटी वो वरदान है जिसे बैठकर ग्रहण करना चाहिए। तब मैंने लिखा है कि बफेट में हम जाते हैं, बफेट में हम जाते हैं, पश्चिम को अपनाते हैं, खाना चाहिए बैठ के रोटी, खाना चाहिए बैठ के रोटी, खड़े खड़े ही खाते हैं, बफेट में हम जाते हैं।
1: वाह
0: तो भोजन के उस हाल में भाजन, भोजन के उस हाल में रस भरी ना दाल में सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी रोटी के स्टाल में,
1: अच्छा
0: सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी रोटी के स्टाल में। रोटी भोजन सुहाना है, बैठ के हमको खाना है, रोटी के कारण ही देखो पागल आज जमाना है।
1: अच्छा
0: और साहब रोटी की महिमा देखिए, कि कोई बीन के खाता है रोटी,
1: वाह
0: कोई बीन के खाता है रोटी, कोई छीन के खाता है रोटी, जिसको शुगर हो जाती वो गिन के खाता है रोटी, व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य का रोटी ही पैमाना
1: वाह
0: है, रोटी प्रेम तराना है, रोटी सबको खाना है, रोटी प्रेम तराना है। और साहब अंतिम चार पंक्तियां देखिए, कि रोटी के कितने रूप हैं, कई रूप हैं रोटी के, रोटी ब्रेड और पाव भाजी,
1: क्या बात है।
0: कई रूप हैं रोटी के, रोटी ब्रेड और पाव भाजी, पंडित इसको चैन से खाता, प्रेम से खाता है काजी,
1: वाह
0: पंडित इसको चैन से खाता, प्रेम से खाता है काजी, सांप्रदायिक एकता का रोटी ताना बाना है, रोटी भोजन सुहाना
1: क्या
0: है,
1: बात है।
0: रोटी प्रेम तराना है, रोटी के कारण ही देखो पागल आज जमाना है, पागल आज जमाना है, रोटी सबको खाना है। धन्यवाद साथियों, मेरे साथ आज इस कवि गोष्ठी में थे भाई सुरेंद्र सेंधव टोक खुर्द से, देवास से कुलदीप रंगीला, और आपका मित्र पंकज जोशी हास्य कवि माँ चामुंडा की नगरी देवास से आपके बीच यहाँ उपस्थित हुए। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।

अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी, प्रतिभागी थे सुरेंद्र संधेव और कुलदीप रंगीला, संचालन कर रहे थे पंकज जोशी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी एट 90।
1: मिडी वेव 462.9 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज हम आपके लिए लाए हैं सीमा चौरी के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं के स्वर में पहली रचना।

ये निमाड़ी पारंपरिक लोक रचना अभी सुन रहे थे आप सीमा चौरी की आवाज में, जिनके स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत के कुछ लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है इन्हीं की आवाज में एक और लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाएं। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, साथ ही आप बातें कर सकेंगे अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय से, आकाशवाणी इंदौर की हर दिल अजीज उद्घोषिका देविंदर कौर मधु से और अपने जमाने के आवाज के जादूगर संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से 12 बजे तक

ये निमाड़ी लोकगीत अभी सुन रहे थे आप सीमा चौरी की आवाज़ में। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं आपको इन्हीं के स्वर में गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत। लीजिए, प्रस्तुत है सीमा चौरी की है आवाज़ में एक और रचना।

ये निमाड़ी लोकगीत अभी सुना अपनी सीमा चौरी की आवाज़ में, और इन्हीं के स्वर में आज हम आपको सुनवा रहे थे लोक संगीत के कुछ लोकगीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमांशु शर्मा के गाए कुछ भक्ति रचनाएँ।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे। श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर की श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाए। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, साथ ही आप बातें कर सकेंगे अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय से, आकाशवाणी इंदौर की हर दिल अजीज उद्घोषिका देविंदर कौर मधु से और अपने जमाने के आवाज की जादूगर संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से 12 बजे तक।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में संदेश से पहले आप सुन रहे थे संत कबीर की रचना हिमांशु शर्मा के स्वर में। और लीजिए अब सुगम संगीत कार्यक्रम में आगे आपको सुनवाते हैं राधा कृष्ण बामनिया की ये रचना हिमांशु शर्मा के ही स्वर में।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे हिमांशु शर्मा की आवाज़ में, जिसे लिखा था राधा कृष्ण बामनिया ने, और ये रचना हमने आपको सुनवाई सुगम संगीत के कार्यक्रम में। इसी के साथ सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत में पंडित गणपति भट्ट का गायन, राग है गुजरी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित गणपति भट्ट का गायन राग था गुजरी तोड़ी। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसे हम रिले करेंगे अपने भोपाल केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में बसे छिंदवाड़ा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिले में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी और लू का असर बढ़ गया है। लगातार तीसरे दिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान भी लगभग 28 डिग्री तक पहुंच गया है। जानकारी के अनुसार जिले में वर्ष 2005 में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक का सबसे अधिक तापमान माना जाता है। भीषण गर्मी के बीच छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ी है। विभाग के अनुसार पिछले एक सप्ताह में सैटेलाइट के माध्यम से 1200 से अधिक फायर अलर्ट मिले, जिनमें 705 वन क्षेत्रों और 515 वन क्षेत्र के बाहर आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। वन विभाग के उप वन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि आग से लगभग 338 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 132 लोगों पर वन अपराध दर्ज किए गए हैं। विभाग ने बताया कि जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण महुआ संग्रहण के दौरान लगाई जाने वाली आग, नरवाई जलाना और लापरवाही से फेंकी गई जलती बीड़ी सिगरेट है। छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने

0: जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में गेहूंपार्जन खाद वितरण और पेयजल व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को ई टोकन और उपार्जन में किसी प्रकार की परेशानी न हो, खाद की उपलब्धता की जानकारी व्यापक रूप से किसानों तक पहुंचाई जाए। बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 8,330 किसानों से 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। प्रभारी मंत्री ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थायी समाधान पर जोर देते हुए कंट्रोल रूम को सक्रिय रखने और शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के पर्यटक आने वाले एक माह तक बहुत कम दामों में पर्यटन ग्रामों में बने होम स्टे में रहकर ग्रामीण पर्यटन का आनंद ले सकेंगे। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अग्रिम कुमार ने बताया कि जिला पुरातत्व पर्यटन और संस्कृति परिषद ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के साथ मिलकर पर्यटकों के लिए ग्रीष्मकालीन ऑफर दिया है। 20 मई से 20 जून तक पर्यटक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। छिंदवाड़ा वन वृत्त में तेंदुपत्ता संग्रहण कार्य तेजी से जारी है। अधिक तापमान के कारण इस बार पत्ते जल्दी तैयार हुए हैं, जिससे संग्रहण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली है। उपवन संरक्षक अनादि बुधौलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से स्पेन की एक टीम ने छिंदवाड़ा के पर्यटन गाँवों में डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग की। स्पेन से आई टीम ने तामिया, सावरवानी, धूसावानी और चिमटीपुर में 3 दिनों तक ग्रामीण और आदिवासी संस्कृति, पर्यटन गतिविधियों और पातालकोट की पारंपरिक आदिवासी विवाह रस्मों को कैमरे में कैद किया। ये शूटिंग रूरल टूरिज्म ऑफ द वर्ल्ड नामक अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन सीरीज के लिए की गई है, जिसका प्रसारण लगभग 80 यूरोपीय देशों में किया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की ग्रामीण और इको टूरिज्म को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना है। पिछले दिनों सांसद विवेक वंटी साहू और अन्य जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर कार्यालय परिसर से कृषि रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिले के सभी विकास खंडों में अगले 10 दिनों तक कृषि रथ गांव-गांव पहुंचकर किसानों को खरीफ फसलों की तैयारी, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती, विभागीय योजनाओं की जानकारी देंगे। कलेक्टर हरेंद्र नारायण के निर्देश पर शहर में अमानक प्लास्टिक डिस्पोजल और पॉलीथीन के खिलाफ संयुक्त छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व और पुलिस विभाग की टीम द्वारा की गई। छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू ने रेलवे और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ चार फाटक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान चार फाटक और चौरईकुंडा रेलवे क्रॉसिंग पर प्रस्तावित अंडरब्रिज और सौसर लोधीखेड़ा मार्ग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थल निरीक्षण किया गया। जिले में संचालित आंगनबाड़ियों में ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की है। 1 से 15 जून तक जिले की सभी आंगनबाड़ी बंद रहेंगे। इस दौरान निर्धारित टीकाकरण और मासिक वजन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यकर्ता और सहायिकाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा और पांडुना जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएनएल के 211 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। ये स्वीकृति केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिले के सांसद विवेक बंटी साहू के प्रयासों के बाद प्रदान की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश प्रजापति का था, वाचन था दीपा सिंह का और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
3: श्रोताओं सुनिए विशेष सूचना। आकाशवाणी के 90 बरस और आकाशवाणी इंदौर की स्थापना 71वां वर्ष, इस विशेष अवसर पर आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 10:10 पर विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम। तो सुनना ना भूले, यह हमारा विशेष कार्यक्रम।

शब्दाक्षरों और सुरों के अनूठे संगम को समेटे आकाशवाणी प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष की सफर और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रोता सादर आमंत्रित हैं शुक्रवार 22 मई सन 2026 को सजीव फोन इन प्रोग्राम में सुबह 10:10 से 12 बजे श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से आकाशवाणी से अपने 90 वर्ष के सफर का जिक्र कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए टेलीफोन नंबर है 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता 0731 कोड अवश्य लगाए। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और विविध भारती चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जाएगा। इस प्रोग्राम को आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीमिंग आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक पेज पर भी किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आप अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। आकाशवाणी इंदौर के अभियांत्रिकी प्रमुख अभय कुमार गुप्ता से, आकाशवाणी के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक से, साथ ही आप बातें कर सकेंगे अपने समय के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय से, आकाशवाणी इंदौर की हर दिल अजीज उद्घोषिका देविंदर कौर मधु से और अपने जमाने के आवाज की जादूगर संतोष जोशी से। इस कार्यक्रम में उत्साह है, उमंग है और ढोल की थाप है, तो जरूर फोन लगाइए। शुक्रवार दिनांक 22 मई सन 2026 को सुबह 10:10 से 12 बजे तक

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला विशेष कार्यक्रम।
2: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी और विविध भारती का इंदौर केंद्र। आइए सुने आकाशवाणी के प्रसारण के गौरवमयी 90 वर्ष के सफर में और आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर विशेष सजीव फोन इन कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं कार्यालय प्रमुख अभय कुमार गुप्ता, कार्यक्रम प्रमुख राजेश, सेवानिवृत्त उद्घोषक गणों में विजय रॉय, देविंदर कौर मधु और संतोष जोशी, और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ उद्घोषक संजीव मालवीय।

0: बधाई हो,
1: बधाई हो आकाशवाणी इंदौर,
0: बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो आकाशवाणी इंदौर,
1: बधाई हो।
2: नमस्कार, मैं संजीव मालवी आकाशवाणी इंदौर के ड्रामा स्टूडियो से आप सभी तमाम श्रोताओं का स्वागत करता हूं आज के इस ऐतिहासिक दिन का। 90 वर्ष का ये सफर आकाशवाणी का और 71वां स्थापना दिवस आकाशवाणी इंदौर का, ये दोनों दिन का आज सेलिब्रेशन आकाशवाणी इंदौर के स्टूडियोज में है। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारा पूरा स्टाफ इस स्टूडियो में मौजूद है और इस जश्न को मना रहा है। हमारे साथ है केंद्र प्रमुख अभियांत्रिकी अभय कुमार गुप्ता जी, आपका स्वागत है। कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ उद्घोषक, अपने समय के गोल्ड, अपने जमाने के जाने माने उद्घोषक विजय रॉय साहब, जो इंटरनेशनल कमेंटेटर रहे हैं। गजलों के प्रोग्राम श्रोताओं आपने सुनेंगे सुने होंगे, और गजलों के प्रोग्राम से आपके दिलों पर जिन्होंने राज किया है वो है देविंदर कौर मधु जी। और अपनी आवाज का जादू बिखेरे हुए अनेक आवाजों में आपका मनोरंजन करने वाले हमारे पुराने साथी संतोष जोशी जी का भी स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से हमारे सभी साथियों का स्वागत करते हैं हम, और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये 90 वर्ष का जो सफर है आकाशवाणी का ऐतिहासिक है, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का ऐतिहासिक दिन आज आकाशवाणी के स्थापना दिवस के रूप में यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं अभय कुमार गुप्ता जी से निवेदन करूँगा कि इस अवसर पर हमारे तमाम श्रोताओं को अभियांत्रिकी प्रमुख होने के नाते और तकनीकी क्षमता जो आकाशवाणी की है उसके संदर्भ में हमारे श्रोताओं को अवगत कराएं।
3: आकाशवाणी केंद्र इंदौर के श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। हम लोग समय और टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करते हुए और जो जो अत्याधुनिक तकनीकी साधन है उनको इस्तेमाल करते हुए मीडिया में अपना परम वर्चस्व बनाए हुए अग्रसर हैं, और 71 वर्ष आकाशवाणी इंदौर के स्थापना के हम मना रहे हैं। साथ ही भारतीय प्रसारण सेवा के हम 90 वर्ष पूर्ण होने का यह उत्साहपूर्ण संयोजन कर रहे हैं। तकनीकी रूप से हम जो जो आज के समय के सर्वर कंप्यूटर्स, इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग के जो जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी क्वालिटी और श्रोताओं तक अपनी पहुंच को बनाए हुए हैं।
2: बहुत बहुत धन्यवाद गुप्ता साहब। और अब मैं राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि जो 71वां स्थापना दिवस है हमारा आकाशवाणी इंदौर का, और इस 71वें साल तक हम जो सूचना शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में मालवा और निमाण की सेवा करते आए हैं उस संदर्भ में हमारे श्रोताओं से मुखातिब हों। श्री राजेश जी,
4: आकाशवाणी इंदौर का इतिहास मध्य प्रदेश के प्रसारण जगत में गौरवशाली रहा है। इसकी विधिवत शुरुआत 22 मई 1955 को हुई थी। 1956 में राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश का प्रमुख केंद्र बना, जिसने मालवा अंचल में सूचना शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह केंद्र अपनी सुरीली उद्घोषणाओं और लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा।

0: 1956 में जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया, तब इंदौर केंद्र के राज्य के सांस्कृतिक और सूचनात्मक प्रसारण में अग्रणी भूमिका निभाई। और इंदौर में रेडियो का इतिहास काफी पुराना है। 1932 के आसपास तत्कालीन शासकों के दौरान ही इतबारिया बाजार में रेडियो इंस्टॉल किया गया, जो शहर के संचार के प्रति रुझान को दर्शाता है। और हम बात करें रेडियो के इतिहास पर, तो 1927 में निजी रेडियो स्टेशन से शुरू हुआ और 1936 में सरकारी नियंत्रण में ऑल इंडिया रेडियो, और फिर 1957 में आकाशवाणी के रूप में विकसित हुआ। और हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हमारा केंद्र जो है खेती गृहस्थी का, जो यहाँ कार्यक्रम होता है, नंदा जी, बहरा जी, काना जी, जिन्होंने अपनी मालवी निमारी बोलियों के जरिए पूरे प्रदेश में अपना एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी आपने। और जब नंदा जी बहरा जी का कार्यक्रम होता था, उसके साक्षी हैं हमारे पूर्व के, जो अपने ज़माने का एक ऐसा दौर देखा है जिन साथियों ने, विजय रॉय साहब ने, संतोष जोशी जी ने, देवेंद्र कौर मधु जी ने, ऐसा कहते हैं कि जब नंदा जी बहरा जी यहाँ पर कार्यक्रम करते थे तो लोग उनके दर्शन करने के लिए आया करते थे। और किसी ज़माने में श्रोताओं के बीच में इन हमारे उद्घोषकों की जो भूमिका होती थी वो किसी हीरो हीरोइन से कम नहीं होती थी। इनके दर्शन करने के लिए आते थे, इनके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए आते थे। जब ये कहीं भी पहुंच जाते थे तो भीड़ लग जाती थी इनको देखने के लिए, इनको सुनने के लिए। तो विजय राय साहब, जो हमारे आकाशवाणी के इंदौर के उद्घोषक भी रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि इंटरनेशनल कमेंटेटर रहे हैं, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट के मैच हुए हैं उसमें आपने कमेंट्री किया है, आज इस अवसर पर हमारे श्रोताओं से मुखातिब होते हैं। आपका मन क्या कह रहा है, जो 71 साल का आकाशवाणी इंदौर का ये जो सफर है और जो आपने उस दौर में जो देखा था उसको मिलाकर अगर आज आपके मन के अंदर जो चल रहा है वो क्या चल रहा है?
2: नमस्कार संजीव,
3: और सभी श्रोताओं को नमस्कार। आकाशवाणी इंदौर से मैं विजय रॉय आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको क्रिकेट के मैदान पर नहीं ले जा रहा हूं, बल्कि आज मैं आपको आकाशवाणी के पिच पर ले जा रहा हूं, और वहां पर हम देखेंगे कि किन किन खिलाड़ियों ने इस मैदान पर अपने झंडे गाड़े हैं और अपना एक उत्सव मनाया है अपनी भाषा से, अपने संगीत से।
4: अभी जैसे संजीव कह रहे थे कि नंदा जी, भैरा जी और कान्हा जी, क्या बात है उनकी, बिना कोई तैयारी, कोई भी उनको विषय दे दीजिए, एकदम से ऐसे तैयार होते थे। और मजा तब आता था संजीव जब अनाउंसर अपने बूथ में बैठा होता और वो तीनों कलाकार, हमारे महान कलाकार यहां पर बैठे होते, और जब वो शुरू होते तो जो अनाउंसर होता था उसको लेकर कुछ न कुछ कहानियां गढ़ने लग जाते थे।
1: अच्छा।
4: हाँ, ऐसा लगता था जैसा अगर मैं बैठा हूं, अरे वो देखो विजय आयो अपने होटे, और वो कह रही हो मैंने कि मैं तो ओ कर रही हूं, और फिर वो एकदम से उस विषय पर आ जाते जो उनका मूल विषय होता था। क्या बात थी उन तीनों की, नंदा जी, कान्हा जी और भैरा जी, वाह वाह वाह, हम धन्य है कि हमने उनको देखा, हमने उनके साथ कार्य किया।
1: जैसा आपने कहा कि आकाशवाणी की पिच पर हैं इस वक्त 71 दिवस के, तो आज कौन सी गुगली फेंकने जा रहे हैं आप?
4: गुगली नहीं फेंकूंगा ना फास्ट बॉलिंग करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आकाशवाणी जो है वो जब रेडियो का ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ 8 जून 1936 को, तब वो ऑल इंडिया रेडियो के रूप में हुआ था। लेकिन फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक संदेश भेजा था जब कलकत्ता का रेडियो स्टेशन शुरू हो रहा था, उन्होंने कहा था कि इसे नया नाम दिया जाना चाहिए, आकाशवाणी। हालांकि उस समय आकाशवाणी नहीं कहा गया, उस समय ऑल इंडिया रेडियो ही था। लेकिन 1956 में फिर जब आकाशवाणी नाम दिया गया, और तब से ये आकाशवाणी जिसमें हमने सबने गौरव से कार्य किया है, और हम धन्य हैं कि हम आकाशवाणी में आए और हमने यहाँ पर अपना जो कुछ ज्ञान था वो सिर्फ आकाशवाणी को नहीं, हमारे सारे श्रोताओं से दिया, और हम ये धन्य हो गए कि आज भी हम जाने जाते हैं अपने संसार में तो आकाशवाणी के नाम से, और आकाशवाणी जो है वो ही हमारे लिए सब कुछ है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राय साहब, और राय साहब आपका स्वागत है इन ढोल की थाप के साथ, राय साहब के लिए जोरदार। देखिए ये जो ढोल की थाप है, ये जो उत्साह है, ये उमंग है, 90 वर्ष का है और इस 90 वर्ष के साथ साथ आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस का भी है। और अब हम परिचय करवाने जा रहे हैं, वैसे उन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं है, जिन्होंने आपके दिलों पर वर्षों तक राज किया। और जब आप गजलों का प्रोग्राम सुनते थे तो हमेशा एक ही नाम आपके जहन में आता था, वो था देवेंद्र कौर मधु जी का। मधु जी स्वागत है आपका, इस पूरे सफर को आप कैसे लेते हैं, कैसे देखते हैं?
2: बहुत बहुत शानदार सफर था हमारा और यहाँ से जुड़ी हुई यादें भी बहुत बहुत अच्छी हैं। ऐसे लगता है जैसे कुछ पर्दे पर परछाइयाँ चल रही हैं और हमें दिखाई दे रही हैं। अभी विजय ने कहा कि नंदा जी, भैरव जी, कान्हा जी का जिक्र किया। नंदा जी, भैरव जी और कान्हा जी के जिक्र के बगैर आकाशवाणी इंदौर का जिक्र ही नहीं हो सकता। मुझे भी याद आ गया कि मैं एक बार स्टूडियो में सामने बैठी थी कंसोल पर और नंदा जी, भैरव जी, कान्हा जी प्रोग्राम कर रहे थे। अचानक मुझे कुछ सर में मैंने खुजली की ऐसे खुजली की तो सामने से भैरव जी कहते हैं, वो अपनी नानी छे ने, मधु मधु, उसके सर में इतनी जुआ उन्होंने वो मेरी इतनी, मैं मेरे सामने मैं गुस्सा हो रही, उनको नहीं इशारा कर रही, पर उन्होंने जो मेरे सर में जुआओं की जिक्र किया और बोलते कि मैं परेशान, मैंने उसको समझाया, नाना मतलब गंदगी पे बात चालू कर दी उन्होंने फिर कि दवाई लगाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मतलब इस तरह से वो सामने वाले को पकड़ के बात चालू कर देते थे। और बहुत ही शानदार दिन थे, बहुत अच्छा अनुभव है आकाशवाणी का।
1: हमारे तमाम श्रोताओं के लिए एक शेर आपकी तरफ से हो जाए।
2: शेर तो बहुत हैं, सुख दुख से बेन्याज मैं जी ना पाऊंगा, सुख मेरी तमन्ना है और दुख मेरा मुकद्दर है।
5: क्या बात है, क्या बात है।
1: ढोल की ताप से मधु जी का स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मधु जी आपका आकाशवाणी के ड्रामा स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: और अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे उस साथी की जिसने अपनी आवाज के जादू से पूरे हिंदुस्तान को जो है अपनी आवाज के उसमें मोह में पा सका था, और वो हैं हमारे संतोष भाई, संतोष जोशी जी। ना केवल वो एक बहुत अच्छे उद्घोषक थे, अपनी आवाज के माध्यम से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्रीज में भी कई बड़े रोल किए हैं और बहुत से कलाकारों की आवाज की डबिंग भी की है। ऐसे हमारे आवाज के जादूगर संतोष जोशी जी का स्वागत है। संतोष भाई, इस सफर को आप कैसा लेते हैं?
6: देखिए, सफर तो ऐसा रहा है कि इसमें इतनी सारी बातें हैं कि अब श्रोता हमारे जो हैं रेडियो सुनते हैं, वो रेडियो पर कोई नाटक सुनते हैं तो सुन रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या हो जाता है वो उन्हें पता नहीं चलता। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार किस्सा बताता हूँ। एक लाइव नाटक चल रहा था
1: जी।
6: और मैं और मेरे अगेंस्ट एक आर्टिस्ट थे, हमारे डायलॉग चल रहे थे, हम पेज पलट रहे थे स्क्रिप्ट के, उन्होंने एक साथ दो पेज पलट दिए और तीसरा पेज नीचे गिर गया। अब वो घबरा गए कि लाइव चल रहा है नाटक, अब क्या करें। उस दो मिनट के जो गैप था जिसमें उन्होंने नीचे के कागज उठा के व्यवस्थित रखे फिर उस डायलॉग पर आए, तब तक मुझे मन से डायलॉग बोलने पड़े क्योंकि उस तक आने तक देर लगी। तो इस तरह की बातें हो जाती हैं पर्दे के पीछे जो श्रोताओं को पता नहीं चलती और हमें करना पड़ता है, हम कर गुजरते हैं, इस तरह की बातें होती हैं
1: जी। आपका फिल्मों का भी काफी सफर रहा है और हाँ। बहुत सारे कलाकारों के जो नामी गिरामी कलाकार हैं उनकी आवाज में आपने फिल्मों की डबिंग भी की है
6: हाँ।
1: आज इस ऐतिहासिक अवसर पर अगर हम उन्हीं कलाकारों को याद करें और आप अपनी तरफ से उन्हीं कलाकारों की आवाज में बधाई हमारे श्रोताओं को दें तो आनंद आ जाएगा।
6: बिल्कुल बिल्कुल। उन दिनों में विनोद खन्ना के साथ इम्तिहान फिल्म की शूटिंग कर रहा था
1: जी।
6: और साथ ही साथ एक फिल्म थी जिंदा दिल, उसकी डबिंग चल रही थी। उसके पहले वहां के डायरेक्टर मुझे मिले और बोले कि हमारे प्राण साहब जो इस फिल्म में काम कर रहे हैं लेकिन प्राण साहब अभी आ नहीं पाएंगे डबिंग में, उनकी शूटिंग हो चुकी थी पर फ्रैक्चर के कारण वो घर पर थे, तो उनका कुछ काम है, स्टूडियो का खर्चा हो रहा है, कुछ करो। तो मैंने प्राण साहब की डबिंग जो है वो कर दी और वो इस तरह से थी। अब देखिए, डबिंग तो थी, वो डायलॉग थे, लेकिन मैं श्रोताओं से अगर मुखातिब हैं हम लोग आज, तो प्राण साहब अगर आज हमारे साथ बैठे होते तो श्रोताओं को किस तरह से बधाई देते वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। देखो बरहुरदार, वक्त गुजर जाता है, लम्हे गुजर जाते हैं, लेकिन रह जाती है सिर्फ यादें, और यही यादें मेरे बच्चे इंसान को इंसान से जोड़ती हैं, और मैं तो कहूंगा कि श्रोताओं को हमसे जोड़ती हैं।
1: क्या बात है।
7: बहुत खूब संतोष भाई, बहुत खूब। और संतोष भाई के लिए भी ढोल की तार से हम आकाशवाणी के इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं।
1: हमारे बहुत सारे श्रोता भी इस प्रोग्राम से इस वक्त जुड़ना चाह रहे होंगे, और आइए

0: अब हम अपने फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कौन श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: सिसोदिया जी स्वागत है आपका, और हमारे साथ हमारे पूर्व के सभी साथी, हमारे कार्यक्रम प्रमुख, केंद्र अभियंता प्रमुख सभी उपस्थित हैं। बताएं आकाशवाणी का ये जो सफर, इतने सालों से जो आप आकाशवाणी को सुन रहे हैं, कैसा लगता है आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर के साथ जुड़ते हुए आपको?
1: जी आकाशवाणी इंदौर और विविध भारती इंदौर को तो हमने अपना परिवार समझ रखा है। और आपको बताऊं जी, जैसे कि हम 2005 से आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं जी, उसमें से हमें काफी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। और आज स्थापना दिवस चल रहा है 71वां, तो हमें काफी खुशी हो रही है। जितना उत्साह आप में हम सुन रहे हैं कार्यक्रम में, आप सभी में है, उससे ज्यादा उत्साह हमें भी लग रहा है।
0: पर आपका उत्साह थोड़ा ठंडा नहीं लग रहा है? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ठंडा है, थोड़ा सा जोश में आ जाए तो मजा है।
1: ठंडा नहीं है सर, बिल्कुल जोश में है, सुन रहे कार्यक्रम हम, बड़ा अच्छा लग रहा है।
0: आपके साथ कौन कौन सुन रहे हैं?
1: अभी तो मैं घर पे अकेला हूँ, बस नहीं सुन रहा हूँ, घर पे कोई भी नहीं है।
0: जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े, और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
1: जी,
0: हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: अनंत चिखले तिलोक नगर देवास से।
0: चिखले साहब आपका स्वागत है, और राय साहब मैं चाहूंगा चिखले साहब की बातों का जवाब आप दें।
3: चिखले साहब नमस्कार।
2: बढ़िया सर, कहता आकाशवाणी को 71 वर्ष पूर्ण करने पर बहुत बहुत बधाई।
3: धन्यवाद धन्यवाद,
2: सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: चलिए आपकी शुभकामनाएं हमने कबूल की, आप आगे फरमाइए। आप,
2: मैं बोल रहा हूँ सर कि अपने कार्यक्रम बहुत ही अच्छे होते हैं, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा, मनोरंजन, नाट्य और ये सभी कार्यक्रम बढ़िया से एक से बढ़कर एक गाने होते हैं, और फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम भी बहुत पसंद आ रहे हैं।
0: राय साहब इतने पसंद होते हैं कि हम श्रोताओं से बोलते हैं कि 3 महीने के अंतराल से फोन करें तो नाम बदल बदल के फोन करते हैं और आवाज बदल बदल के फोन करते हैं, लेकिन आकाशवाणी से दूर नहीं
3: जा रहा। जी मेरा कहना है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम बहुत अच्छे कार्यक्रम दें, लेकिन मैं अपने श्रोता से पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ हम देते हैं उसमें से वो कितना ग्रहण करते हैं, क्या वो कुछ अपने जीवन में उसको उतारते हैं या नहीं, या सिर्फ सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं? बताइए चिखले जी।
0: हेलो, शायद चिखले साहब का हमसे जो है संपर्क वो है वो टूट गया है, और हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी इंदौर के साथ साथ विविध भारती इंदौर पर भी सुन रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी बता दें कि जो मोबाइल एप्लीकेशन है न्यूज ऑन AIR पर भी आप इसको सुन सकते हैं, और आज के इस कार्यक्रम को आप देख भी सकते हैं, और देख सकते हैं आकाशवाणी इंदौर की फेसबुक आईडी पर। आप हमारी फेसबुक आईडी पर इस कार्यक्रम को लाइव देख सकते हैं, और ये कार्यक्रम 12 बजे तक चलेगा, और 12 बजे के बाद जो हमारे अन्य आकाशवाणी के कार्यक्रम हैं वो संचालित होंगे। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन ये समय जो हो रहा है FM हेडलाइंस का हो रहा है, तो 2 मिनट के लिए हम आपसे थोड़ा सा विदा चाहते हैं। 2 मिनट बाद फिर आपसे मिलेंगे, और सुनते हैं FM हेडलाइंस।

0: सभी श्रोताओं का स्वागत है आकाशवाणी के इस विशेष फोन इन प्रोग्राम में, और हमारे साथ तमाम श्रोता इस प्रोग्राम में जुड़ना चाह रहे हैं। और अब हम देखते हैं कि हमारे टेलीफोन लाइन पर कौन श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बार बार हेलो बोलते हैं लेकिन उधर से आवाज नहीं आती है। हेलो
1: संजीव मालवीय जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
1: दुबे के बगीचे से महेश रायकवाड़ सर।
0: दुबे के बगीचे से महेश रायकवाड़ जी। महेश जी स्वागत है आपका, और आपसे बातचीत करेंगी मधु जी। मधु जी, दुबे के बगीचे से महेश रायकवाड़ जी बातचीत करना चाह रहे हैं इस अवसर पर, आप अपने अंदाज में उनसे बातचीत कीजिए।
2: महेश जी नमस्कार, कैसे हैं?
1: नमस्कार, बात सब बढ़िया मैडम।
2: हमारी याद है आपको
0: दुबे जी? अपना अपना अपना रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए। दुबे जी रेडियो सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ जी, अब बोलिए।
2: हाँ जी महेश जी, बहुत सालों बाद आपसे बात हो रही है।
1: जी जी मैडम,
2: कैसे हैं आप?
1: बहुत सब बढ़िया मैडम।
2: आपको हमारी याद है?
1: अरे बहुत याद आ रही है मैडम, अभी आपका कार्यक्रम ही हम सुन रहे हैं बैठ के यहाँ पे दुकान के ऊपर।
2: धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: 71 स्थापना दिवस है वो सुन रहे हैं।
2: हाँ जी, आपको बधाई हमारे स्थापना दिवस की।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: दुबे साहब देख भी सकते हैं फेसबुक पर आप।
2: इस समय पहली बार इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है स्टूडियो से, जिसे आप देख भी सकते हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
3: डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ नंबर मौजूद नहीं।
0: हेलो, लगता है हमारे श्रोता का हमसे संपर्क टूटा है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं या ऐसे बहुत सारे किस्से हम सबसे जुड़े हुए हैं जब। हेलो जी नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं कमलेश चौधरी जोशी, 53 गिरधरना का इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जोशी साहब स्वागत है, और जोशी जी का जवाब भी जोशी जी ही देंगे। जोशी जी
5: जरूर जरूर। हाँ जोशी जी, क्या करते हैं आप?
4: मैं नमस्ते, मैं स्टेट बैंक इंदौर में डिप्टी मैनेजर था, 21/8 को रिटायर हो चुका हूँ।
5: अच्छा अच्छा, तो रिटायर हो गए हैं, तो अब क्या करते हैं आप, क्या कर रहे हैं, कैसे अपना वक्त बिताते हैं?
4: मैं बस आपका आकाशवाणी का कार्यक्रम सुबह से रात तक सुनता हूँ।
5: अरे वाह, तो कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको? कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है आपको?
4: सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है आपका, आज के फनकार और सभी कार्यक्रम है, तो खेती गृहस्थी भी सुनता हूँ, उसकी कॉलर ट्यून बहुत अच्छी लगती है, मनमोहन की कॉलर ट्यून।
5: हाँ वैसे एक बात बताइए कि देखिए आप रेडियो सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपको लगता होगा कि जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ और करूं मैं ताकि वक्त अच्छे से बीत सके, मन कहीं और लग जाए, ऐसा कुछ करते हैं क्या आप?
4: हाँ मैं अभी तो कुछ नहीं, मैं देखिए एक बात बताऊं मैं आपको कि मैं एक्चुअली भोपाल में सिस्टम है, और दिसंबर नवम्बर 80 में तो आकाशवाणी भोपाल से कैजुअल अनाउंसर के वो निकला था, मैंने अप्लाई भी कर दिया था।
5: हाँ।
4: और मुझे बुलाया भी था उन्होंने इंटरव्यू के लिए।
5: फिर क्या हुआ?
4: तो क्या हुआ कि उसके थोड़े वो इंटरव्यू लेके थोड़े दिन पहले मेरा प्रमोशन हो गया, मैं इंदौर चला आया।
5: ठीक है ठीक है, तो परिवार में कौन कौन है आपके?
4: आपका आकाशवाणी का मैं हो सकता है मेरी बहुत।
5: हाँ हाँ ठीक है
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो
6: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
6: मुकेश कासलेकर बोल रहा सर, महाराष्ट्र, तहसील वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से।
0: महाराष्ट्र से फोन आया है मुकेश जी, आपका स्वागत है, बहुत दूर से आपने हमें फोन किया है, हमारा ये विशेष प्रोग्राम है। किस तरह से लेते हैं आकाशवाणी इंदौर के प्रोग्राम को आप, और कितना सुनते हैं?
6: सर बहुत ही अच्छा लगता है प्रोग्राम, और ये जब से मोबाइल ऐप के आया ना से बहुत खुशी हो गई, जो हमें आकाशवाणी के कार्यक्रम मोबाइल ऐप के द्वारा कहीं पर भी सुन सकते हैं।
0: ये जो तकनीकी क्षमता आपको प्राप्त हुई है, गुप्ता साहब हमारे मुकेश जी से आप बातचीत करें।
6: जी, और मैं तो दिव्यांग हूँ तो ज्यादातर आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनता हूँ।
7: बहुत बढ़िया,
6: और उसके कार्यक्रम सोशल मीडिया के द्वारा मैं प्रसारित भी करता हूँ और जानकारी भी देते रहता हूँ।
7: बहुत अच्छी बात मुकेश जी, आप चूंकि स्ट्रीमिंग पे सुनते हैं ऐप पे, तो क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलती होगी, और
6: जी जी, बहुत बढ़िया।
7: हम आशा करते हैं आप इसी तरह से हमारे प्रोग्राम सुनते रहें और हमारा उत्साहवर्धन करते रहें। आप क्या करते क्या हैं, आपका कामकाज क्या है वैसे?
6: वैसे सर मैं मोबाइल शॉपी है, तो मोबाइल के सिम कार्ड रिचार्ज बेचता हूँ।
7: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं ना?
8: बिल्कुल आसपास ही है।
7: बहुत बढ़िया, बहुत
0: तकनीकी का तकनीकी से मिलन हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
9: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
9: नमस्कार सर
0: जी, कौन सा बोल रहे हैं?
9: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी नीमा साहब स्वागत है आपका, और आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर आप अपने अंदर की बात, अपने मन की बात हमसे कह सकते हैं।
9: थैंक यू सर। सर आकाशवाणी इंदौर 71वां स्थापना दिवस
0: जी
9: के अवसर पर बहुत बहुत आप सब लोगों को बधाइयां, शुभकामनाएं
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले कॉलर अब हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो,
10: हाँ जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
10: और मैं किस मंच से मैं शुरुआत करूं? नियाज मोहम्मद मंसूरी कष्टबाग कॉलोनी इंदौर से बोल रहा हूं सर।
0: मंसूरी साहब स्वागत है आपका, कैसा लग रहा है आकाशवाणी के 71वें स्थापना दिवस के इस जश्न के साथ?
10: आपके साथ वरिष्ठ, आप हमारे उप मेहमान हो और आज हम आपको सुन रहे हैं, आप हमें सुन रहे हो
0: जी।
10: बड़ी खुशी हो रही है कि आपने नंदा जी बेहरा जी का बोला और हमने, मैं आपसे कई बार मिला हूँ और मेरा पहला फोन संगीत के रूप में विजय राज जी ने पेश किया था।
0: क्या बात
8: है, धन्यवाद जी, क्या यादें हैं आपके पास, मजा आ गया यार, है ना। अच्छा ये बताइए कि जब पहला फोन रिसीव किया मैंने, आपका क्या अनुभव रहा?
10: अनुभव ये रहा कि उस वक्त में फोन नहीं थे, स्टडी में या मैं प्रेस में जाकर, मेरा एक दोस्त था, मैं प्रेस में नौकरी करता था
0: जी,
10: तो वहां से फोन लगाता था मैं
0: जी,
10: और मुझे पहला फोन मुझे लगा तो मैं उत्सुकता से इतना नाचने लगा, इतना नाच लगा कि क्या खुशी छा गई थी।
8: अरे वाह नाचना रुक गया ना अब तो?
10: अब नाचना क्या, अभी भी नाच रहा हूँ सर।
0: ढोल बजाओ, ढोल बजाओ, नाचना है। आप नाच सकते हैं, आपके टेलीफोन के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको सुनाई दे रही होगी।
8: चलिए आपने जो नाच किया उस समय वो आपको अब तक याद है, हमें बड़ी खुशी हुई और खास करके मुझे हुई कि मैंने आपका फोन रिसीव किया था। एक इतने अच्छे हमारे जो श्रोता हैं उनका पहला फोन मैंने प्राप्त किया, वाह मैं धन्य हो गया। चलिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और राय साहब उस समय ऐसा होता था चूंकि एसटीडी महंगा होता था तो व्यक्ति सोचता था कि अनाउंसर की बात कम सुने, अपनी बात बोल दे फटाफट, इतना तेजी से बोल बोल के वो फोन काट देता था। ऐसा होता था। हमारे एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
11: हाँ नमस्कार साहब।
0: जी नमस्कार,
11: और सब आकाशवाणी इंदौर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 71 वर्ष और 90 वर्ष।
0: हेलो आपका आपका परिचय दें।
11: भूपेंद्र कुमार गुप्ता कोटा राजस्थान से बोल रहा हूँ साहब।
0: कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं गुप्ता साहब?
11: हाँ
0: स्वागत है आपका। आकाशवाणी इंदौर कितना सुनते हैं आप?
11: आकाशवाणी इंदौर भी सुनता हूँ।

0: कोटा भी सुनता हूँ और स्टेशन भी सुन लेता हूँ।
1: अच्छा, और क्या करते हैं आप?
0: मैं तो फैक्ट्री में था पर रिटायरमेंट हो गया, तो सीनियर सिटीजन हूँ।
1: आकाशवाणी इंदौर के प्रोग्राम कौन से अच्छे लगते हैं आपको?
0: हाँ सुनते हैं आकाशवाणी के प्रोग्राम, कहीं
1: जी बहुत
0: दांत
1: जी
0: बीमार हो जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़े, ज्ञान लेना हो तो किसी सत्संग में जाओ, बाकी आकाशवाणी आ जाओ तो सब कुछ यहीं मिल जाता है।
1: सारा सत्संग यहीं पे मिल जाता है।
2: बिल्कुल सही।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
3: हेलो, नमस्ते,
1: जी, नमस्कार।
3: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
1: शेख हैदर खान साहब, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, आपका स्वागत है। आज आकाशवाणी के 71वें स्थापना दिवस और 90 वर्ष के इस सफर पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो भी मतलब उद्घोषक है आज मौजूद है,
1: जी
3: उन्होंने पहले भी बड़ी मेहनत करके प्रोग्राम पेश किए हैं,
1: जी
3: और आज जो मतलब 71 साल हो गए और मेरी उम्र 57 है। हाँ,
1: जी
3: तो जब इसे मतलब रेडियो में सुनता आ रहा हूँ 1980 से, तो बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: जी
3: हाँ, वो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ रेडियो पे ही प्रोग्राम सुनता हूँ सर, और सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करता हूँ कि रेडियो पे ही मतलब प्रोग्राम सुने वो।
1: जी
3: हाँ, बहुत से श्रोता कहते हैं रेडियो नहीं मिलता, लेकिन बाजारों में रेडियो मिल सकते हैं सर अभी भी।
1: जी
3: हाँ
1: और अगर रेडियो नहीं है तो न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर भी आप सुन सकते हैं, और आज का ये
3: हाँ वो
1: प्रोग्राम तो
3: तो
1: आप फेसबुक
3: माध्यम है
1: लाइव पर
3: सही
1: भी देख सकते
3: मैडम,
1: हैं। जी,
3: वो तो सही है सर, वो तो है सही।
1: जी
3: हाँ, और सभी मतलब आज जो उद्घोषक पुराने भाई उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद जी,
1: आज का
4: धन्यवाद।
1: दिन तो आप सभी के नाम पर ही है, आपको हमारे तमाम श्रोता जो है बहुत याद कर रहे हैं। हमारे तीनों साथी जो अपने जमाने के बहुत जाने माने उद्घोषक रहे हैं, आज श्रोताओं का दिन बन गया कि एक साथ हमारे वो तीनों साथी से वो बातचीत कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
5: चांद अधूरा है चांदनी के बिना, आसमान अधूरा सितारों के बिना, और हम अधूरे हैं आकाशवाणी इंदौर के बिना।
4: वाह वाह, क्या बात है, और हम सब अधूरे हैं हमारे श्रोताओं के बिना।
1: मुझे लगता है शायरी का जवाब तो मधु जी को ही देना चाहिए।
6: मैं भी एक शेर सुना देती हूँ।
5: मधु जी के लिए भी एक शायरी है।
1: अच्छा बोलिए।
5: तारीफ कैसे करें मधु जी आपकी, हर लफ्ज़ में खुशबू आ रही गुलाब की।
1: ओह क्या बात,
6: चलिए आप मुझसे एक शेर सुन लीजिए। गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
4: क्या
1: क्या बात है,
4: बात
1: है। अब अपना परिचय भी दे दे, वैसे हम तो समझ ही गए हैं।
5: जी हसीना भी मंसूरी पालदाना का इंदौर से बोल रही सर।
1: मंसूरी जी आपका स्वागत है। राजेश भाई हमारे ये बहुत पुराने श्रोता हैं और लगभग हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और हमारे कार्यक्रम प्रमुख भी आज इस प्रोग्राम में हैं। हसीना जी, अपनी जो अंदर की बातें हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपका इतने साल का अनुभव आकाशवाणी के साथ का, वो हमसे शेयर करें।
5: जी सर, जब आप पहले मेरे हॉटलाइन में आते थे मालवीय जी सर, ये संजू मालवीय जी, आप तो गुरुवार को आते थे और थोड़ी सख्ती वापरते थे मतलब श्रोताओं को कि डबल डबल पर ना लगाए, ऐसे ही आज भी कर दे तो थोड़ा सही रहेगा।
1: अरे
5: अगर ये
1: हसीना
5: देखिए
1: जी,
5: ठीक है कि मानते ही
1: आज
5: नहीं।
1: आज मैं भी अपने मन की एक राज की बात बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर आया था 2000 में, और ये जो फोन इन प्रोग्राम करते थे ना, ये विजय राज साहब करते थे, बहुत जलन होती थी साहब, बहुत जलन होती थी। हम जूनियर थे, हमको करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन राय साहब जब छुट्टी पर होते थे तब जैसे तैसे करके मैंने अपना नंबर लगाया और तब मुझे जाकर कार्यक्रम करने को मिला।
5: मुझे भी एमएस हॉटलाइन में आते थे जब एफएम पे आता था, तो वो क्या है कि कोई ना कोई विषय जरूर लेके आते थे मधु जी।
1: हाँ, हर व्यक्ति का, हर उद्घोषक का अपना करने का तरीका अलग होता है और उनका अंदाज अलग होता है, और हमारे तमाम श्रोता, हमारे जो है जितने भी उद्घोषक साथी हैं उनको पसंद करते हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
7: हेलो
1: जी, नमस्कार
7: जी, मैं इंदौर से बोल रही हूँ, रंजना।
1: रंजना जी स्वागत है आपका। हेलो
7: जी, आपको 90 वर्ष पूर्ण होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: 90 वर्ष का आकाशवाणी का सफर है और आकाशवाणी इंदौर का जो है 71वां स्थापना दिवस है। राजेश जी हमारे श्रोता से आप मुखातिब हो,
4: क्या कहना चाहेंगे इस सफर में?

0: का काफी क्रेज हुआ करता था।
1: अरे दुकान पे तो ऐसे भीड़ लगी रहती थी। हाँ, और रात को 11 बजे तक तो है ना, ऐसा बस रेडियो ही छाया गीत दर बहुत सारे कार्यक्रम, बिल्कुल
0: ऐसा तो नहीं होता था कि
1: माहौल ही
0: रेडियो
1: अलग
0: सुनने के
1: होता
0: चक्कर
1: था।
0: में पान में कभी चूना ज्यादा लग जाता हो या कुल्फी में थोड़ी मिठास ज्यादा बढ़ जाती हो, ऐसा तो नहीं?
1: ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन है ना, लोगों के दिलों में इतनी मिठास है आपके लिए कि बाकी
0: अच्छा,
1: तो सब
0: रंजना जी, कुल्फी भी ज्यादा बिकती होगी क्योंकि रेडियो की दीवानगी तो हर व्यक्ति की थी ना, तो रेडियो बजता रहता होगा तो
1: उस
0: ग्राहक भी
1: टाइम
0: ज्यादा
1: ऐसा
0: आते होंगे।
1: था कि है ना, अगर पड़ोस में कोई गाना बजता था और मेरे पापा कुल्फी का ठेला लेके चले जाते थे, तो वहां पर लोग बोलते थे, भैया तू गाना बंद कर, ये कुल्फी का ठेले पे गाना बजने दे। मेरे पापा
0: अरे
1: इतनी
0: अच्छी
1: सारी चीजें
0: यादें इनके
1: बताते
0: साथ।
1: थे मुझे।
0: अच्छा, उस जमाने
1: मेरा
0: में
1: कॉल
0: जी,
1: आपके मोबाइल आपके पास फर्स्ट टाइम लगा और इसने शुभ दिन लगाया, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइट हूँ।
0: हम भी बहुत खुश हैं और आपके जो संस्मरण हैं वो भी बहुत मजेदार हैं। और उस जमाने में रेडियो के भी लाइसेंस हुआ करते थे,
2: बिल्कुल
0: है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपने
2: होते थे।
0: रेडियो के लिए टिकट लगाओ, उनका एक डायरी होती थी, लाइसेंस होता था तब जाके। और मुझे लगता है कि जो दहेज में किसी को रेडियो मिल जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
3: हाँ नमस्ते सर,
0: जी, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
3: आकाशवाणी परिवार को 71वें जन
0: स्थापना दिवस,
3: स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं से बधाई।
0: आपका परिचय दें।
3: हाँ सर, मैं बेटमा जिला इंदौर से अशोक प्रजापति बोल रहा हूँ सर। मैं
0: प्रजापति जी, स्वागत है आपका। और क्या
3: हाँ,
0: करते हैं आप?
3: हम सर ये हमारा काम यही है, मटके अटके बेचना, मटके बनवाना, दीपक दीपावली के दिए बनाना, माता जी की मूर्तियाँ, गणेश जी की मूर्तियाँ बनाते हैं।
0: संतोष जी,
4: अभी तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होगा क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है।
3: हाँ जी, मटके का अभी अच्छा चल रहा है बिजनेस, मटके अच्छे बिक रहे हैं अभी। और आजकल तो सब डॉक्टर साहब भी यही बताते हैं कि फ्रिज का पानी मत पीजिए, मटके का पानी पीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे।
4: आपके यहाँ फ्रिज है?
3: फ्रिज तो मेरे यहाँ है सर, पर मैं खुद
4: हाँ।
3: आज तक मैंने अभी तक जब 10 साल हो गए फ्रिज तो हमारे यहाँ पर हम पानी नहीं पीते हैं फ्रिज का, सिर्फ
4: अच्छा अच्छा
3: सब्जी
4: अच्छा तो
3: वगैरह
4: आपको ऐसा नहीं
3: उगाया
4: लगता कि
3: जैसे।
4: वो
3: नहीं,
4: ऐसे ही पड़ा हुआ, उसका कुछ उपयोग नहीं हो रहा है?
3: उसमें उसमें सब्जी है, दूध है,
4: हाँ
3: बस
4: हाँ
3: खाने का कुछ फल फूड वगैरह रख देते हैं, मगर पानी तो हम मटके का ही पीते हैं।
4: अच्छा, आप एक कोई विशेषता बताइए। लोग कहते हैं कि मटका जो कभी कोई खरीदता है तो एक सीजन के बाद उस मटके को बदल देना चाहिए, उसको फेंक के दूसरा लेना चाहिए, क्या ये सच है?
3: नहीं ऐसा कुछ नहीं सर, मटके कभी भी बने हुए हैं जो ठंड के टाइम के जो रहते हैं, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर तब जो बनते हैं मट्टी से,
4: हाँ
3: उसमें पानी ठंडा रहता है सर। अब जो गर्मी में अगर मटके बनाते हैं कोई, तो मट्टी इसमें इतना ठंडापन नहीं रहेगा,
0: और मटके से
3: तो
0: पानी जितना
3: मटके
0: टपकता है उतना ही
4: उतना
0: मटके
4: ही
0: का पानी
4: ठंडा रहता
3: पानी
4: है।
3: पानी उसमें क्या, जितनी उसकी जो पानी छिपकेगा छिपकेगा तो पानी ठंडा रहेगा उसमें।
4: आपने बहुत काम की बताई
3: और
4: बात
3: मैं
4: ये।
3: एक हाँ और मैं सर एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं करीबन 30 वर्ष से आकाशवाणी समाचार सुन रहा हूँ,
4: वाह,
3: समाचार
4: बहुत
3: और
4: अच्छी
3: सभी
4: बात।
3: कार्यक्रम। हाँ, रामचरित मानस बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ,
0: जी, बहुत
3: और
0: बहुत
3: बाकी
0: धन्यवाद
3: बात
0: आपको। फोन लग
3: सर, एक और बात बोलना चल रहा है, एक और बात बोलना
0: जी
3: चाहता
0: जी
3: हूँ
0: जी
3: सर। मैं
0: बताएं।
3: जब 15-16 साल का था, जब मैं गर्मियों की छुट्टी मेरे मामा जी के यहाँ गया था, तो मैं वहां से मैं रेडियो कम तो मैंने 15 दिन मामा जी ने सुना, और मैं मामा जी को बोला भी नहीं, और मैं चुपचाप वो रेडियो लेके उठा के मेरे घर ले आया था। ये मेरे मामा जी के यहाँ से मैंने एक चोरी की थी रेडियो की। और एक विशेषता और बताऊं सर, मैं अभी इंदौर रानीपुरा से अभी 5 दिन पहले ही नया रेडियो लेके आया हूँ
0: क्या बात है, क्या बात है।
3: सर।
0: मामा जी का
3: और
0: वो
3: सर
0: रेडियो अभी है कि नहीं?
3: मामा जी का रेडियो तो सर वो काफी दिन हो गए सर, 30 साल अब तो वो सब, उसके बाद तो मैं कम से कम 5 रेडियो ले आया हूँ।
0: चलता है भांजे और मामे
4: हाँ
0: में, मामा में सब चलता है, इतना कोई उसके मानने की
3: मामा
0: जरूरत
3: ने
0: नहीं
3: बोली सर, बात
0: है।
3: तो मामा जी को बताया मैंने
0: जी,
3: कि मामा जी मैं आपका रेडियो ले आया हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
5: हाँ सर, नमस्कार सर
0: जी, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
5: मैं आपको गोयल बोल रहा हूँ इंदौर से सर।
0: गोयल साहब, स्वागत है आपका। आकाशवाणी के स्थापना दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले रेडियो सेट का वॉल्यूम बंद कर दीजिए
5: बहुत
0: आप।
5: साल में कॉल लगा मेरा सर आपसे मिलने की बात करने के लिए।
0: रेडियो सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए आपका।
5: हाँ सर,
0: हाँ जी, अब बोलिए।
5: मैं सर सर, बहुत साल से लगा रहा फोन आपको।

0: लगा मेरा सर
1: बहुत बहुत बधाई आपको आज 71वें स्थापना दिवस की है, और आकाशवाणी के प्रोग्राम और आकाशवाणी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: सर मेरे को सब पूरे आप भयो आरती में जितने भी कार्यक्रम सब अच्छा लगता सर मेरे को
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले श्रोता अब हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन सा बोल रहे हैं?
2: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
2: अनिल बामनिया लावे भेरू से बोल रहा हूँ, आपका नेम श्रोता।
1: लावरिया भेरू से अनिल बामनिया जी बोल रहे हैं। बामनिया जी आपका स्वागत है, और आकाशवाणी स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर आपका फोन लगा है। कहिए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी इस आकाशवाणी के लिए?
2: आकाशवाणी के समस्त साथियों को पहली बार तो मैं 71 वर्ष के अवसर पे बधाई देना चाहता हूँ सर। और मैं बात करना चाहूंगा अपने देवेंद्र मधु कौर जी से।
1: मधु जी आपकी बात सुन रही हैं।
3: बामनिया जी मैं भी आपको याद कर रही हूँ, मेरे प्रोग्राम में भी आपके बहुत फोन आया करते थे।
2: हाँ, कैसे हैं आप? कहना चाह रहा था मैडम, यही कहना चाह रहा था कि आप मन भावन कार्यक्रम पेश करते थे, उस समय मेरा पत्र शामिल करते थे, तो वो और मुझे याद है। और आप प्रकाश नगर में रहते थे?
3: अच्छा अच्छा आपको मेरा एड्रेस भी पता है?
2: हाँ बिल्कुल, मुझे मालूम है ना, अभी वो उस गली का भी नंबर मुझे मालूम है कि उस गली में रहते थे।
3: लेकिन अब हम मेरा एड्रेस बदल गया है।
2: हाँ हाँ नहीं, चेंज हो गया, वो भी मुझे मालूम है।
3: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि ये कार्यक्रम अच्छा हो रहा है आज कम से कम।
3: हाँ जी,
2: अच्छा लगा मैडम
1: जी। बहुत बहुत
2: कहूंगा, मैं ब्लाइंड पर्सन हूँ
1: जी।
3: हाँ जी,
2: ब्लाइंड पर्सन, मैं ब्लाइंड हूँ।
3: अच्छा।
2: और मैं स्कूल में टीचर हूँ वर्तमान में।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
2: हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ अभी।
3: मतलब मन की आंखों से आप हमें देखते हैं।
2: बिल्कुल, क्यों नहीं मैडम। और आपने तो मुझे जब मेरा पांचवी क्लास में परसेंट अच्छा बना था तो वहाँ लेके गए थे आप, बच्चों के कार्यक्रम कोपर कार्यक्रम आता था।
3: हाँ जी,
2: मुझे लेके गए थे आप।
3: अरे बहुत याद है आपको।
4: बहुत अच्छी याददाश्त है,
1: बहुत अच्छी याद।
3: अच्छा, शायद फिर आप प्रकाश नगर में हेलेन केलर करके एक स्कूल था बच्चों का।
2: वही से जानता हूँ आपको।
3: तो अच्छा, आप उस स्कूल में थे?
2: हाँ उस स्कूल में था मैं, 82% बना था मेरा पांचवी में।
3: अरे वाह, बधाई। आज भी बधाई दे रही हूँ मैं आपको।
2: क्यों नहीं, ये तो याद ताजा करने के लिए फोन आपसे बात करना चाहता
3: हूँ। तो अभी क्या करते हैं आप?
2: अभी मैं स्कूल में हाई सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ मैडम।
3: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: हिंदी विषय पढ़ाता हूँ।
3: हाँ जी
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और अब हमारे जी हमारे अगले श्रोता जुड़ रहे हैं, और इसके पहले कि हम अपने और श्रोताओं को इसमें शामिल करें, आज का ये जो प्रोग्राम है, जिस तरह से इसको डिजाइन किया है, हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश जी भी हमारे साथ हैं, केंद्र अभियंता जो हैं गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, एक मशक्कत करके हमने सोचा था कि इसको लाइव स्ट्रीमिंग भी दें, ताकि हमारे तमाम श्रोताओं को ये दिख सके कि आकाशवाणी में काम किस प्रकार से होता है। कोई ऐसा संस्मरण मधु जी, राय साहब, संतोष जोशी जी, के जो आपके समय में हुआ और आज भी वो आपको बहुत गुदगुदाता हो? वैसे आप ठिठोली प्रोग्राम करते थे, हंसी मजाक तो संतोष जी
3: संस्मरण तो संजीव जी बहुत सारे हैं
1: जी।
3: उसमें एक संस्मरण तो यही है, अभय जी मेरे पास बैठे हैं अभी, अभी आपके स्टेशन हेड हैं
1: जी।
3: लेकिन ये हमारे साथ कंट्रोल रूम में हुआ करते थे
1: जी,
3: और कंट्रोल रूम के इंजीनियर से मैं बहुत झगड़ा करा करती थी।
1: वो याद, सिर्फ कंट्रोल रूम के इंजीनियर से नहीं, सभी से
3: सभी से होता था। लेकिन कंट्रोल रूम जब हमारे से कुछ गलती हो जाया करती थी
1: जी,
3: तब कंट्रोल रूम के इंजीनियर आते थे और वो हमारी गलती बताते थे, और मैं अपनी गलती कभी मानती नहीं थी, तो वो सारी गलती हम इंजीनियर्स पे डालते थे। तो अभी जी को भी कुछ ना कुछ तो याद होगा, याद है?
5: याद है, याद है।
3: कुछ बताइए, आप ही बताइए।
5: मधु मैडम ये बिल्कुल सही है, मधु मैडम कई बार ये होता था कि अपनी गलतियां आसानी से नहीं मानती थी, और आखिरी में यही होता था कि हम लोग भी हाथ झाड़ के अपना चले आते थे,
6: दूसरों पे डाल देते।
3: कुछ इंजीनियर्स ऐसे थे जो कहते थे कि हम उनके साथ ड्यूटी नहीं करेंगे, नहीं तो हम फंस जाएंगे।
7: और जब श्रोताओं से गलती होती थी तो ये बोल दिया जाता था आपका रेडियो सेट खराब है।
6: अभय जी जब हम आए थे उस समय, जब ये सारा ब्रॉडकास्ट जो है ये टेलीफोन लाइन से जाता था ट्रांसमीटर पर राव में, और उस समय खूब बड़े मजे होते थे। बरसात आई, टेलीफोन लाइन डैमेज कट गई, सब हो गई। अब अनाउंसर को बोला, चलो भैया जल्दी से जाना है आपको आकाशवाणी राऊ में, और फिर यहाँ से सफर शुरू होता था, वहाँ राऊ में जाते, वहाँ इमरजेंसी स्टूडियो होता था, और वहां पर जो कुछ उपलब्ध होता था वो बजाना पड़ता था।
1: और ये होता था कि चूंकि आधे घंटे का बीच में न्यूज का 15 मिनट का ब्रेक होता था,

0: जी नमस्कार, मैं विवेक व्यास बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो माफी चाहूंगा कि मैंने 9 मई को कॉल किया था, पर मैं आज खुद को नहीं रोक पाया।
1: नहीं, आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आज ये फॉरेन फरमाइशी कार्यक्रम नहीं है, कोई भी श्रोता फोन कर सकता है।
2: अच्छा एक चीज बताइए, आपको बहुत जल्दी है क्या?
0: नहीं जल्दी नहीं,
2: बहुत तेज भाग रहे हैं।
0: नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको सिर्फ
2: नहीं, नहीं आप आराम से बात कीजिए हम लोगों से।
0: जी जी जी,
2: है ना।
0: देखिए जी, देखिए हर जो उद्घोषक है उनसे मेरी एक याद जुड़ी है। शुरुआत करते हैं संतोष जी से।
2: संतोष जी से जी,
3: बताइए बताइए।
0: सबसे पहले तो नमस्कार, और
3: नमस्कार।
0: आज का ये जो प्रोग्राम मैं सुन रहा हूँ, ये सुनकर मैं 80 के दशक में पहुंच गया हूँ। उन दिनों ये प्रोग्राम आया करता था ग्राम लक्ष्मी, है ना, जो सोमवार मंगलवार और गुरुवार को आता था।
3: बिल्कुल सही।
0: इसमें एक श्रृंखला आती थी, नई बस्ती पुराना लोक।
3: हाँ, कृष्णकांत दुबे का लिखा हुआ।
0: हाँ जी, और मुझे जहाँ तक याद है सर, मेरी शायद एक मुरारी का कैरेक्टर था, शायद आप ही ने किया था मुझे जहाँ तक
3: याद। हाँ बहुत अच्छी याद है आपको, बहुत अच्छी याद है। हाँ हाँ
0: जी, तो आप सबको एजुकेटेड करते थे उसमें, जो भी समस्या होती थी, है ना, तो मैं वो सुना करता था। अच्छा एक बात मैं आपको और बताऊं संतोष जी, क्या था कि मैं और बुधवार और शुक्रवार को आता था, महिलाओं के लिए जो पेश करती थी रंजीत सतीश जी, है ना। तो जब मैं ये प्रोग्राम सुनता था तो मुझे टेंशन, मेरे घर वाले खासतौर से मेरे बड़े भाई बहन बहुत दिया करते थे, क्योंकि वो था महिलाओं का प्रोग्राम, है ना। सर मुझसे मेरी बहने कहती थी, बोले भाई तेरा प्रोग्राम आ गया सुन ले। क्या होता था कि हमारे यहाँ वो बड़ा वाला रेडियो था,
3: वॉल वाला,
0: हाँ हाँ, है ना, तो बड़ी दिक्कत होती थी, है ना, क्योंकि उनको कोई दूसरा प्रोग्राम सुनना रहता था, उस प्रोग्राम से लगाव था। तो हमने घर में झगड़ा करके एक ट्रांजिस्टर खरीदवाया, जो बहुत पहले आता था, मर्फी मुन्ना, है ना, जी जी जी। तो हम उसको जब ये प्रोग्राम शुरू होता था तो लेकर इधर उधर हो जाते थे, फिर भी लोग बाग हमें चिल्लाते थे कि भाई चलिए अपना क्यों लेके। अब आपके साथ तो यही याद थी, और ठिठोली प्रोग्राम भी आपका बहुत अच्छा था।
3: ठिठोली
0: जी, मधु जी को नमस्कार करते हुए।
4: नमस्कार नमस्कार,
3: आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद कि आपने प्रोग्राम सुनकर इतनी बातें हमसे की,
1: और अभी तक याद है उनको,
3: अभी तक याद है उनको।
0: हाँ बिल्कुल, याद तो इतनी सारी है कि कई आपके शो खत्म हो जाएंगे तो भी मेरी यादें पूरी नहीं होंगी।
1: क्या बात है।
3: देखिए आप जैसे श्रोताओं के कारण ही हमारा कार्यक्रम जीवंत रहता है, और हमेशा हमें कुछ नया नया करने की इच्छाएं होती रहती है।
1: तभी तो कहते हैं कि जो 71 वर्ष हुए आकाशवाणी इंदौर के, उस सफर में सिर्फ यहाँ के प्रोग्राम करने वाले नहीं, हमारे श्रोता भी शामिल
3: हैं। भी शामिल है, बिल्कुल सही।
0: पर सर मुझे एक बात का अफसोस ये है कि काश मैं 1955 के आसपास पैदा हो जाता या उससे पहले हो जाता, तो इस लोग आकाशवाणी इंदौर को शुरू से सुनता।
3: फिर आपने जितना भी सुना है बहुत अच्छे से सुना है और बहुत बढ़िया सुना है।
0: और सर आज तो 71 साल हो गए हैं, और मैं चाहूंगा कि 100 वर्ष तक, तो आप पता नहीं मेरी जिंदगी रहती है या नहीं रहती है, तो मैं उसी की शुभकामनाएं भी आपको अभी से देता हूँ।
3: अरे बिल्कुल रहेगी जिंदगी, 100 साल से आप ज्यादा जिएंगे, बिल्कुल
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, और अब हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
5: बधाई हो बधाई 90 ईयर्स की आपको, बधाई हो बधाई 71 ईयर्स की आपको।
1: क्या मैं जान सकता हूँ ये सुरीली आवाज किसकी है
3: और कौन बोल रहे हैं?
6: हरीश कुमार कश्यप बोल रहा हूँ, रुस्तम का बगीचा से।
1: रुस्तम का बगीचा से हरीश कुमार कश्यप जी, स्वागत है आपका। आज 71वें स्थापना दिवस पर आपका फोन लगा है, कहिए अपने मन की बात।
6: सर बस आप तो मनोरंजन करते रहिए, ऐसे ही और क्या कह सकता हूँ ज्यादा, आप बोल ही रहे हैं।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
7: हेलो, नमस्ते
1: जी। नमस्कार,
7: मैं अनिल भंडारे सुजामनगर से बोल रहा हूँ।
1: भंडारे साहब स्वागत है आपका।
7: भैया हम कार्यक्रम के बहुत पुराने श्रोता हैं
1: जी,
7: और 1955 से लेकर आज तक 71 साल से कार्यक्रम सुन रहे हैं
1: जी। भंडारे साहब आपने तो हमारे सभी साथियों के प्रोग्राम सुने होंगे।
7: और एक काम बताना कि हमने हमको

0: घड़ियों का शौक 1952 से लगा था
1: जी,
0: और ये शौक आज तक जारी है
1: जी।
0: और हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा परिचित थे देवेंद्र कौल, संतोष जोशी, विजय राय, इन तीनों से मुलाकात भी हुई है हमारे पुराने जमाने में, और उनके कार्यक्रम भी हम सुनते गए मन भावन आज कार्यक्रम।
2: वाह भाई,
1: आज आप किससे बातचीत करना चाहेंगे?
0: उनको हमें नमस्ते बोलना,
1: बस नमस्ते बोलना है।
2: नमस्कार नमस्कार।
0: तो भी हमारे पुराने साथियों से, पुराने साथियों में एक दो गुजरे से और प्रवीण शर्मा और विजय, तुम्हारे विद्याधर
1: मुझे
0: काम किया।
1: अनिल भंडारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन लगाने के लिए। अब हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो,
0: धन्यवाद आपको।
1: हेलो हेलो
3: सर जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: हमारा अपना आपका मार्गदर्शक आकाशवाणी केंद्र इंदौर सर जी।
1: जी, अपना परिचय दें।
3: अनोखे सिंह।
1: अनोखे सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
3: बाग जिला धार।
1: धार से बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर आप?
3: और सर जी कह रहा हूँ 71-90 साल की यात्रा
1: जी,
3: और आगे भी ये यात्रा चलती रहे अखंड, इस राष्ट्र के सभी आकाशवाणी केंद्रों से
1: जी।
3: आप हार्दिक शुभकामनाएं देते रहे।
2: आप बाघ से बोल रहे हैं? धार जिले से ना?
3: धार जिले।
2: हाँ, आपको पता है बाघ किस बात के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है? किस बात के लिए प्रसिद्ध? हाँ,
3: प्रसिद्ध यहाँ जी अभी अभी तो रंगाई है छपाई केंद्र से हो गया।
2: हाँ, काहे की छपाई?
1: बाघ प्रिंटिंग।
3: हाँ, बाघ प्रिंट है और
2: साड़ी प्रिंट
3: है हमारे।
2: हमने बाघ आकर के प्रोग्राम बनाया था, आपके प्रिंट साड़ियों पर जो प्रिंट होती है वो उस पर बनाया था, और दूरदर्शन में उसे वहां दिल्ली में उसे अवार्ड भी मिला था।
1: संतोष जी साड़ियों की और लोकल तो ज्यादा बेहतर है, मधु जी बैठी हुई है यहां पे।
4: मधु जी लोकल से लेके भोकल तक बात प्रिंट की बात करें तो क्या कहना?
3: सर जी
5: बाघ और उज्जैन में जो भैरवगढ़ प्रिंट
1: जी,
5: वो भी उज्जैन का बहुत अच्छा प्रिंट है, उसकी चादरें साड़ियाँ सभी कुछ मिलता है, बहुत अच्छा। उज्जैन से भी हमने
4: कुछ अनुभव बताया अपना।
1: मधु जी की अलमीरा में ऐसी कोई प्रिंट की साड़ी नहीं बची होगी जो उनकी अलमीरा की शान नहीं बढ़ा रही होगी।
2: वो अब सिर्फ शान बढ़ाती
5: है। बात विजय ने सही कही, अब सिर्फ शान बढ़ाती है, पहनने का मौका नहीं आता जो
1: शान तो बढ़ाती है।
5: हाँ, शान बढ़ाती
1: है। हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
6: हेलो
1: जी, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
6: मैं दियान नामदेव सोमानी नगर से बोल रहा हूँ सर।
1: नामदेव जी स्वागत है आपका,
6: आपको रेडियो दिवस की शुभकामना
1: जी, आकाशवाणी इंदौर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको भी,
6: और आपके कार्यक्रम करीब मैं 1970 से सुनते चला आ रहा हूँ। मैं
1: 70 से सुन रहे
6: हैं। हाँ,
1: कौन सा विशेष कार्यक्रम आपको ज्यादा पसंद है?
5: नंदा जी बेहरा जी छाए हुए
4: हम मालवीय जी एक चीज और बताना चाहते हैं, चूंकि इंदौर केंद्र जो है संगीत घरानों से जुड़ा हुआ है, तो कुछ है जो 70 साल का जश्न मना रहे हैं, 71 साल का जश्न मना रहे हैं, तो कुछ संगीतकारों को याद करते हैं, जैसे उस्ताद बुंदू खां सारंगी में थे, पंडित नारायण राव इंदुकर तबला से जुड़े हुए थे, उस्ताद जहांगीर खान तबला से थे, उस्ताद मुनीर खान सारंगी से थे, और पंडित चुन्नीलाल पवार जी पखावत से थे, उस्ताद बुंदू खां पीनकार थे, श्री कृष्ण राव मजुमदार जी गायक थे, पंडित नाना साहेब पान से पखावत से थे, पंडित विष्णु भैया मुंगरे पेटी वाले थे, और उस्ताद अलादिया खां सारंगी से थे, नटराज अरुण कुमार नृत्य में थे, पंडित लक्ष्मी नारायण पवार पखावत में थे, उस्ताद नत्थे खां क्लेरेट वादन
5: इन्होंने,
4: उस्ताद जफर खां जावरा वाले सितार में थे, उस्ताद रजब अली खां गायक और बिनकार थे, दुर्गा प्रसाद जी कथक नृत्य में थे, अंबादास पंत आगले जी पखावज में थे, उस्ताद अमानत अली खां गायक में थे, आमिर खान जी गायक में ये रहे हैं, और इनके संस्मरण हम सुनना चाहेंगे।
5: पाठक जी, आपने जिन लोगों के नाम लिए इनमें से बहुत सारे लोग मुइनुद्दीन खान साहब के शिष्य रहे हैं, जो हमारे स्टाफ के कलाकार थे मुइनुद्दीन खान साहब सारंगी वाले, उनकी मुझे उनका एक

0: किस्सा याद आ गया, जब राजीव गांधी जी की रात में हत्या हुई थी, दूसरे दिन सवेरे मैं ड्यूटी पर थी। जब ड्यूटी पर आई तो कोई तैयारी नहीं थी, अचानक सुबह सुबह 6 बजे की न्यूज में आया कि राजीव जी नहीं रहे। तब कुछ इंतजाम नहीं था और जो शोक पीरियड डिक्लेयर होता है वो हो चुका था, तो चूंकि इंतजाम नहीं था उस समय, तुरंत मुइनुद्दीन खान साहब को कॉलोनी से पीछे से घर से बुलाया गया। घर से बुला के उन्हें लाइव स्टूडियो में बिठाया गया और उन्होंने कम से कम 3-4 घंटे लाइव सारंगी बजाई लगातार।
1: क्या बात है। और इस केंद्र से जुड़े हुए थे उस्ताद आमिर खान के अलावा उस्ताद आबिद हुसैन खान और पंडित कुमार गंधर्व, और इनके समय के काफी संस्मरण है।
2: पर एक बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुइनुद्दीन खान साहब जो थे सारंगी वादक, उनका पोता बेटे का बेटा आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में बहुत नाम कमा रहा है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। और हमारे अगले श्रोता अब हमसे लाइन पे जुड़ रहे हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
3: हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर।
1: भगवान सिंह जी, स्वागत है आपका, कहिए आज अपनी मन की बात कहिए।
3: जी सर, हम आकाशवाणी इंदौर को 2 सालों से सुन रहे हैं सर, और मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं सर जी, और कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है सर
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं पुराने उद्घोषक। हेलो
4: हेलो
1: जी, नमस्कार।
4: नमस्ते
5: निम्मी जी। निम्मी जी, निम्मी जी जो इंदौर से जिन्होंने शुरुआत की थी, जो इस समय बाद में मुंबई चली गई, और इस समय कुछ दिन पहले ही मैं उनसे मिलके आ रही हूँ मुंबई में।
1: और आकाशवाणी खंडवा में भी इन्होंने उद्घोषणा दी थी।
5: हाँ, आपने बताया था मुझे।
1: और आकाशवाणी इंदौर से और उसके बाद मुंबई में अपनी आवाज का परचम फैलाने वाली निम्मी मिश्रा जी अब हमारे साथ है। निम्मी जी, आपके पुराने साथी भी आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, संतोष भाई, विजय रॉय साहब, मधु जी, कहिए इस 90 वर्ष के सफर के बारे में, कहिए आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस के बारे में और अपने इन साथियों के बारे में।
4: इंदौर के नाम से ही मुझे आकाशवाणी इंदौर का जो गेट है उसके दोनों तरफ अमलतास के पेड़, और इस मौसम में पीले पीले फूल जमीन पे भी, पेड़ पे भी, और मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है। तो आकाशवाणी इंदौर के जो पहले पुराने स्टूडियो होते थे जहां हमने ज्वाइन किया था, उसके सामने भी जो गार्डन है उसमें भी बहुत से फूल पौधे बहुत बहुत अच्छे। मैं तो अगर इंदौर की यादें गिनाऊ ना तो आपका पूरा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा मेरी यादों से।
1: हम तो ये जानना चाहेंगे कि क्या रोचक बातें जो आप लोगों के बीच में चलती थी, या कुछ वैसे किस्से, कहानी, या कोई ऐसी बात जो आज भी आपको बहुत प्रसन्न कर देते हैं।
4: क्या बताऊं, बहुत सारी बातें हैं। सिलसिला जो अगर एक बार शुरू होगा तो मुझे डर है कि मेरे को रोकना मुश्किल हो जाएगा। पर कुछ, एक तो इंदौर की जो लोकेशन है ना, जो आकाशवाणी इंदौर है वो ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। अभी यहाँ पे विविध भारती मेरे सामने ही यहाँ शुरू हुआ, पर उसमें आने में वो बात नहीं थी जो इंदौर में थी। बाद में तो सभी अच्छा लगता है, हम लोग का काम ही इतना अच्छा है। और इंदौर की एक कैंटीन हुआ करती थी पीछे, बिल्कुल पीछे, जहाँ पे पौधे, जहाँ पे अभी अकाउंट सेक्शन या कुछ तो भी होगा, वो उसमें एक पेड़ था बहुत सुंदर, पता नहीं अब है कि नहीं, उसके चारों तरफ गोल दायरा बना था, वहाँ कैंटीन थी, वहाँ हम लोग चाय पीते थे 9:30 बजे।
2: बिल्कुल सही कहा। और वहाँ अब वहाँ क्वार्टर्स बन चुके हैं, और उसके और आकाशवाणी के बीच में एक दीवार है, अब काफी दूर चला गया वो।
4: पर वो बहुत बहुत ही, आकाशवाणी इंदौर का प्रिमाइसेस बहुत सुंदर था।
1: अच्छा, नहीं
4: वो तो याद रहेगा। और श्रोता तो वही है, वो जो मेरे इंदौर के श्रोता थे वो बंबई तक चले मेरे साथ
1: जी। निमी जी, निमी जी, एक व्यक्तिगत सवाल। चूंकि उस वक्त आप भी बहुत फेमस थी इंदौर से, मधु जी भी, विजय रॉय साहब भी, संतोष जी भी, जेलस तो होती होगी आपस में, इनमें से सबसे ज्यादा जेलस किससे होती थी? नहीं, ईमानदारी से बताइए निमी जी, ईमानदारी से बताइए।
4: मेरी बात सुन लो, मुझे जलन आज तक किसी से कभी भी नहीं हुई, झगड़ा हुआ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे हिस्से का मुझे ही मिलेगा, दूसरा कोई नहीं ले सकता।
1: आकाशवाणी खंडवा में भी निम्मी जी आपको बहुत याद करते हैं, जब मैं वहां का कार्यक्रम प्रमुख था, कुछ आप अपना संस्मरण सुनाएं, हमारे बहुत से श्रोतागण जुड़े हुए हैं वहां से।
4: कहां से?
1: आकाशवाणी खंडवा में आप उद्घोषणा की थी।
4: खंडवा, अरे खंडवा भी बहुत सुंदर याद है, वो मुझे तो पता भी नहीं था, अचानक वो दिवाली के दिन खंडवा की शुरुआत थी
1: जी।
4: और मुझे कहा गया जान

0: को तो मेरे घर में मेरे भाई भाभी सब यही थे, मेरी बहन भी बाहर चली गई थी, तो उन लोगों ने इतना गुस्सा किया कि हम लोग सब यहाँ पे आए और तुम जा रही हो खंडवा। मैंने कहा ऑफिस ऑर्डर निकल चुका है, मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं गई और वहां सोलंकी जी थे, सोलंकी जी अभी
1: सिद्धनाथ
0: रिटायर हो गए थे
1: सोलंकी
0: हम,
1: जी।
0: हाँ सिद्धनाथ सोलंकी जी।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मैं उनके घर रुकी थी
1: क्या बात।
0: और हाँ, और फिर पहला अनाउंसमेंट मैंने किया था और इतनी अविनाश सरमंडल वहां थे स्टेशन
1: जी
0: डायरेक्टर। हाँ तो कुल मिला के मतलब खंडवा शुरू ही हुआ था इसलिए स्टूडियोज वगैरह तो अच्छे थे, और वो फूलों की खुशबू, गेंदे के फूलों की खुशबू मेरे पास अभी तक है
1: और
0: सही
1: संजय
0: से।
1: पंचोलिया जी आपको बहुत याद करते थे, कई बार पत्रोत्तर करता था, तो निम्मी माथुर जी से बात करवाइए, बात करवाइए।
0: कितना कितनी आपने तो मेरी बिल्कुल पुरानी यादों को एकदम ताजा कर दिया। और वैसे भी रेडियो से दूर तो हम रह ही नहीं पाते हैं, अभी भी यहाँ मैं मुंबई में हूँ और इंदौर को भी याद करती हूँ, मुंबई के स्टूडियो को भी याद करती हूँ, और इतने सारे श्रोता जो इतना प्यार करते हैं उनको भी
1: वैसे
0: बहुत याद
1: वैसे निमी
0: करती
1: जी, बहुत सफाई से आपने हमारी बातों का उत्तर जो है वो टाल दिया है। और
2: हूँ। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब गुरुवार का दिन होता था तो मुझे याद है कि हमारे जो ड्यूटी रूम है उसमें सारी महिलाएं पीली साड़ी में आ जाती थी।
3: हाँ निम्मी जी, निम्मी जी एक बात मुझे भी याद
2: निम्मी जी,
3: आती
2: सुदेश
3: है।
2: जी, मधु जी, सब के सब।
3: उन दिनों दिनों के हिसाब से कपड़े पहने जाते थे कि आज बुधवार है तो हरा पहनना है, गुरुवार है तो पीला पहनना है। और इसकी शुरुआत हमारी एक सीनियर अनाउंसर थी सुदेश हिंदुजा, उन्होंने की थी। और वो सुदेश जी जिस रंग का कपड़ा पहनती थी, हम भी उस दिन उसी रंग के कपड़े पहनते थे। और अच्छी उन दिनों की बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं। और निमी
0: हाँ
3: तुम्हें भी याद होगा हम लोग जो
0: हाँ ये
3: साड़ियों की हमारी
0: साड़ी
3: कंपटीशन चला करती थी।
0: मैं तो साड़ी तो मैंने मतलब पहले क्या होता था उस जमाने में, जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तो नौकरी कर रहे मतलब आप साड़ी पहनो, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट था कि वही ऐसे सूट फूट पहन के नहीं जानेगा। तो मैंने साड़ी पहननी शुरू की, मैं ट्रेन से महू से आया करती थी। साड़ी पहनना बड़ा मुश्किल काम होता था, सुबह की ड्यूटी में जल्दी से पहनो
3: वो आज भी होता है, वो आज भी होता है साड़ी पहनना जो आज
0: अभी अभी तो मैं बंबई आके मैंने बहुत साड़ियां पहनी, बहुत कम सूट पहने। तो मैं 2 मिनट में साड़ी पहन लेती हूँ, मेरे को कुछ काम मतलब साड़ी पहनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता अभी भी। और साड़ी से अच्छा कोई पोशाक हो ही नहीं सकती महिलाओं के लिए, मेरा ये मानना है। अभी भी कहीं कुछ प्रोग्राम होता है और अगर मुझे कोई बुलाता है तो मैं साड़ी ही पहनती हूँ।
3: साड़ी
0: साड़ी
3: में
0: में
3: जो ग्रेस है वो शायद किसी और चीज में नहीं होता,
0: कोई
3: लेकिन
0: नहीं
3: ये
1: हाँ मधु जी है ना, ये सभी महिलाएं कहती हैं 2 मिनट में पहन लेती हूँ, और हमें पता है 2 मिनट
3: कितने। और इस समय हमारा विषय थोड़ा सा भटक गया, महिलाओं वाला विषय आ गया साड़ी।
4: कहा जाता है अरे 10 मिनट रुको,
0: रेडियो
4: मैं
0: का
4: अभी दो
0: है,
4: मिनट में
0: हम
4: आती हूँ क्या।
0: रेडियो की बातें कर रहे हैं।
1: अच्छा संतोष जी, निम्मी जी से आखिरी बातचीत आप करें और अब किसी अभिनेता की आवाज में आप निमी जी से बात करें तो आनंद आ जाएगा।
4: ठीक है, अगर संजीव कुमार बैठे होते हमारे बीच में
1: हाँ
4: तो निमी जी से क्या पूछते।
1: जी
0: संजीव,
4: हाँ संजीव कुमार
0: मेरी जगह पे जो आया था, मैं जब बंबई ट्रांसफर ले रही थी
4: हाँ।
0: उसके बाद
3: नहीं नहीं संजीव मालवीय की बात नहीं हो रही है,
2: ये मिमी की कर रहे हैं,
3: अभिनेता
2: एक्टर
3: संजीव कुमार
2: संजीव
3: की बात
2: कुमार
3: हो रही
2: की।
3: है।
1: संजीव कुमार अभिनेता की आवाज में संतोष भाई आपसे अब बातचीत करेंगे।
0: ओ संतोष की तो क्वालिटी है।
5: निर्मी जी
0: हाँ
5: ये बताइए कि मुंबई में इतना रहने के बाद कभी कभी आपको इंदौर आने की इच्छा नहीं होती।
0: बहुत होती है पर अब क्या किया जाए, मजबूरियां होती है कि आना चाहते हुए भी नहीं आ पाते।
5: फिर भी हम ये चाहेंगे कि आप इंदौर आए और हम लोग सभी मिलें, एक अच्छा वक्त
0: बिल्कुल
5: गुजरेगा साथ में।
0: तो कोई भी प्रोग्राम बनाओ मुझे बुलाओ, मैं आने को तैयार हूँ।
4: जरूर जरूर निमी जी, अब मैं अपनी आवाज में बोल रहा हूँ
1: और
4: आपसे।
1: बिल्कुल निमी जी आपका स्वागत है, क्योंकि वैसे भी इंदौर जो है वो खवैयों और गवैयों का देश है, तो खान पीन के मामले में तो हम हिंदुस्तान में अव्वल हैं, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ आए और आपके साथ वही पुराने संस्मरण बैठ के किस्से कहानी सुनेंगे और साथ में कुछ खान पान भी होगा। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच
4: थैंक
0: कि
4: यू निम्मी
0: तुमने
4: जी,
0: मुझे इस
4: थैंक यू
0: अवसर पर याद किया।
3: थैंक यू निम्मी, थैंक यू।
0: थैंक
1: कितनी यादें, कितने संस्मरण। और एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो
6: हाँ नमस्कार, राजेश अग्रवाल बोल रही हूँ, राजा राम नगर देवास से।
1: राजेश भाई स्वागत है आपका, राजा राम नगर से आप बातचीत कर रहे हैं।

0: हमारे राजू भैया हैं, ये पत्रों के बहुत शौकीन हैं और फरमाइशी खत काफी लिखते हैं, हर प्रोग्राम में इनके फरमाइशी खत मिलते हैं। राजू भैया, 71वें स्थापना दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
1: साहब, पूरी टीम को 71वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और सारे श्रोताओं को भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि जिस लगन से वो चिट्ठियाँ भेज रहे हैं और बरोबर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ उनको और आकाशवाणी की पूरी टीम को जिस लगन से काम कर रहे हैं। आरजे, सारे ही आरजेओं को मैं, पुराने नए सभी को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। गुप्ता साहब, ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में तकनीकी रूप से हम कितना और आगे बढ़ेंगे और किस किस क्षेत्र में आकाशवाणी में नए नए चेंजेस आएंगे?
2: नए आधुनिकता की बात करें तो हमारे आकाशवाणी से वर्चुअल रेडियो भी अब शुरू होने वाला है और उसके लिए भी तकनीकी रूप से कई जगहों पर नए सर्वर वगैरह खरीदे जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही वर्चुअल रेडियो भी हमारे नेटवर्क में शुरू हो पाएगा, उसमें आप लोग आवाज़ के साथ साथ उसमें वीडियो क्लिप्स भी आप देख पाएंगे और अपने पसंदीदा जो भी कलाकार हैं, उद्घोषक हैं, उनको आप रूबरू भी हो पाएंगे।
0: मतलब खास तौर पर उद्घोषकों के लिए ही है ये। हमारे साथ अगले श्रोता लाइन पर हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो
3: सर, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: नीरज मास्टर बोल रहा हूँ सर, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स से।
0: नीरज जी स्वागत है। मैं यही सोच रहा था कि आज रेडीमेड कॉम्प्लेक्स का एक भी फोन नहीं आया, नहीं तो ऐसा कोई प्रोग्राम। हाँ,
3: 15 मिनट से लगा हूँ सर मैं भाई।
0: अच्छा, फोन नहीं लग रहा है।
4: इनकी आवाज बड़ी अच्छी है।
0: जी नीरज जी बताएं, अपनी बात कहें।
3: सर, आप सभी उद्घोषकों को स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद
0: राय साहब। ये रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से फोन इन प्रोग्राम में बहुत फोन आते हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, और आपको ये समझ में नहीं आता कि कब किसका फोन लगा, क्योंकि हर व्यक्ति मतलब एक प्रोग्राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेलो हेलो,
5: संजय पटेल रंगकर्मी।
0: हेलो,
6: नमस्कार।
0: जी नमस्कार संजय भाई, स्वागत है आपका आकाशवाणी के 90 वर्ष का सफर और आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस। मुझे लगता है आकाशवाणी के हर प्रोग्राम से, आकाशवाणी के चप्पे चप्पे से आप वाकिफ हैं। आपके मन में आज क्या चल रहा है? हमारे पुराने साथी भी आज हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में।
6: मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान मुझे जिस उम्र की, जिस दहलीज पर मैं हूँ, भगवान मुझे इतनी उम्र और देगा कि आकाशवाणी को 100 बरस का होते हुए मैं देख सकूं। आकाशवाणी इंदौर को भी 100 बरस का होते हुए देख।
0: संजय भाई, आपके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मालवी जायका प्रोग्राम मैंने आपके साथ किया है, अमृत स्वर लता प्रोग्राम के काफी एपिसोड आपके साथ, मधु जी के साथ मिलकर यहाँ पर बनाए हैं और बहुत सारे नाटकों में आपने अभिनय भी यहाँ पर किया है।
5: संजय जी से बात करते हुए तो नरहरी जी की भी याद आती है, नरहरी पटेल जी की।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
5: और बहुत कुछ और याद आता है। तो खुद इंदौर में बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं संजय जी तो, और शायद संतोष जोशी इनसे और अच्छी मालवी में बात कर सकते हैं।
6: कई हाल है दादा, आपके भी बहुत बहुत बधाई।
4: अरे बधाई, तुम्हारे भी बधाई। कहीं चली रही आज तुम रेडियो? आज कैसे?
6: बस बस, आज संजीव भाई और मधु जी की आवाज सुनी और आप बाद में यूँ मालूम पड़े हो कि आपकी उम्र तो, हमारे तो ऐसा लगी रही है कि बाफला में और घी नहाक दियो आपकी आवाज सुन ली।
4: बढ़िया, तो जमी गयो काम फिर अच्छो हो है नी।
6: अच्छी बहुत, आप सबको बहुत बधाई। ये परिसर इतना पवित्र और इतना उत्सवी परिसर है कि इसने पूरे 100 किलोमीटर के रेडियस में, मुझे नहीं लगता कि अगर मैं कोई संख्या अगर उछाल कर कह दूं, 1 करोड़ से ज्यादा श्रोताओं तक पहुंचता है हमारा मालवा हाउस, और उसकी तो बात ही निराली। उसके नाटकों की क्या बात करें, उसका लोक संगीत। और आज अपने ट्रांसमिशन के जरिए मैं ये भी कहना चाहूंगा, संतोष भाई, मधु जी और संजीव भाई और बाकी हमारे जो मित्र स्टूडियोज में बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि अब 71वें वर्ष पे और जब ये 75वें अमृत महोत्सव की तरफ जाएगा, तो हमारे जो अधिकारी हैं उनको भी बधाई देते मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो लोक संगीत और सुगम संगीत की परंपरा का जो एक झंडा ऊंचा किया था मालवा हाउस ने, उसको उस स्वर्णिम दौर को हमें इन आने वाले वर्षों में 4 साल में लौटाना होगा।
0: संजय भाई बहुत
6: इसकी इसकी इसकी

0: पूरी पूरे देश में थी। यहाँ की सुगम संगीत की रचनाएं राजेंद्र शुक्ल, सुमन दांडेकर, स्वतंत्र कुमार ओझा, नरेंद्र पंडित, कितनी आवाजें जहन में हमारे उभरती हैं जो न जाने उनके ब्रॉडकास्ट पूरे देश में जब होते थे तो ऐसा लगता था कि इंदौर का नाम और ऊंचा चला गया।
1: और इस क्षेत्र में हमने कई प्रयास भी किया है मालवीय जी, जैसे लोक सभ्यता संपदा संरक्षण की अगर बात करें तो जो 16 संस्कार होते हैं उनके गीतों को भी आकाशवाणी इंदौर ने इंदौर और उज्जैन संभाग में गांव गांव में जाकर उन्हीं की बोलियों में रिकॉर्ड किया है और प्रिजर्व भी किया है।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक हम लेना चाहेंगे क्योंकि समय जो है वो FM हेडलाइंस का है। FM हेडलाइंस के बाद फिर से जारी रखेंगे इसी प्रोग्राम को, तो आइए सुनते हैं FM हेडलाइंस।

0: एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष का उत्साह, उमंग और उल्लास है और आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस है और आप सुन रहे हैं ये सजीव फोन इन प्रोग्राम है। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं, हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्कार, मैं सदा हिरवे बोल रही हूँ।
0: अच्छा सदा, आप आकाशवाणी में ही रही हैं और तकनीकी विभाग में आपने काफी सेवाएं यहाँ पे दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सदा। और 71वां स्थापना दिवस है आज आकाशवाणी का और 90 वर्ष का उत्साह भी हमारा है, तो बताएं आज आपके मन में क्या चल रहा है?
1: आज सबसे पहले तो मेरे मन में ये चल रहा है, एक्चुअली आज से नहीं चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है मन में, एक मतलब एक पहले से ही मन में था कि 22 मई आने वाला है और आकाशवाणी का स्थानांतरण स्थापना दिवस होने वाला है और मुझे सारी पुरानी जो यादें हैं वो सारे फ्लैशबैक हो रही थी कि जब मैं आकाशवाणी में थी और हर दिन एक बहुत अच्छा समय बीतता था, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे भी शायद स्थापना दिवस में होना था और जितने भी आज काफी सारे पुराने,
0: यानी आप जो अभी जिस प्लेस पर आप जॉब कर रही हैं वहां से इंदौर आना चाहती हैं गुप्ता साहब। हेलो हेलो,
1: हाँ जी सर नमस्ते,
2: आमंत्रित हैं इंदौर?
0: नहीं वो पोस्ट से ही आना चाहती हैं आप।
3: अभी अभी कहाँ है सदा जी, अभी कहाँ?
1: अभी मेरा स्थानांतरण हो गया है तो मैं बड़ोदरा में हूँ, लेकिन आकाशवाणी इंदौर से जो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं और जो मैंने वहाँ पे काम किया है और जिस तरह से मुझे लोग मिले हैं, मेरा एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार यदि कोई इंदौर में आ जाता है, कुछ समय यदि वहाँ व्यतीत कर लेता है, तो वो कहीं भी जाए उसका मन तो नहीं लगेगा, उसे इंदौर की याद आएगी।
3: सदा जी आपके पुराने साथी सभी स्टूडियो में हैं इस वक्त, और अभय जी आप बताइए, इनकी कोई उम्मीद है कि वापस इंदौर आ सकती हैं ये?
4: हमारी शुभकामनाएं हैं, कोशिश आप जारी रही रखिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेलो हेलो हेलो,
5: हाँ जी भैया
0: हेलो, अपना परिचय दें।
5: नमस्कार सर, मैं अंकित सिसोदिया बात
0: अच्छा,
5: कर रहा हूं,
0: अंकित अंकित भाई आपका स्वागत है। और हम अपने तमाम श्रोताओं को बता दें कि अंकित सिसोदिया जी एक जाने माने कॉमेडियन हैं और बड़ी खुशी की बात है कि आज इस इंदौर के 71वें स्थापना दिवस पर वो हमारे साथ जुड़े हैं और 90 वर्ष का हमारा आकाशवाणी के सफर का उत्साह भी है। अंकित जी अपने मन की बात कहिए और इस आकाशवाणी को आप अपने अंदाज में किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे वो बताएं।
5: सर सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं सर, और आकाशवाणी को 71 वर्ष पूर्ण करने पर सर बहुत बहुत सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं, क्योंकि सर ये एक ऐसा माध्यम है सर जिसे सुन सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं, मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भी केंद्र रहा है, हमने इससे बोलना सीखा है सर कि कैसे बोला जाता है, मंच पर कैसे प्रस्तुति दी जाती है, और ये एक बहुत बड़ा आज मौका है सर कि मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ पाया, आपसे बातचीत कर पा रहा हूं। और मेरे साथ सर कई कलाकार भी हैं जो आकाशवाणी को 71वें वर्षगांठ पर बहुत सारी बधाई देना
0: चाहते हैं। संतोष जी, अंकित जी जो है 5 मिनट में 90 कलाकारों की आवाज में बधाई दे सकते हैं।
6: अच्छा बहुत अच्छी बात है,
0: अंकित जी बधाई देना शुरू करें।
5: हाँ बिल्कुल सर, मैं बस कलाकारों को लेकर आता जाऊंगा सर, बाकी तो श्रोता सभी जानते ही है किसकी आवाज है सर, कोशिश करूंगा
0: जी।
5: तो
7: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आकाशवाणी की आज 71 इयर्स कंप्लीट हो गए, आऊंगा जादू भी करूंगा क्योंकि आकाशवाणी में खुद एक जादू है। थैंक यू सो मच।
5: ओए भाई, अरे भाई आकाशवाणी को ओए 71 वर्ष पूरे हो गए लाले, ओए बधाइया,
8: जय हो भगवान की, जय हो भगवंती की। भैया अब मैं पहली बार नहीं सुन रहा, मुझे सुनते सुनते 71 साल हो चुके और आगे भी मैं ऐसे ही सुनता रहूंगा, भैया बहुत बहुत सारी बधाइयां।
5: नाउ अभी बहुत सारे कलाकार और भी हैं सर जो बधाइयां देने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, कुछ नए कुछ पुराने हैं, और कुछ पुराने में से लेकर आता हूँ सर। उत्पल दत्त साहब जो बड़े बेहतरीन कलाकार आकाशवाणी को बहुत सारी बधाइयां। आज मैं कोलकाते का राजभोग खाऊंगा। अच्छा
0: क्या बात है।
5: अच्छा है, मन को अच्छा लगा। आकाशवाणी का जो है 71वां वर्षगांठ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे दर्शकों को बधाइयां, आकाशवाणी को बधाइयां। ऐसे ही अच्छे गीत सुनाते रहिए, ज्ञान की बातें करते रहिए और हम जैसे लोगों को लाभ पहुंचाते रहिए।
0: अच्छा है।
9: देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इस 71वें वर्षगांठ में, जहाँ पे भाई साहब जो है ज्ञान की नदियां बह रही है और 7 करोड़ से ज्यादा दर्शक उसे रोज सुनते हैं। भाई साहब जो है बधाइयां, और एक बार सर मेरी खुद की आवाज में बहुत बहुत सारी बधाइयां सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी इस कला को बहुत बहुत सलाम। और अंकित जी के लिए हम चाहेंगे कि हमारे ढोल वाले भैया ढोल से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई, इसी तरह अपने हुनर से श्रोताओं का मन बहलाते रहे और आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।
10: जी हम एक बात और बता दें कि हम अपना स्टूडियो से खतरमा स्थापना दिवस मना रहे हैं और प्रदेश के कई हिस्से में ये कार्यक्रम हमारे श्रोतागण भी मना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बरवा सनावत क्षेत्र में, तो वहाँ प्रवीण सिंह निमाली जी मना रहे हैं, कपिल तिवारी जी हैं, हुकुम चंद कटारिया जी हैं, पिंटू सेन, बाबूलाल चौधरी, ज्योति भदौरिया, रचना खेड़े, अशोक वर्मा।

0: राजकुमार शेख मूसा, किशोर साबले जी, विजय सोनी जी, आनंद जोशी जी, और भोपाल में सरवन सिंह की नारे जी हैं, और खंडवा में संजय पंचोलिया जी हैं, और मनीष निमारे जी खरगोन में कई क्षेत्रों में अपने अपने पूरी टीम के साथ आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मना रहे हैं।
1: जैसा कि राज साहब, संतोष जी, मधु जी, आप जानते हैं कि हमारे तमाम श्रोता इनके श्रोता संघ बने हुए हैं, और अपने अपने संघों के माध्यम से ये अलग अलग स्थान पर बहुत सारे श्रोता इकट्ठे होते हैं, और फिर आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस ये मना रहे हैं। वैसे हर वर्ष ही अपना 22 मई को आकाशवाणी का स्थापना दिवस ये सभी श्रोता मनाते हैं, तो हमारे तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और एक बार और ढोल हो जाए,
1: एक बार और ढोल हो जाए। और अब हमारे साथ लाइन पे जुड़ रहे हैं, हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
2: प्रेम सिंह दीपालिया बोल रहा हूँ सर।
1: एक बार फिर से अपना परिचय दें।
2: मैं प्रेम सिंह दीपालिया बोल रहा हूँ, मकराना जिला राजगढ़ से।
1: प्रेम सिंह जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी के 71वें स्थापना दिवस पर। क्या कहना चाहेंगे आप?
0: कुछ लोकगीत गुनगुना दें।
2: अच्छा, लोकगीत गुनगुना दूं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, और ढोल की थाप जारी रखें।
2: पिता की माया माया छोड़नी पड़े कि सासर जानो पड़े।
0: क्या बात है
2: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद,
2: मणि ने मुझे एक पहचान दी, इसके लिए मैं अभी 1.5 घंटे से फोन लगा रहा था, बड़ी मुश्किल से फोन लगाए।
1: देपाल पुरिया जी, आपका लग गया, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे हजारों श्रोता हैं जो इस वक्त लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर चूंकि हमारे पास टेलीफोन लाइन दो ही है और समय भी एक निश्चित होता है, अब ये तो किस्मत की बात है कि किसका फोन लगता है और किसका नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मेरी बेटी सपना देपाल पुरिया तो परेशानी हो गई थी कि अरे कब लगेगा फोन।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़े हैं, हेलो हेलो
3: हेलो
1: जी, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: नमस्कार, मैं रुपेश चौहान, बड़ा गणपति से।
1: रुपेश जी, स्वागत है आपका, आकाशवाणी के प्रोग्राम आप सुनते हैं, और आज आकाशवाणी का 71वां स्थापना दिवस है, किस तरह से आज याद करेंगे आप?
3: जैसे आप वहाँ पर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, हम घर पे बैठकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
1: आपके घर का सेलिब्रेशन बताएं थोड़ा सा।
3: जैसे जैसे ढोल बज रही वैसे वैसे नाच रहे हैं।
0: एक बार और ढोल बजा दे।
3: मैं चाहूंगा कि एक बार वो राम लखन वाली धुन बजाए, जब भी कभी कोई ऐसा खुशी का प्रोग्राम होता है तो हम राम लखन वाली धुन पे नाचते हैं घर पे।
1: दिना दिद्धा।

0: आप इसी तरह से आकाशवाणी से अपना प्रेम बरसाते रहें और खुशियां बढ़ाते रहें।
1: मुकाम जी, हमारे जो श्रोतागण मना रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, बिल्कुल,
0: और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। हेलो
2: संजीव, एक चीज बताऊं, हमारे देश की जनसंख्या करीब करीब 150 करोड़ है
0: जी,
2: और आकाशवाणी जो है इनमें से 99% जनसंख्या तक पहुंच चुका है।
0: रॉय साहब, अब न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वर्ल्ड में पूरी दुनिया के किसी भी कोने में आप आकाशवाणी इंदौर के दोनों चैनल सुन सकते हैं।
2: एक बात और
0: जी,
2: 23 भाषाओं में प्रसारण होता है आकाशवाणी का
0: जी,
2: और 184 बोलियों में होता है।
0: क्या बात है,
2: इतना विशाल है आकाशवाणी, इसकी मतलब कोई अंत ही नहीं है, अनंत है।
0: और खासतौर पे मधु जी, मुझे लगता है जब आकाशवाणी से कोई गीत प्रसारित होता है ना, अनायास कोई गीत सामने आ जाता है और सुनने को मिलता है तो उसका आनंद बहुत है। YouTube पर आप सर्च करें या अपनी लाइब्रेरी से सर्च करें तो वो मजा नहीं है, लेकिन जब अनायास से कोई गीत, अरे ये गाना मैंने बहुत दिनों से नहीं सुना और सुनने को मिल जाता, उसका आनंद ही
3: जिज्ञासा जो रहे।
0: जी जी जी, एक श्रोता हमसे लाइन पे जुड़े हैं। हेलो हेलो,
4: हाँ
0: जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
4: खातेवां से गोविंद जलोदिया बोल रहा हूँ सर।
0: गोविंद जी, स्वागत है आपका आज आकाशवाणी के 71वें दिवस पर, स्थापना दिवस पर, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: सर ये कहना चाह रहा हूँ सर, मैं बहुत पुराना हूँ सर, कार्टून का जमाना में मैंने भवन हमालो हाउस के नाम से एक चिट्ठी आती थी।
0: अच्छा,
4: जैसे में मतलब जो है करीब 40-45 साल हो गए।
0: 40-45 साल से हमारे

0: पुराने साथी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में हैं। आप उनमें से किसी से बात करना चाहेंगे?
1: हाँ सर, वो संत उनको संत वो एक
0: संतोष,
1: नाम थे। हाँ,
0: संतोष जोशी
1: ये
0: जी।
1: हाँ, उनसे मैं परिचित हूँ सर।
2: अच्छा,
0: अच्छा,
2: कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हूँ।
2: क्या चल रहा है आजकल?
1: आप
2: क्या कर रहे हैं आप वहाँ?
1: तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं सर, खाते गांव में
2: हाँ
1: कुछ भी नहीं। मतलब ये मतलब मैं 74 साल की उम्र हो रही है सर।
2: अच्छा,
1: हाँ,
2: तो
1: कल मेरा
2: क्या बहुत
1: जन्मदिन
2: ज्यादा
1: था
2: थोड़ी है 74 साल की उम्र?
0: संतोष जी तो
1: इसलिए
0: अभी
1: अपने
0: 24 के ही हुए हैं।
1: नहीं, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है उम्र।
0: जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो
1: हेलो, आकाशवाणी,
0: हेलो, नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं?
3: नर्मदे हर के
1: नवा कॉलोनी
3: साथ
1: बड़वा से प्रवीण श्रीमाली बोल रहा हूँ।
0: प्रवीण भाई, स्वागत है आपका। आप हमारे नियमित श्रोता हैं और हर स्थापना दिवस आप भी एक अलग अंदाज में मनाते हैं।
3: और अपने क्षेत्र में मना रहे हैं, कैसा मना रहे हैं
1: जी,
3: पूरा
1: बिल्कुल। यह
3: विस्तृत रूप से बतलाएं।
1: कार्यक्रम यहाँ पे बड़वा में पिंटू सेन के निवास पर यह कार्यक्रम चल रहा है और सभी श्रोता बंधु यहाँ पधारे हैं, बड़वा सनावद और ग्रामीण क्षेत्रों से। और विशेष मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में निमित भंसाली जी पधारे हैं खंडवा से।
3: तो भंसाली जी की
1: और
3: भी आवाज हमें सुनाइएगा मिमिक्री के
1: बिल्कुल
3: साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात करिए भंसाली जी से।
4: सर सर सर नमस्कार सर।
3: हाँ नमस्कार भंसाली जी, कैसा लग रहा है?
4: सर बहुत बढ़िया लग रहा है और अपने सभी श्रोताओं के बीच में बैठा हूँ और आकाशवाणी के प्रति इतना प्रेम देखकर मैं तो गदगद हो चुका हूँ।
3: और हम चाहेंगे
4: और
3: कि किशोर दा की आवाज में आप
4: हाँ,
3: कैसे मना रहे हैं, थोड़ा
4: जी,
3: एक झलक हमें भी प्रस्तुत करें।
4: मैं जरूर जरूर। तो ये सारे श्रोताओं के बीच में अगर हमारे किशोर दा होते तो सबसे पहले अपने चिर परिचित अंदाज में वो ऐसे ही कहते, जो हमेशा मंचों पर जाकर वो कहते थे कि प्यारे बंधुओं आकाशवाणी।

0: चाचा चाचियों मेरे दादा दादियों आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार।
1: हमारा भी नमस्कार।
0: अरे मैं जो यहाँ आया हूँ मतलब सनावत में कार्यक्रम में
2: जी,
0: ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है, और ज्यादा वक्त न लेते हुए ये भंसाली खंडवे वाला आकाशवाणी खंडवा से कार्यक्रम के लिए तैयार है।
2: ढोल हो जा।
3: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत
0: धन्यवाद। और आकाशवाणी को इतने प्रेम से इस दिवस को मना रहे हैं कि मैं बहुत अभिभूत हूँ, और आकाशवाणी खंडवा और इंदौर और पूरे देश भर की आकाशवाणी को, हमारे श्रोताओं को अपने साथ की, जब वो कहते हैं ना एक मुट्ठी जब भी बनती है, जब उंगली और अंगूठा मिल जाए, तो अगर अंगूठा आकाशवाणी है तो ये उंगलियां हमारे श्रोता हैं।
3: क्या बात,
0: वाह जी जी, ये बात कीजिए सर।
3: और कौन है
4: सर? पूरे बड़वा सनात के रेडियो श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत, पूरी टीम को, श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
3: जी अभी कितने साथी हैं आपके यहाँ पर?
4: जी
3: कितने साथी हैं? साथियों की लाइन लगी हुई है, कितनी संख्या होगी?
4: इतनी बहुत सारे, यहाँ 25 श्रोता है सर यहाँ पे।
3: तो जरा
4: मीरापुर टेमा से तिलोकचंद वर्मा, तिलोकचंद वर्मा भंसाली जी,
3: बात तो सुनिए एक बार, सब लोग 25 के 25 एक साथ जरा आकाशवाणी इंदौर की जय हो ये घोषणा तो करे तो आनंद आ जाएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल, सब सभी को बोलना आकाशवाणी की जय, बोलो
5: आकाशवाणी की जय,
3: जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, बहुत बहुत बधाई।
4: ये पिंटू सेन, हुकुमचंद कटारिया, विजय सोनी, दिलीप मालाकार, मंसारे जी, तिलोचंद वर्मा, बाबूलाल,
3: प्रवीण जी,
4: सेन,
3: प्रवीण जी,
4: हाँ जी बोलिए।
3: इतनी मोहब्बत आप आकाशवाणी इंदौर से करते
4: जी,
3: हैं।
4: जी जी जी जी,
3: कहीं इस चक्कर में कभी घर से परेशानी तो नहीं हो जाती है?
4: सर मैं यहाँ पे 9 बजे से आ चुका हूँ, मिसेज बोला कहाँ जा रहा हूँ, मैंने कहा आज कार्यक्रम रखा है आकाशवाणी इंदौर की स्थापना दिवस, और तो वहाँ जाना जरूरी है, तैयारी हम लोग ही करते हैं।
3: तो आज आपने डांट दिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा आज आकाशवाणी इंदौर का स्थापना दिवस
4: है। बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम तक यही पिंटू भाई के निवास पे ही रहना है।
3: चलिए चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थोड़ा पिंटू भाई से कुछ सुनवाइए,
4: पिंटू भाई से बात करना चाहता
2: हूँ। पिंटू भाई कुछ सुनाए।
3: पिंटू भाई स्वागत है आपका।
6: सर आप लोग आशीर्वाद से सब, यह बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। सर मैं एक ज्यादा मैंने एक मिनट में बात कर दूंगा। कपिल जी तिवारी हमारे साथ में, निमिति बंसाली साथ में है, बाबूलाल जी चौधरी हमारे सनावत के वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप जी गढ़वाल हमारे साथ में है, दिलीप जी माली से हमारे साथ में है, काजूराम जी मंसारे हमारे साथ में है, तिलोचंद जी डॉक्टर तिलोचंद जी वर्मा बहरामपुर से आए हैं, हमारे महेंद्र जी पंवार हैं सनावत से, रचना जी खेड़े हैं कोठी से, पप्पू जी हैं, राकेश सेन पप्पू हमारे सनावत बड़वा सोता संघ के अध्यक्ष है, हुकुमचंद जी कटरे हमारे साथ में है, विजय सोनी रोड से साथ में है, विजय जी हमारे रेडियो जो एकमात्र रेडियो सुधारने वाले एकमात्र सनावत बड़वा में है, विजय जी कर्मा हमारे साथ में है, जादूगर आवाज के जादूगर के बादशाह धर्मचंद जी निमाड़े हमारे साथ में है, केपी सोन हमारे साथ में है, दीक्षित जी हमारे साथ में है, और खेड़े जी हमारे साथ में है। ये फोन सर श्री वाली जी से।
3: क्या बात,
4: और बड़ा आकाशवाणी की जय।
7: अभियांत्रिकी प्रमुख आपको और आपके सभी 25 साथियों को बहुत बहुत बधाई।
4: जी जी जी जी जी जी,
7: नमस्कार।
8: देखिए हमारे श्रोता तो शाम तक ये स्थापना दिवस का जश्न मनाने वाले हैं,
2: और हमारे यहाँ भी मालवीय जी शाम तक का प्रोग्राम है, कुछ रूपरेखा बतला दें।
8: लेकिन अभी फिलहाल अफसोस ये कार्यक्रम जो चल रहा है इसके लिए अभी 5 मिनट बचे हैं, तो उसके लिए मुझे एक और, चूंकि आप संजीव जी बार बार मुझसे कह रहे हैं कि कोई शेर सुनाइए, तो मैं एक शेर कहना चाहूंगी अंत में, कि चाहते तो सभी हैं कि जश्न बहुत लंबा चले, बहुत देर तक हम मनाएं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा शेर है कि बुत कदे में गया, मस्जिदों में गया, रख के सजदे में सर मैंने मांगी दुआ, जो मेरे बस में था मैंने सब कुछ किया, अब खुदा ही ना चाहे तो मैं क्या करूं।
2: अब
8: वक्त की पाबंदी को तो हमें भी मानना पड़ेगा।
3: हाँ, लेकिन अभी कुछ समय हमारा बाकी है, और हम अपने जितने श्रोता और इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं उनसे बातचीत करेंगे, और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो,
9: हेलो
3: जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
9: जी सर मैं विक्रम चौधरी बोल रहा हूँ।
3: चौधरी साहब स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं?
9: सर मैं धार जिले के बगड़ी गाँव से बोल रहा हूँ सर।
3: जी बताएं आज आप किस तरह से आकाशवाणी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे?
9: सर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आकाशवाणी इंदौर को। मैं सर रोज सुबह उठते ही ना रेडियो स्टार्ट कर लेता हूँ।
3: कितनी बजे से?
9: क्या सर?
3: कितनी बजे से?
9: सर मैं उठ के जैसे जैसे मेरा खेती का काम काज है सर
3: जी,
9: तो जैसे ही मैं खेत पे जाता हूँ तो रेडियो ना मैं मतलब जेब में रख के स्टार्ट करके ही खेत पे जाता हूँ।
2: क्या बात,
9: तो चलता रहता है
3: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हेलो
1: हेलो
3: हेलो।
1: हाँ अनिल कौचाली इंदौर से बात कर रहे हैं।
3: अनिल जी स्वागत है आपका, आप भी हमारे पुराने और नियमित श्रोता हैं।
2: और अभी तक इनका लिफाफा प्राप्त होता था, अब साक्षात जुड़ रहे हैं
3: जी।
2: बोलिए कौचाली जी।
1: हेलो।
3: हाँ कौचाली जी
2: बोलिए बोलिए।
1: सबसे पहले तो आपको और आकाशवाणी इंदौर विविध भारती इंदौर की पूरी टीम को स्थापना दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं
3: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इतने साल का जो ये सफर है, क्या कहना चाहेंगे आप?
10: हेलो,
3: फोन शायद कौचाली जी का कट गया, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़े। हेलो
10: हेलो
3: जी। हेलो नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं?
10: नमस्कार जी।
3: जी अपना परिचय दें
10: जी। नवग्रह नगरी तिलकपत खरगोन से
3: मनीष निमाड़े।
10: हाँ जी मनीष निमाड़े।
2: बताइए निमाड़े जी कैसे मना रहे हैं आप अपने क्षेत्र में?
10: बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं। और हमारा प्रोग्राम थोड़ा प्रवीण जी से रिलेटेड है
2: जी।
10: और थोड़ा हमारा प्रोग्राम जो है दोपहर बाद का रखा गया है क्योंकि धूप बहुत तेज है और सारी व्यवस्थाओं में जो है जोड़कर भोजन व्यवस्था है।
2: कितने श्रोता पहुंच रहे हैं आपके कार्यक्रम में?
10: हमारे यहाँ 25 श्रोताओं का तो बिल्कुल नाम दर्ज हो चुका है
2: जी।
10: बाकी उसके टाइम जो आ जाएंगे वो होगा।
2: क्या रूपरेखा है आपके कार्यक्रमों की?
10: हम जो है कार्यक्रम में संग्रहित करेंगे कुछ चीजें ऐसी जो हमारे पुराने कार्यक्रम होते थे
2: जी।
10: उनके प्रस्तुतकर्ता कौन होते थे और उनके अनाउंसर्स कौन होते थे, फिर उनकी सिग्नेचर ट्यून क्या होती थी और कितने लोकप्रियता होती थी। वैसे मन भवन इनमें सबसे आगे है आज भी हम जानते हैं। और बहुत ही हर्ष हो रहा है।

0: मैं अपनी पुरानी दीदी के साथ बैठकर बात कर रहा हूँ, विजय राय जी हैं। मधु दीदी को बहुत बहुत चरण वंदन करना चाहूंगा।
1: धन्यवाद, आशीर्वाद आपको, हमेशा खुश रहें।
0: जी जी जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद निमाड़े जी। और अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
3: हेलो,
2: नमस्कार।
3: नमस्कार, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया बोल रहा हूँ सर।
2: पंचोलिया जी, स्वागत है आपका। आज आकाशवाणी के 71वें स्थापना दिवस पर आपका फोन कॉल लगा है, कहिए अपने मन की बात आकाशवाणी इंदौर के साथ।
3: मन की बात इम्तिहान पिक्चर 1974 विनोद खन्ना साहब की, तनुजा जी की थी, जब इंदौर आकाशवाणी पे आया था
2: जी।
3: तो संतोष जोशी जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा मेरी फिल्म में को देखना जरूर, मैंने फिल्म में काम किया है।
4: अच्छा, तो आपने देखी थी ना उस वक्त वो फिल्म?
3: अरे फिल्म देखी थी साहब, आपसे मुलाकात भी हमने की थी और विनोद खन्ना के साथ आप कॉलेज परिसर से बाहर निकलते हैं, ये भी याद है हमको।
4: अच्छा,
3: काफी याद है उस दौर की।
4: चलिए बहुत अच्छी बात है।
5: पंचोलिया जो है अपने घर पे जो है किशोर दा के जो संगीत है गाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, ताकि जो वर्तमान पीढ़ी है उनके गीतों को अमर रख सके।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, हमारे पास समय की कमी है और फिर किसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। और इस कार्यक्रम का हम समापन करें उसके पहले बहुत संक्षिप्त में मधु जी अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी?
1: अपनी तरफ से यही कहना चाहेंगे कि आकाशवाणी जिस तरह से ये 71वां स्थापना दिवस आप मना रहे हैं, ऐसे ही 100 साल तक हमारे साथी हमें याद करते रहे, हम उनके साथ मिलके इसी तरह बैठते रहे।
2: संतोष भाई,
4: मैं कहूंगी उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, हर दिन जश्न मनता रहे।
2: विजय भाई,
6: 71 साल हो गए, इसमें करीब करीब 50 साल हम उनके साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी इंदौर के साथ, तो चाहते हैं कि आने वाले जो समय है उसमें भी हम बहुत लंबे समय तक उसके साथ जुड़े रहें। और बधाइयां एक बार संजीव आपको, आकाशवाणी इंदौर को, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी को भी बधाइयां।
2: राजेश भाई,
5: और इसी प्रकार हमारे श्रोता जो है इस प्रकार के कार्यक्रमों से जुड़े रहें, प्रेम बनाए रखें, और आने वाले समय में भी हम इस तरह के कार्यक्रम और अधिक करते रहें।
7: आकाशवाणी इंदौर एक छोटे ट्रांसमीटर से शुरू हुआ, एक छोटे दायरे में था, आज स्ट्रीमिंग और ऐप के जरिए हम पूरी दुनिया में अपनी पहुंच रखते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और चलने से पहले हम आपको ये जरूर बताना चाहेंगे कि आज के इस प्रोग्राम में हमें तकनीकी सहयोग दिया सुनील जैन, राजेश जैन, अभय श्रीवास्तव, एसडी यादव, भानु अहिरवार, वैभव मंडलोई, मनोज चौहान, नीरज कुलकर्णी, स्वाति बथमा, मन्नालाल पमार, प्रकाश साहू, देवेंद्र स्वर्णकार, नानक सिंह, प्रकाश मालवी, हरीश, संजय परमार, एम के नामदेव, वंदना, डीएस जामोद, पल्लव जोशी, किरण बंग कंसोल पर हमारे साथ सहयोग कर रहे थे, वरिष्ठ उद्घोषक मुकाम सिंह चौहान और राहुल तिवारी। और इस कार्यक्रम में अब आपसे विदा लेना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि ढोल की ताप जो है एक बार फिर से उस उत्साह को प्रदर्शित करें। और ये भी हम बताना चाहेंगे कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में कंसोल पर थे हमारे कार्यक्रम अधिकारी असीम कैथवास और प्रीति छड़ीदार जी। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं पर सम्पन्न हो रहा है। 90 वर्ष का ये जो हमारा सफ़र है इसका जश्न है, और ये ढोल की थाप जो है अब हम लाइव स्ट्रीमिंग से आप सभी जुड़े हुए हैं, और यही कहना चाहेंगे कि ये उत्साह बना रहे। इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी और विविध भारती का इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे।
1: मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आप सभी की फरमाइश। लिखने वाले हैं खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। मयंक रेडियो श्रोता संघ कचई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ों में क्या यही प्यार है फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

हमें मिला महाराष्ट्र से स्वप्निल, अजय और इनकी परिवार के सदस्यों ने, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और इनके परिवार के सभी सदस्य, दंतेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा, आप सभी ने सुनना चाहा है कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

आइए आप सुन रहते हैं आप सभी की फरमाइश नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, देवरी भाटरपारा से के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। आप सभी ने सुनना चाहा है दिल का क्या कसूर फिल्म का नगमा। आवाज़ है कुमार सानू की और इस गीत को लिखा समीर ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। बठिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डांगला, हैप्पी डांगला, जयस नायक, शोभा नायक और इनकी परिवार के सभी सदस्य। आप सभी ने सुनना चाहा है एक रिश्ता फिल्म का नगमा, जिसे आवाज़ें दी उदित नारायण और अलका याग्निक ने। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकदार, नसीम, आयशा खान, हादिया आसमा, सालिबा शुएब खान, मुस्तबा रऊफ शहीद और गांधीबाग अकोला से रमेश वैशाली और इनके परिवार के सभी सदस्य, प्रमीलागंज और टोल से बलवंत राजूबाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश शर्मा और ऋषि वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है स्टूडेंट ऑफ द एयर फिल्म का नगमा, श्रेया घोषाल और विशाल दादलानी और साथियों की आवाज़ों में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया अगले कार्यक्रम की
1: आज तो पार्टी चाहिए।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।

0: श्रोतागण को मेरा नमस्कार। अब तक आपने पंचतंत्र के प्रथम दो प्रकरणों को सुना। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं तृतीय तंत्र काकोलुकियम। जैसा कि नाम से ही विदित है, ये एक काक और उल्लू की कथा है। इस तंत्र में मुख्यतः पंडित विष्णु शर्मा ने ये बताया है कि पहले विरोधी रह चुकने वाले और इस समय मित्र भाव को प्राप्त शत्रुओं का विश्वास नहीं करना चाहिए।
1: वत्सगण, घने जंगल में एक बड़ा वृक्ष था। वहां मेघवर्ण नामक एक कौवा अपने परिवार के साथ निवास करता था। उसी वृक्ष में अरिमर्दन नाम का एक उलूक राज भी जाति बंधुओं के साथ निवास करता था, और जब भी कोई कौवा उसके सामने आता उसे मार डालता। कौवा और उल्लू का जातिगत बैर जो था, कौवे ने सारे पक्षियों की सभा बुलाई।
2: मित्रों, हमारा शत्रु उत्कट और उद्यम संपन्न है। वो निरंतर सायंकाल आकर हमारे पक्ष का विनाश करता है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? हम लोगों को रात्रि में दिखाई नहीं देता और दिन में शत्रु के दुर्ग को न पहचानने के कारण उसे मार नहीं सकते। अब हमें क्या करना चाहिए, अति शीघ्र सोच कर बताएं।
1: मंत्रियों के परामर्श से मेघवर्ण ने उज्जीवी, संजीवी, अनुजीवी, प्रजीवी तथा चिरंजीवी नाम के पांचों सचिवों से क्रमशः पूछा। सभी ने अपने अपने विचार बताए। तब मेघवर्ण ने स्थिर जीवी से पूछा,
3: तात, ये कौओं और उल्लुओं के मध्य इस प्रकार का प्राणांतिक बैर क्यों हुआ?
4: एक बार सारे पक्षियों ने अपने राजा गरुड़ के विरुद्ध कहा कि अब वो गरुड़ के स्थान पर कोई दूसरा राजा चुनेंगे। सब ने तय करके उलूक राज को अपना राजा चुना। तभी एक कौवा वहां आया। इस निर्णय से उसे बड़ी हंसी आई। उसने कहा,
5: अरे भाई, ये उचित नहीं हो रहा है। एक दीवान कराल वदन का अभिषेक किया जा रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। और इस पर विचार ही क्यों करना, जब गरुड़ हमारे राजा हैं। महान व्यक्तियों का नाम ग्रहण करने मात्र से ही कभी कभार बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे चंद्रमा का नाम लेते ही खरगोश सरोवर में सुखपूर्वक रहने लगे थे।
0: किसी वन में चतुर्दंत नाम का एक हाथियों का राजा निवास करता था। एक बार वहां सूखा पड़ा, कई सालों की अनावृष्टि हुई, कई छोटे बड़े तालाब, पोखर और सरोवर सूख गए। सभी हाथियों ने मिलकर अपने राजा चतुर्दंत से कहा,
6: देव, प्यास से बहुत से गश शिशु मरणासन हो गए हैं, कुछ तो मर भी गए हैं। इसीलिए किसी ऐसे जलाशय की खोज की जाए जिसका जल पीकर ये सब स्वस्थ हो सके।
7: हाँ, मैं जानता हूं आप सब बहुत दुखी हैं। पता नहीं इंद्रदेव का

0: ओ, कब तक चलता रहेगा?
1: आप अति शीघ्र कोई व्यवस्था करें। आप जहाँ पहले निवास करते थे, क्या वहाँ कोई समतल भूमि का जलाशय नहीं है जहाँ हम सब निवास कर सके?
0: यह आपने उचित स्मरण कराया। दक्षिण की ओर कोई 200 कोस की दूरी पर एक स्थान में समतल भूमि पर ही एक अति विशाल जलाशय है जो पाताल गंगा के जल से सर्वदा परिपूर्ण रहता है। आप सब वहां चलें।
1: जैसा आप कहें प्रभु, वैसे भी इतनी दूरी को तय करने में 5 दिन तो लग ही जाएंगे। हम आज ही प्रस्थान करेंगे।
2: गजाधिपति की आज्ञा से सारे गजों ने तत्काल प्रस्थान कर दिया। 5 दिन तक निरंतर चलते रहने के पश्चात उन्हें वो जलाशय मिल गया। सभी हाथी प्रसन्न थे। सबने अपनी प्यास बुझाई। सारे दिन जलाशय के किनारे खूब आनंद लिया। उस जलाशय के चारों ओर कोमल भूमि में शशकों के असंख्य बिल बने हुए थे। गजों के पैर से कुचल जाने के कारण अनेक खरगोशों के बिल टूट फूट गए। गजों के स्वच्छंद विहार से कई खरगोश मर गए। कुछ तो अधमरे से पड़े रहे। उन गजों के चले जाने पर दुखी खरगोशों ने विचार किया।
3: हम लोग अब नष्ट हो ही गए हैं, परंतु जितने शेष हैं, उनकी तो रक्षा होनी ही चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि ये हाथियों का झुंड यहाँ प्रतिदिन आता रहेगा, क्योंकि अन्य किसी जलाशय में जल रह ही नहीं गया है।
4: ठीक कह रहे हो मित्र, हमारा विनाश सुनिश्चित है। जैसे सांप के सूंघने मात्र से व्यक्ति मर जाता है, कंस जैसा राजा हंसते हुए प्राण दंड देता है, उसी प्रकार हाथी हमें स्पर्श मात्र से मार डालता है।
3: नहीं नहीं, ऐसी बातें मत करो मित्र, हिम्मत नहीं हारते, कोई ना कोई उपाय अवश्य ही निकलेगा।
4: मुझे तो लगता है मित्र, हमें ये स्थान छोड़ देना चाहिए, अन्य उपाय रह ही क्या गया है।
3: नहीं भाई, पिता एवं पितामहों के काल से चले आए इस स्थान को सहसा छोड़ना संभव नहीं। उन्हें डराने के लिए अन्य उपाय किए जाने चाहिए, ताकि वो भयभीत होकर यहाँ फिर ना आ सकें।
4: हाँ, यदि ऐसी बात है तो उन्हें त्रस्त करने का एक उपाय है मेरे पास। हम में से कोई भी एक चंद्रमा का झूठा दूत बनकर हाथी के पास जाए और उसे रोके तो बात बन सकती है। परंतु इस कार्य के लिए वाक्पटु, रूपवान और शास्त्रों का ज्ञाता होना आवश्यक है।
3: मुझे लगता है इस कार्य के लिए आप ही योग्य रहेंगे।
4: ठीक है, ये उचित भी है। हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए इससे अच्छा कोई उपाय हो ही नहीं सकता।
2: और फिर शीघ्र गति को ही दूत बनाकर वहां भेज दिया गया। गजाधिपति के समीप पहुंचने के बाद वो एक ऊंचे स्थान पर चढ़ गया और गज को संबोधित करके बोला,
5: अरे ओ दुष्ट गजराज, बाहर निकल! इस प्रकार निशंक भाव से तुम चंद्रमा के जलाशय में क्यों आया करते हो? आज के बाद ऐसा दुस्साहस मत करना, शीघ्र यहाँ से लौट जाओ मैं कहता हूँ।
0: कौन हो तुम?
5: मैं शीघ्रगति नाम का शशक हूँ। मैं चंद्र कुंडल में निवास करता हूँ और इस समय महाराज चंद्रमा ने मुझे दूत बनाकर भेजा है।
0: अरे भाई शशक, भगवान चंद्रमा ने क्या संदेश भेजा है, शीघ्र कहो, जिससे अविलंब उसका पालन किया जा सके।
5: कल आपके समूह के साथ आकर आपने उस जलाशय में रहने वाले मेरे कुटुंबों का वध किया है। अब आप अगर जीवित रहना चाहते हैं तो कभी भी किसी भी प्रलोभन से उस जलाशय के समीप आने का प्रयास न करें, यही चंद्रदेव का आदेश है।
0: लेकिन भगवान चंद्रदेव कहाँ हैं?
5: आपके समूह द्वारा दी गई मृत्यु से बचे शेष खरगोशों को आश्वासन देने इस समय वे जलाशय में आकर बैठे हुए हैं।
0: अरे भाई शीघ्र गति, मुझे महाराज चंद्र के दर्शन करवाओ, जिससे उन्हें प्रणाम करके मैं अन्यत्र जा सकूं।
5: ठीक है, आप एकाकी चलें, मैं आपको दर्शन करा दूंगा।
0: अच्छा।
4: अभी रात्रि का समय है, जल में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है

0: मैं उसी को दिखा देता हूँ। आइए गजराज।
1: चलिए।
0: ये है महाराज चंद्र जो जल में समाधिस्थ होकर बैठे हैं। आप शांत होकर बिना कुछ कहे सुने इनको प्रणाम करके शीघ्र यहाँ से चले जाइए। यदि इनकी समाधि टूट गई ना तो आप पर ये क्रुद्ध हो जाएंगे।
1: ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ।
2: इसीलिए मैं कहता हूँ कभी कभी बड़े लोगों का नाम लेने मात्र से ही मनुष्य का त्राण हो जाता है। और भी एक बात है, यदि मनुष्य अपने उच्च जीवन की कामना करता हो तो उसे नीच आलसी कापुरुष व्यसनी तथा कृतज्ञ व्यक्ति को कभी भी राजा नहीं बनाना चाहिए। जैसे न्याय की आशा में शशक एवं कपिंजल दोनों ही विनष्ट हो जाते हैं। सुनो, मैं कभी एक वृक्ष पर निवास करता था। उसी वृक्ष के कोटर में कपिंजल नाम का एक चटक गौरा रहा करता था। सूर्यास्त हो जाने पर हम दोनों वहां आकर शास्त्र चर्चा करते। एक बार कपिंजल आजीविका के लिए अन्य चटकों के साथ धान युक्त प्रदेश की ओर चला गया। रात्रि काल तक वो वापस नहीं आया। मैं उसके वियोग में उद्विग्न होकर सोचने लगा, आज कपिंजल क्यों नहीं आया? क्या किसी पाश में फंस गया है या किसी ने उसे मार डाला? यदि वह सकुशल होता तो मेरे बिना अन्यत्र रह नहीं सकता था। कितने दिन व्यतीत हो गए, आज भी नहीं आया। अरे, उसके कोटर में ये हलचल कैसी? उसमें तो कोई घुस गया है। ये तो शशक है, उसने कपिंजल की जगह ले ली। क्या मैं उसे रोकूं? छोड़ो, अब मित्र कपिंजल क्या ही आएगा।
0: मित्र,
2: अरे कपिंजल आ गया।
0: मित्र, मैं आ गया।
2: वाह मित्र, दूसरे देश में चावल खाकर अच्छे स्थूलकाय हो गए हो।
0: अच्छा,
2: पर कहाँ रहे इतने दिन मित्र?
0: हाँ मित्र, कुटुंबजनों के साथ कुछ दिन लग गए। क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको सूचना नहीं दे पाया। परंतु मित्र, ये मेरे कोटर में कौन है? कौन? शशक? यहाँ कैसे रहते हो तुम? ये तो मेरा निवास है भैया, तुम मेरे घर के भीतर क्यों घुस आए हो? अब शीघ्र यहाँ से निकल जाओ भैया, शीघ्र निकल जाओ यहाँ से।
3: तुम्हारा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। क्यों तुम इस प्रकार अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हो? कूप, तड़ाक, देवालय अथवा वृक्ष पर जीवों का तभी तक आधिपत्य होता है जब तक वह वहाँ रहते हैं। वहाँ से एक बार हट जाने के बाद पुनः उनका आधिपत्य नहीं रह जाता। मुनियों ने यही न्याय लिखा है।
0: अरे वाह वाह वाह, यदि तुम शास्त्र को इतना ही प्रमाण मानते हो तो मेरे साथ चलो। चलो मेरे साथ, हम लोग चलकर किसी धर्मशास्त्री से ही पूछ लेते हैं। वो जिसको देगा वही इस घर का अधिकारी होगा।
2: उन दोनों के साथ न्याय देखने मैं भी चल पड़ा। इसी बीच तीक्ष्ण दंत नाम का एक विड़ाल उनके विवाद को सुनकर मार्ग में पड़ने वाली नदी के किनारे जाकर बैठ गया और हाथ में कुश लेकर नेत्रों को बंद करके अपनी भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर एक पैर से भूमि को स्पर्श करता हुआ सूर्य की ओर मुख करके धर्मोपदेश देने लगा।
4: हे प्रभु, ये संसार तत्वहीन है, प्राण भी क्षण भंगुर है। इस संसार की माया से बचने के लिए धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य भी शाश्वत नहीं होता, मनुष्य निरंतर आसन्न है। इस कारण मनुष्य को धर्म का संचय करना चाहिए। परोपकार करना पुण्यदायक और दूसरों को कष्ट पहुंचाना पापदायक होता है। हे प्रभु, सभी को सद्बुद्धि दे, जीव हत्या का निषेध कर दे।
5: अरे कपिंजल, नदी के किनारे तपस्वी महात्मा बैठे हैं, चलो इन्हीं से पूछ लिया जाए।

0: महात्मा, ये तो बिड़ाल है, ये तो हमारा स्वाभाविक शत्रु है। चलो एक काम करते हैं, इनसे ना दूर से ही पूछ लेते हैं, सन निकट जाने पर कहीं ये हम पर झपट ना पड़े।
1: हे तपस्विन धर्मोपदेशक महाराज, हम दोनों के कुछ विवाद हैं, अतः आप धर्मशास्त्र के अनुसार निर्णय दें। आपकी दृष्टि में जो दोषी होगा उसे मारकर खा जाइएगा।
2: सज्जनों, आप लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अहिंसा को ही धर्म कहा गया है। जो व्यक्ति अहिंसक जीवों को मारता है वो तो नरकगामी होता है। मैं तुम लोगों को खाऊंगा नहीं, बल्कि जय पराजय का निर्णय करूंगा। परंतु मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, दूर रहने पर तुम लोगों की बात ठीक से नहीं सुन पाऊंगा, तो उचित निर्णय कैसे दूंगा? इस कारण मेरे समीप आकर विश्वास के साथ मेरे कान में स्पष्ट रूप से सच्ची बात बता दो, ताकि उचित निर्णय देकर मैं अपना परलोक सुधार सकूं।
3: हाय रे दुर्भाग्य, शशक और कपिंजल ने उस पर विश्वास कर लिया, उसके समीप जाकर गोद में बैठ गए। बस फिर क्या था, एक को पंजे में और दूसरे को दांत रूपी आरी के बीच डालकर मार दिया। इसीलिए कहता हूं, आप लोग दीवान एवं क्षुद्र स्वामी को पाकर कपिंजल और शशक की तरह एक दिन यमलोक जाएंगे।
4: उस कौवे की बात सुनकर पक्षियों ने पुनर्विचार का सोचा। उधर उल्लू अभिषेक की प्रतीक्षा में बैठा रहा। कुछ देर पश्चात पूछने पर उसे ये पता चला कि काक ने उसके राजा बनने का विरोध किया है। वो अत्यंत क्रोधित हो गया और उसी दिन से दोनों का बैर प्रारंभ हो गया। इन बातों का विचार कर मेघवर्ण ने पूछा,
5: तात, इस परिस्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है?
6: बस अब मैं छल द्वारा शत्रु का विनाश करूंगा। जैसे बकरी को ले जाने वाले ब्राह्मण से ठगों ने बकरी को छीन लिया।
5: वो कैसे?
6: किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक बार उन्हें अपने यजमान के घर से एक बकरी मिली।
5: अच्छा।
6: वो स्थूल होने के कारण अधिक चलने में असमर्थ थी। सो ब्राह्मण ने उसे कंधे पर उठा लिया।
5: अच्छा।
6: और अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में तीन धूर्त मिले जो भूख से व्याकुल थे। वो तीनों ब्राह्मण से उस बकरी को छीनने का विचार करने लगे। तीनों थोड़ी थोड़ी दूर पर छिप गए। एक उस ब्राह्मण के पास आकर बोला,
7: अरे विप्र, लोक परंपरा के विरुद्ध ये हास्यास्पद कार्य क्यों कर रहे हो? इस अपवित्र कुत्ते को कंधे पर क्यों ढो रहे हो? कुत्ता, कुकुट तथा चांडाल तीनों अस्पृश होते हैं, क्या ये तुम्हें ज्ञात नहीं?
8: अरे तुम अंधे हो क्या जो इस अजा अर्थात बकरी को कुत्ता बता रहे हो?
7: हे महाराज, आप क्रोधित ना हो वे। अपनी इच्छा अनुसार आप जाइए, मुझे आपके कार्य से कोई प्रयोजन नहीं है।
8: ना जाने कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, अच्छी भली बकरी उसे कुत्ता दिखाई पड़ रही है। मैं तो आगे बढ़ता हूँ।
9: अरे पंडित जी, अरे, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? हो सकता है ये मरा हुआ बछड़ा आपका अत्यंत प्रिय हो, परंतु फिर भी इसे कंधे पर ढोना उचित नहीं है, ये तो अशुद्ध होता है।
8: ला एक और अंधा, क्यों भाई ये बकरी गोवत्स दिखाई दे रही है और वो भी मृत, इसकी चंचलता भी नहीं देख पा रहे हो तुम?
9: भगवान भगवान, क्रोध ना कीजिए, मैंने अज्ञानवश ऐसा कह दिया, आप जो उचित समझे करें, मुझे क्या।
8: हे प्रभु, शीघ्र मैं इस जंगल को पार कर लूं तो ही अच्छा।
9: राम राम राम राम राम राम।
10: अरे महाराज, ये तो बहुत अनुचित कार्य कर रहे हैं आप, एक गधे को कंधे पर रखकर ढो रहे हैं। गधे के स्पर्श मात्र से आपको सवस्त्र स्नान करना चाहिए। अरे अरे, इसे उतार कर फेंक दीजिए कहीं।

0: कोई देख ना ले।
1: अरे ये क्या कह रहे हो भाई, जरा ध्यान से तो देखो, बकरी है।
0: बकरी है। अरे देवता, उम्र के साथ साथ क्या आपकी नजर भी चली गई? अरे अच्छे खासे गधे को आप बकरी कह रहे हैं भला?

0: अब तो वो ब्राह्मण उस बकरी को वहीं पर रखकर भाग गया। फिर तीनों धूर्तों ने मिलकर आनंद से भोग लगाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि छल एवं कपट को जानने वाले किसी को भी ठग सकते हैं। नए सेवकों के विनय भाव से, अतिथियों के वचन से, कामिनियों के रोने से और धूर्त जनों के प्रवंचनात्मक वचनों से कोई व्यक्ति भी बिना ठगाए नहीं बचा है। परंतु दुर्बल व्यक्ति भी यदि संगठित हो तो उनसे विरोध नहीं करना चाहिए। जनसमूह अत्यंत दुर्जेय होता है।
1: तात, मुझे आदेश दे। आपका आदेश मेरे लिए पालनीय है।
0: बस साम दाम दंड और भेद को छोड़कर जो छल रूपी पंचम उपाय मैंने निश्चित किया है,
1: हाँ,
0: उसका स्वरूप बताता हूं।
1: बताइए।
2: मेघवर्ण ने स्थिर जीवी के अनुसार ही आचरण किया। उसने शत्रु पक्ष का विश्वास जीत लिया। स्थिर जीवी ने कहा था, शत्रु भी कभी कभी हितकारक हो जाते हैं। जैसे शत्रुओं की आपस में कलह करवा कर ब्राह्मण बच गया। किसी नगर में द्रोण नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। एक बार किसी यजमान ने उसे दो बछड़े दिए। उस ब्राह्मण ने उन बछड़ों का बाल्यकाल से ही लालन पालन किया। वे पर्याप्त पुष्ट हो गए। एक दिन एक चोर ने उसे चुराने की सोची।

0: ब्राह्मण के उन दोनों बछड़ों को आज रात मैं चुरा लूंगा। हाँ, वो ब्राह्मण सो रहा होगा। बाप रे बाप, ये विशाल काय, लाल बड़ी बड़ी आंखें, तीक्ष्ण दंत, शुष्क कपोल, पिंगल वर्ण, दाढ़ी मूछ, अत्यंत भीषण लगने वाला ये कौन है?
1: ए, कौन हो? किधर जा रहे हो? मैं भूखा हूँ, तुम्हें खाकर मैं तृप्त हो जाऊंगा।
0: आप कौन है? आप कौन है?
1: मैं सत्यवचन नाम का ब्रह्म राक्षस हूँ। तुम भी तो मुझे अपना परिचय दो।
0: मैं क्रूर कर्मा नाम का चोर हूँ, इस दरिद्र ब्राह्मण के दोनों बछड़ों को चुराने वाला हूँ।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो चलो, मैं भी 6 दिनों से भूखा हूँ और मेरे भोजन का समय भी हो चुका है। आज उस ब्राह्मण को खाकर अपनी उदर पूर्ति करूंगा। एक ही स्थान पर दोनों कार्य हो जाएंगे।
0: वो तो ठीक है, परंतु मैं बछड़ों को चुरा कर चला जाऊं, फिर आप इन्हें खाइएगा।
1: मूर्ख समझते हो मुझे? बछड़ों को चुराते हुए कहीं ब्राह्मण की नींद खुल गई तो मेरा यहाँ आना ही बेकार हो जाएगा।
0: और अगर इसे खाते समय कोई विघ्न पड़ गया तो मैं इन बछड़ों को नहीं चुरा पाऊंगा, इसलिए पहले मुझे बछड़ों को चुरा लेने दीजिए, फिर आप ब्राह्मण को खा लीजिएगा।
1: नहीं, पहले मैं ब्राह्मण को खाऊंगा।
0: नहीं नहीं देव, पहले मैं बछड़ों को चुराऊंगा।
1: नहीं, पहले ब्राह्मण।
0: नहीं नहीं, अगर ब्राह्मण जाग गया तो मैं बछड़ों को नहीं चुरा पाऊंगा।
2: दोनों के विवाद के कोलाहल से ब्राह्मण जाग गया। चोर ने कहा,
0: हे ब्राह्मण, ये राक्षस तुम्हें खाना चाहता है।
1: नहीं ब्राह्मण, ये चोर तुम्हारे बछड़ों को चुराना चाहता है।
0: नहीं देव, ऐसा नहीं।
1: ऐसा ही है।
2: उन दोनों की बात को सुनकर ब्राह्मण चारपाई से उतरकर जमीन पर खड़ा हो गया। सावधान होकर इष्ट देव को स्मरण करने लगा। मंत्र जप से राक्षस को और लाठी से चोर को भगा दिया। इसीलिए कहते हैं, कभी कभी शत्रु भी हितकारक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिसे हम सुनेंगे अगली बार, अगले सप्ताह, आज ही के दिन, आज ही के समय। तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक पंचतंत्र की 9वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके पूर्व सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नागरिकों से सभी प्राणियों के लिए एक साझा भविष्य बनाने में मदद करने का आग्रह किया है। निर्वाचन आयोग ने आज मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों की राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी। मतदान और मतगणना 18 जून को होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल BSF की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति BSF की अजेय शक्ति का प्रमाण है। रेल मंत्रालय ने ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्म हवाओं के थपेड़ों से लोग बेहाल हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जिलों में अगले 2 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL में आज हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। मीडियम वेव 648 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर आप हमें सुन रहे हैं। अब समय हो रहा है महिलाओं के पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महिला सभा।

स्वागत वंदन अभिनंदन प्यारी सखियों का कार्यक्रम महिला सभा में। आज आपके साथ हूँ मैं शालिनी सोनी। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज खुशी और गर्व की बात है, हम आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। 22 मई 1955 में आकाशवाणी इंदौर की स्थापना हुई और तब से लेकर आज तक हमारा और आपका प्रेम बरकरार है। आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी इंदौर की स्थापना के 71वें वर्ष पूर्ण होने की हार्दिक बधाइयां। हमारी आपकी दोस्ती का सिलसिला यूं ही बरकरार रहे और रहना भी चाहिए। बस इसके लिए ज़रूरी है आपका थोड़ा सा समय। जी हाँ, आपका थोड़ा सा समय जो आप हमारे साथ बिताएंगी। सखियों, माना कि सभी की दिनचर्या थोड़ी अलग है, थोड़ी व्यस्त है, हर कोई कहीं ना कहीं बिजी है, लेकिन दोस्तों के लिए तो समय निकाला जा सकता है ना? रिश्तों की भीड़ भाड़ में दोस्ती का जो रिश्ता है और दोस्तों का जो साथ है ना सखियों, बड़ा ही खास होता है। भागदौड़ भरी जिंदगी में दोस्तों से मिलना मानसिक शांति और सुख के लिए बेहद ज़रूरी है। तो सखियों, हम तो आपसे मिलते रहेंगे रेडियो के माध्यम से, लेकिन अपनी और जो दोस्त हैं, आपकी और जो सहेलियां हैं, उनसे मिलने की प्लानिंग कीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए, उनके साथ बस यूं ही घूमने निकल जाइए, टहलने निकल जाइए। और हाँ, अगर कोई दोस्त दूर है तो डिजिटल कनेक्टिविटी का सहारा लीजिए। और ये बात भी सच है सखियों कि तेज़ रफ्तार दुनिया में कामकाज, परिवार और अन्य जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते हुए अक्सर हम दोस्तों को नज़रअंदाज कर जाते हैं, है ना? लेकिन मित्रता तो हमारे जीवन में आनंद, साहस व भावनात्मकता साथ लाती है। और दोस्तों का साथ तनाव तो गायब कर ही देता है, साथ ही मूड भी अच्छा बना देता है सखियों। सोशल मीडिया पर सैकड़ों फ्रेंड्स होने से अच्छा है एक सच्चा दोस्त। तो सखियों, अपने अपने दोस्तों से मिलें, सहेज लें अपनी सहेलियों को और उनसे मिलते जुलते रहें, अपने आप को रिचार्ज कर लें। तो अब अपनी घड़ी की जो सुइयां हैं ना, उन्हें थोड़ा सा धीमा कीजिए और थोड़ा सा अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त चुराइए अपने दोस्तों के लिए और उनसे कहिए कि चलो आज कहीं चाय पीने चलते हैं और साथ ही गुनगुना लेते हैं ये गीत।

सखियों, अब बात भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी योजना की जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में सशक्त बनाना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। सखियों, यहाँ बात हो रही है नमो ड्रोन दीदी योजना की। जी हाँ सखियों, ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तकनीक से जोड़कर आजीविका के नए अवसर प्रदान करना। इसके तहत महिलाओं को आधुनिक कृषि के लिए ड्रोन उड़ाने और उनके रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाता है। सखियों, इस योजना के तहत लगभग 15,000 महिलाओं को कृषि कार्य के लिए ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे खेतों में तरल नैनो उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव किया जा पाएगा। और ये योजना दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए है। ये योजना हमारी ग्रामीण अंचल की सखियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। सखियों, तो अगर आप इससे जुड़ना चाहती हैं तो नमो ड्रोन दीदी योजना पोर्टल पर विजिट करें और अधिक जानकारी प्राप्त करके आप इस योजना के साथ जुड़ सकती हैं। साथियों सखियों, साथ ही आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व जैव विविधता दिवस। हर साल 22 मई को पूरी दुनिया में इस दिन को हम मनाते हैं। जी हाँ सखियों, 22 मई को हम मनाते हैं विश्व जैव विविधता दिवस। और इसका उद्देश्य पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा के प्रति जागरूक होना, पर्यावरण संतुलन में जीवों की भूमिका को समझना, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना है। सखियों, जैव विविधता को बचाने के लिए हमारे द्वारा स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करने होंगे, तभी इसका एक बड़ा सकारात्मक बदलाव हम देख पाएंगे। सखियों, और देखें ना, तेज पड़ती गर्मी इस ओर इशारा भी कर रही है सखियों कि अब हमारे प्रयास करने का समय आ गया है, नहीं तो परिणाम और भयंकर हो सकते हैं। बहनों, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दें, जल संरक्षण करें, जल के स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाएं, पक्षियों और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों से छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें। हाँ सखियों, ठान लें कि प्रकृति के लिए जो बन पड़ेगा उसे आप अवश्य करने का प्रयास करेंगी। सब कुछ सरकार के भरोसे ना छोड़ें बहनों। और आप देखें ना, आने वाली जो बारिश के दिन है ना, उसमें हम चाहें तो कम से कम 5 पौधे लगाने का प्रयास कर सकते हैं। पौधे लगाने भी हैं, साथ ही साथ हमें उनकी देखरेख भी करनी है। यकीनन बहनों, तभी हमारा जैव विविधता दिवस मनाना सार्थक होगा।

0: सखियो, अब बारी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ पल अपने लिए चुराने की, यानी खुद के साथ कुछ वक्त बिताने की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मी टाइम की, जहाँ आप अपनी पसंद का हर वो काम कर सकती हैं जो आपको खुशी देता है, संतुष्टि देता है और आपके शौक को जिंदा रखता है। अगर आप रंगों या चित्रकारी में रुचि रखती हैं ना बहनों, तो रेजन आर्ट से जुड़ सकती हैं। रेजन आर्ट रचनात्मकता की कला है। इसमें विभिन्न रंगों के पिगमेंट और टेक्सचर को मिलाकर लेयरिंग या एम्बेंडिंग के साथ प्रयोग किया जाता है। इसका शुरुआती निवेश 2000 से 3000 रुपये तक का ही होता है। एक बिगनर स्टार्टर किट के साथ आप कोस्टर, कीचेन, छोटे छोटे सजावटी सामान आसानी से बना सकती हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो घर के लिए या फिर तो व्यावसायिक रूप से इसके साथ जुड़ सकती हैं। रेजिन तकनीकों को समझकर, पोर्टफोलियो बनाकर और उचित मूल्य निर्धारित कर अपने उत्पाद का व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं सखियो। इसमें आपको 50% से 100% तक का मुनाफा हो सकता है। और इस तरह सखियो, आप अपने पसंद के काम के साथ साथ अपने शौक को भी जिंदा रख सकती हैं और साथ ही साथ लाभदायक उद्यम में बदलकर लाभ भी कमा सकती हैं। आप अपना जो समय है उसके साथ साथ पैसे भी बना सकती हैं, है ना सखियो? तो अब देखिए, प्रयास करने में क्या मुश्किल है, एक बार आप प्रयास करके तो देखिए। और फिलहाल अब हम बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में, और आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वार्ता। इसका विषय है विकसित भारत 2047 में के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं रेणु पौराणिक। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: सादर नमस्कार बहनों, वर्ष 2047 भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष है। 21 वर्ष पश्चात सन 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह केवल नारा या आह्वान नहीं है, यद्यपि यह एक संकल्प है जो देश के सामूहिक और हर व्यक्ति की प्रतिबद्धता से पूर्ण होगा। यह आगे बढ़ने का अवसर है जिससे भारत विश्व के अग्रणी देशों में स्थान बना सके। लक्ष्य है नया, सशक्त और विकसित भारत। इसमें युवाओं की भागीदारी को युवाओं की आवाज पहल के माध्यम से सम्मिलित किया गया है। समावेशी विकास के अंतर्गत निर्धनता 1.4% से कम करना और महिला कार्यबल भागीदारी 50 से 70% तक बढ़ाने का उद्देश्य है।

12 जनवरी 2026 को विवेकानंद जयंती के अवसर पर विकसित भारत के इवेंडर चैलेंज के विनर युवाओं को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आप योजना करके अपने राज्य को विकसित करने के लिए डायलॉग आरंभ करें और थोड़े समय के बाद डिस्ट्रिक्ट को भी आगे ले जाएं। थिंक टैंक थिंक व्यू बन जाएगा। वर्तमान में भारत अमेरिका चीन और जर्मनी के पश्चात विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत में पिछले 10 वर्षों में बैंकों में फंसे कर्ज में 3.5% की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें भारत दुनिया में सबसे आगे है। रेटिंग एजेंसी अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार 2047 तक देश की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन तक हो सकती है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 13.5 लाख रुपए हो जाएगी। EY के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में भारत की उच्च शिक्षा में लगभग 49% छात्राएं हैं, अर्थात भविष्य में महिलाओं की कार्य बल में भागीदारी बढ़ने वाली है। भारत की विकास दर आने वाले कई वर्षों तक 7 से 8% या और अधिक बनी रहने की संभावना है। ब्याज दरों में कमी आना भी एक बड़ा बदलाव है। अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण हो रहा है। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इक्विटी मार्केट बन चुका है। तरुण इंडिया की 2025 की रिच लिस्ट में अरिस्टा नेटवर्क कंपनी की CEO जयश्री उल्लास शीर्ष स्थान पर है। वह सेल्फ मेड वुमेन के तौर पर उभरी है। बहनों, मेड इन इंडिया की विचारधारा को टेक में भी अपनाने का अवसर आ गया है। AI इंस्पेक्ट पर शिखर वार्ता की मेजबानी भारत 15 से 20 फरवरी के मध्य करेगा। इन वार्ता बैठकों का उद्देश्य शीघ्रकालीन परिवेक्ष में AI के खतरों और प्रभावों को लेकर संस्थाओं और नियमों का निर्माण करना और उन पर वैश्विक सर्वसम्मति बनाना है। वर्क इमेजिंग सर्वे के अनुसार भारत में 62% कर्मचारी अपने रोजमर्रा के काम में जनरेटिव AI का उपयोग कर रहे हैं। भारत ने अपना पहला स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम बनाया है। इससे विदेशी चिप पर निर्भरता कम होगी। कल्याणी रामदुर्गम भारतीय मूल टेक प्रोफेशनल है। पेमेंट सेवाओं का गलत उपयोग आतंकी या संदिग्ध नेटवर्क न कर सके, उनके कार्यों के कारण उन्हें फोर्स की अंडर 30वीं सूची में सम्मिलित किया गया है। विकसित भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा आर्य ब्रिज बना है, जिससे आवागमन सुगम हो गया है। केरल शिक्षा के क्षेत्र में भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य बन गया है। केरल का मॉडल अन्य राज्यों के लिए उपयोगी रहेगा। आज भी देश में लगभग 5.30% जनसंख्या अत्यधिक गरीबी में है। भारत सन 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय स्वदेशी तकनीक नए विचारों और सुधारों के द्वारा सेना को भविष्य की तैयार सेना बना रहे हैं। तीनों सेनाएं पूर्ण परिचालन तत्परता के साथ सशक्त रूप से आगे बढ़ रही है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट रैंकिंग में भारत दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण TCGS समुद्र प्रताप गोवा में कमीशन किया है। प्रलय एक स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका हाल ही में DRDO ने सफल परीक्षण किया है। बहनों, भारत में महिला विकास में सहायक कई सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं संचालित है। महिला सशक्तिकरण हेतु पुरुषों के समान वेतन की शासकीय नीति एवं कानून, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, रोजगार के लिए कौशल उन्नयन ट्रेनिंग प्रोग्राम, महिला अधिकारिता योजना, महिला समृद्धि योजना, डिजिटल सशक्तिकरण के लिए डिजिटल लाड़ो जैसी पहल सम्मिलित है। ये आर्थिक सहायता, ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। स्टार्टअप इंडिया महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए इकोसिस्टम प्रदान करता है। महिला हेल्पलाइन 1930 पर 24 घंटे हिंसा प्रभावित महिलाओं हेतु संचालित है। महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक ऋण का रियायती ब्याज दरों पर प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास हेतु किए गए प्रयासों के तहत भारतीय
रेल वर्ष 2025 ने रेल सुरक्षा बल द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के उद्देश्य से बना ऑपरेशन

0: मेरी सहेली प्रभावी रहा। इस अभियान में पश्चिम रेलवे ने लगभग 1,70,000 महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान सहायता और सुरक्षा प्रदान की है। यात्रा ट्रेनें एवं रेलवे परिसरों में बच्चों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन नन्हे परिश्ते चलाया गया, जिसके तहत 714 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। महिलाओं के प्रति समाज में दृष्टिकोण में भी बदलाव आ रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की मनोवैज्ञानिक डेबोरा हिल कोन ने शोध में पाया कि लगभग 90% पुरुष समानता, समान और गैर हिंसक मूल्यों में विश्वास रखते हैं और यही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। केवल 7-8% पुरुषों में महिलाएं कमजोर होती हैं, ऐसी रूढ़िवादी सोच मिली। भारत में भी महिलाओं के प्रति विचारधाराओं में तेजी से परिवर्तन होते हुए देख रहे हैं। देश की 7.5 करोड़ कामकाजी महिलाएं हैं। वर्ष 2019 से 2024 के मध्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिला सदस्यों की क्रेडिट आधारित आय में लगभग 300% की वृद्धि हुई है। महिला समूहों को दिए गए कर्ज का रिकवरी रेट 96% पाया गया है। 5 वर्षों में इनका पोर्टफोलियो 2 गुना हो गया है। इन सबसे प्रतीत होता है कि महिलाएं वित्तीय मामलों में बेहद जिम्मेदार और अनुशासित उदार करता है। महिलाएं धन प्रबंधन में पुरुषों से आगे है, पर निवेश में उनका हिस्सा 30% से भी कम है। 84% महिलाएं घर परिवार की सहमति के बाद ही वित्तीय निर्णय लेती हैं। बैंकिंग, बीमा और फाइनेंशियल सर्विस इनकी प्रासंगिकता के साथ प्रोडक्ट लाए तो इनकी भागीदारी बाजार की दिशा बदल सकती है। खेल कूद के क्षेत्र में देखें तो महिला खिलाड़ी अब खेल ही नहीं रही है, बल्कि स्टेडियम पर पुरुषों से अधिक दिखाई देती है। शूटिंग और तीरंदाजी जैसे खेलों में भारत के कुल गोल्ड मेडल में महिलाओं की भागीदारी 65% रही है। 19 वर्षीय शूटर रुचि सिंह ने इस वर्ष वर्ल्ड कप में 5 गोल्ड मेडल जीते। असंभव को संभव करने वाली 18 वर्षीय पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। भारत की महिला कबड्डी टीम ने बांग्लादेश में ताइवान को हराकर वर्ल्ड कप जीता। भारत को खेलों में विश्व विजेता बनाने हेतु युवा बालिकाओं की भागीदारी प्रमुख है। भारतीय मूल की पूर्व अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जून 2023 में अपनी तीसरी अंतरिक्ष यात्रा में 286 दिन स्पेस में रही। इस मिशन में उन्होंने महिला द्वारा सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया। अन्य क्षेत्रों में प्रांजलि अवस्थी ने 16 वर्ष की आयु में 100 करोड़ का डेल्वी AI स्टार्टअप बनाया। ये सभी बालिकाएं एवं महिलाएं वो मील का पत्थर है जो 2047 के भारत को हीरा बनाकर विश्व में जगमगाएंगी। उपन्यासकार चेतन भगत कहते हैं कि आज की दुनिया में हम अल्ट्रा हार्ड पावर के दौर में जी रहे हैं। भारत के लिए हार्ड पावर का निर्माण राष्ट्रीय प्राथमिकता होना चाहिए। यह मूलतः 2-3 स्रोतों से आता है। अर्थव्यवस्था विज्ञान और आधुनिकता के संगम पर अग्रसर होता विकसित भारत सन 2047 में वैश्विक मंच पर प्रभावशाली राष्ट्र होगा। सन 2047 के भारत निर्माण में निश्चित ही महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर ही होगी। विकसित भारत का संकल्प स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण होने पर एक नए युग का सूत्रपात करेगा। धन्यवाद।
1: सखियो, अभी हम सुन रहे थे वार्ता विकसित भारत 2047 के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी रेणु पौराणिक। और अब चलते हैं सखियो, कुछ कर लेते हैं काम की बातें। जी हाँ सखियो, काम की बातों में आज बात होगी फलों को खाने के सही तरीके के बारे में। सखियो, हम सभी जानते हैं कि फल विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं। इन्हें खाने से हमारा स्वास्थ्य है जो बहुत ज़रूरी है हमारे खाने के लिए भी और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। पर कभी कभार जाने अनजाने में हम इन्हें गलत तरीके से खा लेते हैं। तब क्या होता है सखियो कि इनकी जो पौष्टिकता है उसमें कमी आने लगती है। तो आइए जानते हैं कि फलों को खाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो ये जान लें सखियो कि खट्टे और मीठे फलों को एक साथ नहीं खाना है, क्योंकि खट्टे फल में अम्लीय गुण होते हैं और जब इन्हें हम मीठे फलों के साथ खाते हैं तो हमारी पाचन संबंधी जो परेशानियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। एक बात और सखियो, खट्टे फल का सेवन रात में भी नहीं करना है। यदि हम कर लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या हो जाती है और नींद ना आने की दिक्कत पैदा हो जाती है। बेहतर होगा कि फलों को

कुछ फलों पर हम कुछ ना मिलाएं। जैसे कभी कभार हम क्या करते हैं कि नमक या चाट मसाला डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है बहनों कि इसका स्वाद तो बढ़ जाता है पर नमक डालने से ये पानी छोड़ देते हैं, और पानी जैसे ही छूटता है तो इनका खनिज युक्त जो पानी है वो निकल जाता है और पौष्टिकता में कमी आ जाती है। उचित समय पर फलों को ना खाएं, अनुचित जो समय होता है जैसे रात के समय ना खाएं, दोपहर में ना खाएं। फलों को खाने का सही समय होता है सखियों सुबह नाश्ते के समय, या फिर खाली पेट आप इन्हें ले सकती हैं। फलों को मौसम के अनुसार ही लेना चाहिए। फलों को खाने के बाद कम से कम 45 मिनट या एक घंटे तक कुछ ना खाएं, तभी फलों का लाभ हमें मिल सकता है। ध्यान रखिए कि कभी काटने के बाद फलों को नहीं धोना है, बल्कि धोकर अच्छी तरह से साफ कर कर ही फलों को खाना है। तो देखिए ना सखियो, किसी भी चीज़ का फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम उन्हें जो तरीके हैं उनको अपनाने के, उन्हें सही ढंग से अपनाएंगे। तो ये तो थी कुछ काम की बातें

और सखियों, अब चलने का समय हो रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर प्रीति छड़ीदार, और अब दें अनुमति अपनी सखी शालिनी सोनी को। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। अब आप अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुनेंगे।
1: प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत के आरंभ में लीजिए सुनिए राम कुमार प्रजापति व साथियों के स्वर में ये विवाह गीत।
2: कि बिटिया हमें पृथुमई गणेश ओ शारदा से सी उपमा बिटिया

बिटिया बिटिया से हीन होते जो दीन रहते मलिन होती बिटिया बिटिया है धन्य अनुपम अनन्य प्रतिभा प्रसन्न पावे बिटिया बिटिया है धन्य अनुपम अनन्य प्रतिभा।

बिटिया बिटिया है धन्य अनुपम अनन्य प्रतिभा प्रसन्न पावे बिटिया बिटिया है धन्य अनुपम अनन्य।

शकुंतला राजपूत के गाए इस विवाह गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे अटल शुक्ला के गाए भजन।

0: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: बड़े अच्छे लगते हैं
3: क्या
2: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
3: और
1: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
4: इस समय आप हैं हमारे साथ।
5: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ। मालवा की शान
4: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: क्या?
1: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
0: और
2: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का पहला गीत हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। आवाज मोहम्मद रफी की है, बोल नीरज के हैं और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म शक्ति का गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इसे संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
2: धरती

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में बीएसएफ के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बीएसएफ ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस आयोजन में बिग कैट और जैव विविधता संरक्षण पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत में चीता पुनर्स्थापन अभियान पर भी विशेष प्रस्तुति इस कार्यक्रम में दी गई। इसके साथ ही इंडियाज बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2026 सहित कई प्रकाशनों और डिजिटल पहलों का विमोचन भी हो रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि
1: धरती पर 30% भाग जो है वो वनों से आच्छादित, भारत में भी लगभग 23% वन आच्छादित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने दुनिया के सामने

0: लक्ष्य रखा था कि हम 3.5 बिलियन टन कार्बन श्रिंक के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। भारत ने उसको 90% लक्ष्य को हासिल कर लिया है और हमने जो दुनिया को अपना टारगेट दिया है 2030 तक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हम निश्चित रूप से उसको हासिल करेंगे।
1: धार की भोजशाला में आज शुक्रवार यानी जुमे के दिन हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग देवी मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई और फूलों से सजे परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। भोपाल में 12 मई को हुई त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को सीबीआई को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने सीबीआई को पूरे प्रदेश में जांच के अधिकार भी दे दिए हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे। श्री सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं कल सुबह श्री सिंधिया नक्षत्र वाटिका शिवपुरी में कार्यक्रम के बाद गुना के लिए रवाना होंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम लागू करने जा रही है। इसके लिए आमजनों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्तावित कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 का मसौदा gad.mp.gov.in पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या हितधारक 5 जून 2026 तक अपने सुझाव वेबसाइट मेल sogad1@mp.gov.in पर कर सकता है। अब रुक करते हैं खेलों की खबर का। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। इनमें गोलकीपर आयुष रजक, डिफेंडर अंश भौत्रा और करण गौतम, मिडफील्डर अभी मानिकपुरी और फॉरवर्ड सिद्धार्थ बेन तथा गाजी खान शामिल हैं। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में जनभागीदारी सप्ताह एवं गरिमा उत्सव के तहत ग्राम कानोड़ में 15 उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किए गए। शिवपुरी जिले में ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी के द्वारा 13 दिवसीय कृषि उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम का कल समापन हुआ। और आगरमालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर के प्राचीन कमलकुंड से 7 कछुओं को कल वन विभाग द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित जलाशय में छोड़ा गया। वहीं आईपीएल में कल रात अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई को 89 रनों से हराया। आज शाम हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला खेला जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और IPL क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी, नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले 1 दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 1 वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है, वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
3: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की एक एक सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की एक एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में

0: पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
1: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। ये याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
2: आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
0: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ

0: राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
1: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश, कुर्बानी। इस फिल्म का गीत सुनिए नाजिया हसन की आवाज में। बोल इंदीवर के हैं और संगीत है बिद्दू का। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। ग्राम संदलपुर ग्वालियर से सादिक राम यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी। साथ ही शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और कृष श्रीवास्तव की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कुर्बानी का ये गीत।

मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटेई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से ही दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लबी, आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले के स्वर में फिल्म नमक हलाल का गीत। गीत लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में लीजिए अब सुनिए शरण प्रभाकर और बप्पी लहरी की आवाजों में फिल्म अरमान का गीत। बोल अनजान के हैं और संगीत है बप्पी लहरी का। पसंद आप सभी की। ग्राम महसवाड़ी महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय। ग्राव फ्रांसी हांसी शहर से राजू मिगलानी।

महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी की पसंद है आशा भोसले के स्वर में फिल्म डॉन का ये गीत सुनने की। इस गीत को लिखा है इंदीवर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। लीजिए सुनिए।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत लीजिए, सुनिए फिल्म हथकड़ी से। आवाज़ आशा भोसले और साथियों की है। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया है बप्पी लहरी ने। पसंद भेजी है आप सभी श्रोताओं ने। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने, साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की सबकी साझा जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में BSF के अलंकरण समारोह में उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद बल ने देश का गौरव बनाए रखा है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट इवेंट हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। धार की भोजशाला में आज शुक्रवार हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को भोजशाला को वाग देवी का मंदिर करार दिया था, जिसके बाद शुक्रवार की नमाज पर रोक लग गई है। दोपहर 1 बजे गर्भगृह में महाआरती हुई। भोपाल में 12 मई को हुई ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच अब CBI करेगी। प्रदेश सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। कटारा हिल्स थाने में दर्ज दहेज मृत्यु के इस मामले को CBI को सौंपा गया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज प्रदेश के दौरे पर हैं। वे रात में 8 बजे अशोकनगर पहुंचेंगे। श्री सिंधिया वहां जैन तीर्थ थुबोन में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आज से 24 मई तक प्रदेश के 7 जिलों के दौरे पर हैं। वे गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर ग्रामीण, निवाड़ी, छतरपुर और सतना में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति है। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुन सकेंगे शाम 7:02 पर। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीत, आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। समय याद रखिएगा शाम 7:02। रात 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में कार्यक्रम खेल जगत, सुनिएगा रात 9:30 पर। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे U18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2026, इस विषय पर वार्ता, वार्ताकार हैं देवेंद्र खुराना। रात 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और रात 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पंडित राजन साजन मिश्र का राग यमन में ख्याल गायन। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन

सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। सांध्यकालीन प्रसारण सभा में अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर। यह है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, आरंभ हो रही है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और आइए हम आपको सुनवाते हैं युवा श्रोताओं का पसंदीदा प्रोग्राम युवाणी।

0: आवाजें बदलती रहती हैं, चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो पीढ़ियों का हिस्सा बन जाती हैं।
1: आज का दिन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं उस आवाज का उत्सव जिसने लोगों को सिर्फ खबरें नहीं दी बल्कि धड़कनों को जोड़े रखा।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की उस धरोहर की जिसने गांव की चौपाल से लेकर शहरों की बालकनी तक हर जगह अपनी पहचान बनाई,
1: जिसकी सुबह कभी भजन से शुरू हुई तो शाम गीतों, कविताओं, खबरों और कहानियों से सजी।
0: श्रोताओं, आज आकाशवाणी इंदौर अपने 71 वर्षों का गौरवशाली सफर पूरा कर रहा है और इसी के साथ इस वर्ष देश की अपनी आकाशवाणी भी 90 वर्ष पूरे कर रही है।
1: और शायद यही वजह है कि आकाशवाणी सिर्फ एक प्रसारण सेवा नहीं बल्कि लोगों की यादों, भावनाओं और भरोसे का हिस्सा बन गई है।
0: किसी ने इसे खेतों में काम करते हुए सुना, किसी ने पढ़ाई करते समय, तो किसी ने सफर में या रात की खामोशी में।
1: 71 वर्षों से आकाशवाणी इंदौर भी इसी अपनेपन के साथ मालवा की आवाज़ बनकर लोगों के दिलों तक पहुंच रहा है और आज इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनकर सच में हमारे लिए बहुत गौरव और खुशी महसूस होती है।
0: तो चलिए इसी गर्म जोशी और अपनेपन के साथ, मैं हूँ तनिष्का
1: और मैं हूँ अपर्णा, आपका स्वागत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम बात करेंगे आकाशवाणी के अब तक के सफर की
0: और साथ ही सुनेंगे श्रोताओं के अनुभव, जानेंगे कि आखिर रेडियो उनकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना।
1: लेकिन तनिष्का, हर दिन की तरह युवाणी कार्यक्रम का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि है आज के प्रश्न, वो हम हमारे श्रोताओं से पूछ लेते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो ने आधिकारिक रूप से आकाशवाणी ये नाम कौन से साल में अपनाया था?
0: और आज का दूसरा प्रश्न ये है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है?
1: तो दोस्तों, जल्दी से इनके उत्तर आप ढूंढ कर रखिएगा और अंत में जब हम इसका उत्तर आपको देंगे तो आप उससे मिलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर।

0: बड़ी ताकत रही है। जब देश आजादी के बाद नए सपने देख रहा था, तब आकाशवाणी लोगों तक जानकारी, संस्कृति, संगीत और उम्मीद लेकर पहुंची।
1: दोस्तों, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के रूप में शुरू हुआ ये सफर, आगे चलकर आकाशवाणी बना, और फिर ये सिर्फ एक माध्यम नहीं रहा बल्कि करोड़ों लोगों की आदत, भरोसा और भावनाओं का हिस्सा बन गया।
0: और सबसे खूबसूरत बात, तकनीक बदलती रही, दुनिया मोबाइल तक पहुंच गई, लेकिन रेडियो की आवाज़ आज भी लोगों के दिल तक उसी अपनेपन के साथ पहुंचती है।
1: खेती किसानी से लेकर शिक्षा तक, देशभक्ति गीतों से लेकर साहित्यिक कार्यक्रमों तक, और फिर युवाओं की आवाज़ बना युववाणी।
0: और सच कहे तो कितने ही लोगों की आवाज़ की शुरुआत यहीं से हुई, और इसी खूबसूरत सफर का एक अहम हिस्सा रहा है हमारा अपना आकाशवाणी इंदौर,
1: जो 71 सालों से, जी हाँ दोस्तों, 71 सालों से मालवा की मिट्टी की खुशबू, यहाँ की बोली, यहाँ का संगीत, यहाँ के लोगों की भावनाएं लगातार लोगों तक पहुँचाता रहा है।
0: और शायद यही वजह है कि जब हम आकाशवाणी के 90 वर्षों की बात करते हैं तो उसमें आकाशवाणी इंदौर जैसी अनगिनत आवाज़ों की मेहनत, अपनापन और यादें भी शामिल होती है।
1: तो आज के इस कार्यक्रम में उन तमाम आवाज़ों, एहसासों और श्रोताओं को सलाम है जिन्होंने वर्षों से आकाशवाणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर रखा और रेडियो के इस खूबसूरत रिश्ते को अपनापन, भरोसा और प्यार से जीवित रखा।

0: और दोस्तों, अब वक्त है आज के कार्यक्रम के सबसे खास हिस्से का, क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं हमारे अपने श्रोता, जिनकी यादों और अनुभवों में आज भी आकाशवाणी वैसे ही बसा हुआ है। तो आइए सुनते हैं कुछ ऐसे ही दिल से जुड़े अनुभव।
1: युवाणी के सभी रसिक रेडियो श्रोताओं को कंवर कॉलोनी बड़वा जिला खरगोन से प्रवीण श्रीमाली का नर्मदे हर सादर नमस्कार। आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर रही है, साथ ही मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर 22 मई को अपना 71वां स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर मेरी ओर से समस्त आकाशवाणी परिवारजनों, रेडियो श्रोताओं, इष्ट मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, बधाइयां। मैं यहां बताना चाहता हूं कि आकाशवाणी इंदौर केंद्र से मैं विगत 40 वर्षों से निरंतर जुड़ा हुआ हूं। इस लोकप्रिय केंद्र द्वारा हम श्रोताओं को नित नए कार्यक्रमों की सौगात दी है। आशा करता हूं आगे भी यह सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। वैसे युवाणी के अंतर्गत गीतों भरी कहानी, युवा तरंग, एक ही फिल्मों से शीर्षक संगीत, फोनिंग कार्यक्रम आदि मुझे बहुत पसंद आता है। इंदौर केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक जी का यहाँ मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिनके आने के बाद कार्यक्रमों में बहुत सुधार आया है। पाठक जी द्वारा प्रति बुधवार प्रसारित होने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम आपका पत्र का सीधा प्रसारण किया जाता है, जो काबिल तारीफ है। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नर्मदे हर।
2: नमस्कार, मैं खरगोन से श्रीमती रचना राजेश खेड़े। सर्वप्रथम आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है, इस प्रसन्नता के क्षणों के साथ साथ ही हम अपने मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर का 22 मई को 71वां स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। इसलिए समस्त आकाशवाणी परिवार एवं श्रोता बंधुओं को दिल की गहराइयों से ढेरों शुभकामनाएं, बधाई। वैसे तो मैं लगभग 25 वर्षों से आकाशवाणी की नियमित श्रोता रही हूं और सारे प्रोग्राम सुनती हूं, लेकिन विशेष मुझे जो प्रोग्राम पसंद है वो युवाणी है। इसके अंतर्गत मुझे एक ही फिल्म से जो गीत सुनाए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, साथ ही गीतों भरी कहानी, फोनो फ्रेंड, और साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत में जो दो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को सोचने के लिए हमें पर्याप्त समय दिया जाता है और अंत में उनका जवाब भी दिया जाता है। तो जहाँ यह प्रोग्राम मनोरंजन तो हमारा करता ही है, साथ ही साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ाता है। तो मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक बातें भी हमें सुनने को मिलती है। तो हमारा आकाशवाणी इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रगति करता जाए और मनोरंजन के साथ साथ हमारा ज्ञान भी बढ़ाता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी आकाशवाणी परिवार एवं श्रोतागणों को ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद।
3: सर्वप्रथम आप सबको आनंद जोशी का यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार एवं बच्चों को

0: फिर सारा आशीष। सर्वप्रथम मैं इंदौर आकाशवाणी जो 22 मई को अपनी स्थापना दिवस मनाने जा रहा है, मित्रों सन 1955 से यह सतत अपनी सेवाएं बहुत ही सुंदर ढंग से हम सुधी श्रोता के समक्ष पेश करता आ रहा है। कई यादगार यादें हमारी इससे जुड़ी हुई है। मैं आकाशवाणी इंदौर परिवार के समस्त सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। आकाशवाणी के 90 वर्षों का यह सफर केवल प्रसारण का इतिहास नहीं, हमारे देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और मार्मिक भावनात्मक यात्रा का जीवंत उदाहरण है। साथियों, अपने आरंभ से लेकर डिजिटल युग तक रेडियो आकाशवाणी ने हर पीढ़ी को अपनी आवाज बनकर देश के कोने कोने तक अपनी ख्याति का लोहा मनवाया है। आकाशवाणी का एक बहुत ही चर्चित कार्यक्रम है जिसका नाम है युववाणी। जी हाँ दोस्तों, जब शाम के 5 बजे हर रेडियो का सुधी श्रोता इसकी धुन सुनता है तो तरोताजा हो जाता है। हाँ साथियों, ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, क्योंकि बड़े इंतजार करता है शाम होने का, संध्या होने का और युवाणी कार्यक्रम का। इंदौर आकाशवाणी का परिवार इसके लिए न केवल टेक्नीशियन की टीम बल्कि समस्त उद्घोषकों को, युवा उद्घोषक हो चाहे वरिष्ठ उद्घोषक हो, जो अनुभव का लाभ नए नए उद्घोषकों को दे रहा है, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा भी करता हूं कि आने वाले समय में एक ऐसी टीम तैयार हो जो न केवल इस केंद्र को ऊंचाइयों पर पहुंचाए बल्कि रेडियो श्रोताओं के दिलों में छा जाए। जी हां साथियों, युवाणी के युवा तरंग हो, एक ही फिल्म की कहानी हो, एक दिन का होस्ट, अभी जो बड़ा चर्चित कार्यक्रम रहा है ये वाला, जिसे सजल जैन जी ने बहुत उत्कृष्ट ढंग से, पत्रकारिता विभाग की यह छात्रा उस दिन छा गई थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह पहली बार किसी कार्यक्रम को होस्ट कर रही है, वो भी आकाशवाणी पर सीधे लाइव, बड़ा मजा आया उस दिन। साथियों, कई विषय विशेषज्ञों पर की वार्ता, ऐसे दिवस आते हैं जिस पर युवाणी कार्यक्रम विषय विशेषज्ञों को भी हमें बराबर उनके द्वारा, उनकी वार्ता के द्वारा हमसे मिलाता है, फिर वह शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, व्यवसायिक हो, या फिर युवाओं के रोजगार से, या फिर कृषि के क्षेत्र से किसान भाइयों को से संबंधित हो, सभी को बराबरी से अपने इस कार्यक्रम में स्थान देता है। मैं इंदौर आकाशवाणी परिवार के समी वरिष्ठ एवं उभरते हुए नए उद्घोषकों को रेडियो की सुधी श्रोता होने के नाते आनंद जोशी की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं आने वाले समय में हम सबको आप यूं ही मनोरंजित करते रहे, यही मेरी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और सच कहे अपर्णा, तो श्रोताओं की बातें सुनने के बाद एक चीज़ बहुत खूबसूरती से हमें यहाँ महसूस हो रही है कि आकाशवाणी को सिर्फ सुना ही नहीं गया बल्कि लोगों ने इसे जिया भी है।
2: बिल्कुल सच कहा तनिष्का, कितना खूबसूरत लगता है ये जानकर कि आकाशवाणी आज भी लोगों की यादों और भावनाओं में उसी गर्मजोशी के साथ मौजूद है। और शायद यही सबसे बड़ी उपलब्धि भी है कि आवाज़ों को ये रिश्ता आज भी लोगों के दिलों तक वैसे ही पहुँचता है। नहीं,
1: बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं।

0: तनिष्का, हमने अभी अभी हमारे श्रोताओं की बातचीत सुनी. उन्होंने उन्हें आकाशवाणी कैसा लगता है, आकाशवाणी का यहाँ तक का सफर उन्होंने किस तरह से देखा है, ये उन्होंने साझा किया.
1: बिल्कुल.
0: एक चीज तुमने नोटिस की कि हमारे श्रोताओं जो हमारे पुराने साथी है, पुरानी जनरेशन है, वो रेडियो को एक तरह से खबरों का सोर्स मानती आई है. रेडियो ने उन्हें हमेशा शिक्षा प्रदान की है, खबरें प्रदान की है, ज्ञानवर्धक बातें उनसे की है. लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रेडियो की जगह धीरे धीरे AI और मोबाइल फोन्स लेता जा रहे हैं. नहीं,
1: बिल्कुल.
0: इसी कड़ी में और इसी बात पर वार्ता के लिए आज हमारे पास एक खास सेगमेंट है. हमारे श्रोताओं के लिए एक वार्ता हम प्रस्तुत कर रहे हैं श्रोताओं, जिसका विषय है भारत में AI का विश्लेषण, और वार्ताकार है मनोज कुमार श्रीवास. तो चलिए सुनते हैं.
2: सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, पहले कहते थे कि यह विज्ञान का युग है, फिर आया कंप्यूटर का युग, और उससे आगे बढ़कर आज वर्तमान में चल रहा है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग. दोस्तों, हम कह सकते हैं कि आज के इस समय में हम मानवता के सबसे एडवांस दौर में जी रहे हैं, जहां विज्ञान, कंप्यूटर और AI का आपसी तालमेल मनुष्य को नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है, जहां विज्ञान ने हमें एक से बढ़कर एक आविष्कारों से परिपूर्ण किया है. वहीं आगे चलकर जब कंप्यूटर कोडिंग और कंप्यूटर मॉडलिंग ने AI को बनाकर प्रस्तुत किया, तो यह हर क्षेत्र में क्रांतिकारी रूप से उभर कर सामने आया है. आज जब हम बात करते हैं AI की, तो आधे से ज्यादा लोग इसे जानकर उत्साहित होते हैं, तो आधे से ज्यादा लोग डर से जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यह उपयोगी नजर आता है और कुछ को अभी भी इस पर संशय है. दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि AI का हिंदी में अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और अगर बात बुद्धि की जाए तो ये सामान्यतः जीवधारियों में ही पाई जाती है, निर्जीवों और मशीनों में नहीं. परंतु आज के तकनीकी युग में अब हर छोटे बड़े उपकरण में AI को जोड़ दिया गया है. आज चिकित्सा के क्षेत्र में AI कैंसर जैसी घातक बीमारी की पहचान डॉक्टर से भी पहले कर रहा है. शिक्षा के क्षेत्र में ये हर बच्चे के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षक और हेल्पिंग टूल की तरह काम कर रहा है. खेती, बागवानी, स्पोर्ट्स, फिल्म प्रोडक्शन से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक AI ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है जो कभी असंभव से नजर आते थे. वास्तव में AI ने हमारी उत्पादकता को 10 गुना बढ़ा दिया है, और हमारा श्रम, समय, सब कुछ बचाया है. आज के वर्तमान समय में AI की वास्तविक स्थिति पर अगर हम चर्चा करें, तो भारत AI बाजार में उपभोक्ता के रूप में विश्व का दूसरा बड़ा देश है. आज भारत में 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिनमें से 90% प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से AI का उपयोग कर रहे हैं. वहीं बात अगर आर्थिक योगदान की हो, तो AI साल 2035 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में 1.7 ट्रिलियन डॉलर का योगदान देगा. और अगर बात रही रोजगार की, तो भारत में AI इकोसिस्टम में लगभग 60 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है. यही नहीं, हमारे देश में AI ने रोजगार के नए आयाम स्थापित किए हैं. यह न केवल नौकरियों के स्वरूप को बदल रहा है, बल्कि रोजगार के और विस्तृत अवसरों को भी पैदा कर रहा है. AI संशय करने या डरने का विषय नहीं है, और साथ ही AI को जॉब किलर के रूप में ना देखकर जॉब इन्हेंसर के रूप में देखा जाना चाहिए. जिन लोगों को लगता है कि AI नौकरियां खत्म कर रहा है, तो उन्हें आगे की बातें जो मैं बताने वाला हूं ध्यान से सुनना चाहिए. हमारे देश में AI के कारण कई तकनीकी पदों का सृजन हो रहा है, और कई नए विशिष्ट पदों की मांग भी बढ़ने लगी है. कई पद ऐसे भी हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी. ऐसे ही कुछ पदों की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं. सुनिए, ये हाई डिमांड भी हैं और हाई पेइंग जॉब भी हैं. जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, इनका काम AI मॉडल से सटीक परिणाम प्राप्त करना और निर्देश देने की विशेष योग्यता को विकसित करना होता है. वहीं AI एथिक्स ऑफिसर की पोस्ट हाई डिमांड में है। ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि AI का उपयोग नैतिक एवं निष्पक्ष रूप से हो सके। इसके साथ साथ जो ज्यादा प्रचलित पद हैं वह है डेटा क्यूरेटर और लेबर्स का, जो AI को प्रशिक्षित करते हैं तथा प्रशिक्षण के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डाटा को व्यवस्थित करने में कुशल होते हैं। आगे मैं जिस पद को बताने वाला हूँ वह हाई पेड जॉब कैटेगरी में आता है। यह है मशीन लर्निंग ऑपरेटर। आज AI वृहद स्तर पर हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है।

एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने और उसकी सीमाएं निर्धारित करने वाले इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एआई केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सहायक की भूमिका में हर फील्ड में अपना योगदान दे रहा है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में एआई आज शिक्षकों का काफ़ी समय बचा रहा है। पहले शिक्षकों का काफ़ी समय एडमिन वर्क और पेपर वर्क में चला जाया करता था। अब एआई की वजह से यह समय बच रहा है और टीचर्स यही बचा हुआ समय छात्रों पर पूरा ध्यान देने में लगा रहे हैं। ऐसे ही अगली फील्ड है मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन की। पहले स्क्रिप्ट तैयार करने, कॉपी राइटिंग करने और वीडियो एडिटिंग में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, पर आज ये सारे काम एआई की मदद से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और समय भी बचता है। इसलिए डिजिटल मार्केटिंग में एआई टूल्स की डिमांड तो बढ़ी ही है, साथ ही इस फील्ड में एक्सपर्ट्स की भी भारी डिमांड है। जब इतनी सारी फील्ड में एआई ने अपनी पकड़ बनाई है, तो फिर कानूनी और वित्तीय सेवा का क्षेत्र कैसे पीछे छूट सकता है? आज बढ़ते ई कॉमर्स और आपराधिक प्रकरणों में त्वरित सेवा की बहुत आवश्यकता है, जिसमें एआई से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो अब एआई से दस्तावेजों का त्वरित विश्लेषण और वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के कार्य बहुत आसानी से हो पा रहे हैं। साथ ही यहाँ भी एक्सपर्ट्स की आवश्यकता बढ़ रही है। विश्व स्तर पर आज एआई के क्षेत्र में भारत एआई टैलेंट हब बनकर उभर रहा है। आज ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स भारत में खुलते जा रहे हैं, जिसका बड़ा कारण है कि दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों को भारत के युवाओं और टैलेंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर बड़ा भरोसा है, और इसी के चलते लाखों उच्च स्तरीय जॉब्स पनपने लगे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एआई किसी एक संस्था विशेष की पहल है, बल्कि यह एक सरकारी पहल के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसमें स्किल इंडिया और इंडिया एआई जैसे मिशन के तहत युवाओं को डाटा साइंस और क्लाउड कंप्यूटिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज साधारण से साधारण कर्मचारी पर भी एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, कोपायलट, इनकी बुनियादी समझ बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है, जिसका सीधा सा उद्देश्य समय तथा परिश्रम की बचत और उत्पादकता में बढ़ोतरी करना है। आज के प्रगतिशील और बढ़ते प्रतियोगी माहौल में एआई हमारा सारथी बनकर हमें सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। इतने सारे अनगिनत फायदे, बढ़ती उत्पादकता, समय की बचत के बाद भी प्रश्न यही है कि क्या एआई से केवल फायदे ही मिलेंगे या कोई नुकसान भी संभावित है? क्या-क्या नुकसान होंगे यह भी तो जानना जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि वरदान भी अभिशाप बन सकता है यदि उसका सही दिशा में उपयोग नहीं किया जाए तो। हाँ, नौकरियों का संकट हो सकता है, लेकिन वह भी केवल रिपीटेटिव वर्क वाले जॉब्स, जिन्हें मशीनों की मदद से किया जा सकता है, बस ऐसे ही जॉब्स कम होंगे। एक और बड़ा संभावित खतरा है जो हमारी निजता और सुरक्षा पर मंडरा रहा है, क्योंकि एआई का इस्तेमाल करते हुए भ्रामक और गलत कार्य भी एक चुनौती बनते जा रहे हैं। इससे व्यक्ति विशेष की प्राइवेसी खतरे में रहती है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, वो ये कि हमें डरने की नहीं, बल्कि सावधान रहने की जरूरत है। जिस तरह आग से खाना पकाया जा सकता है और घर भी जलाया जा सकता है, अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम आग का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। आज हमें एआई को इंसान के विकल्प के बजाय इंसान के सहायक की तरह विकसित करने की आवश्यकता है, और इसके लिए हमें सही कानून और गाइडलाइंस बनाने की दिशा में काम करना चाहिए, जिससे कि यह मानवता के लिए वरदान ही बना रहे, क्योंकि भविष्य तो टेक्नोलॉजी का ही रहेगा, और हमें बस अपनी इंसानी समझ, नैतिकता को साथ साथ बनाए रखने की आवश्यकता है। अंत में बस इतना ही कि बुद्धिमत्ता मशीन की हो, लेकिन नियंत्रण मनुष्य का ही होना चाहिए।

0: तो आज का ये खूबसूरत सफर कितना सुहाना रहा है ना अपर्णा, और खासकर श्रोताओं के अनुभव सुनकर ये एहसास और भी गहरा हो जाता है कि आकाशवाणी लोगों के लिए सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं रहा बल्कि उनकी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों का हिस्सा भी रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा तनिष्का, 71 वर्षों का ये सफर अनगिनत कहानियों, भावनाओं, गीतों, समाचारों और यादों से बना है। और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, ये सफर आज भी जारी है।
0: तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम एक बार फिर सलाम करते हैं उन सभी श्रोताओं, कलाकारों, अधिकारियों और आवाजों का जिन्होंने आकाशवाणी के इस सफर को इतना यादगार बनाया।
1: और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों, समय बदलता रहा, माध्यम बदलते रहे, लेकिन रेडियो से जुड़ा अपनापन आज भी वैसा ही बना।

0: हुआ है।
1: बिल्कुल, तो इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जो दो प्रश्न हमने आपसे पूछे थे उनके जवाब भी हम आपको अभी देने वाले हैं।
2: बिल्कुल दोस्तों, तो हमारा आज का पहला सवाल था कि ऑल इंडिया रेडियो ने आधिकारिक रूप से आकाशवाणी ये नाम किस सन में अपनाया था, जिसका जवाब है 1956 में।
1: और दूसरा प्रश्न था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका उत्तर है 13 फरवरी।
2: तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ वक्त हो चला है अनुमति का, दीजिए इजाजत अपर्णा
1: और तनिष्का को।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, और शाम के 5:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

श्रोताओं, धूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में समीर ने इस गीत को लिखा था और संगीत था प्रीतम का। और अब आप जो गीत सुन रहे हैं उसे हमने लिया है ओम शांति ओम फिल्म से। आवाजें आप सुनेंगे शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, राहुल सक्सेना और साथियों की। गीतकार जावेद अख्तर और संगीतकार हैं विशाल शेखर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत। आवाजें अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण, सुदेश भोसले और आदेश श्रीवास्तव की थी। गीत समीर का और संगीत था आदेश श्रीवास्तव का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। शाम के 6:01 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं NCERT प्रायोजित कार्यक्रम।

0: शब्दंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा जी ने।
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता, तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू।
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा, श्रीमती सविता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा।
1: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
1: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू और कुसुमबाई।
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
2: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो

0: चर्चा हो गई। अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में
1: जी।
0: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
1: जी वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
0: बिल्कुल सही,
1: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
0: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है। भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट है।
1: जी सुना तो है,
0: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
1: अच्छा,
0: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षा वन नहीं है।
1: क्यों?
0: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षा वन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
1: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओं, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है
0: जी।
1: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं
0: जी।
1: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
0: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्ध खारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
1: जी मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता
0: जी।
1: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
0: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
1: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
0: चलते हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है?
1: दरअसल चलते नहीं है, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
0: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
1: लेकिन भला वो कैसे?
0: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छान कर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छान कर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
1: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं
0: जी।
1: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती
0: जी।
1: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
0: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
1: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है
0: जी।
1: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
0: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छान कर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
1: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
0: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
1: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की
0: जी।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी, यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर

0: अभी आपने सुना यह खूबसूरत कार्यक्रम। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मर्दा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मरदा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की, जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मरदा थिमक्का, समाज सेवा।

0: श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी

0: में बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
1: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था, जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
0: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ।
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं तिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसी तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना, कहने दो उन्हें। सब ठीक हो जाएगा तिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा क्यों एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ उठो, आजा आओ। हाँ देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थी मक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: हाँ, क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही हैं।
3: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
1: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदूर का राजमार्ग जाता था।
0: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ ये तो है।
2: राहगीरों को सुस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं, ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
1: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों ओर बरगद के 20 पौधे लगाए।
0: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
1: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
0: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते।

0: अभ्यास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
1: जी सुनिए।
2: हाँ।
1: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
2: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
1: हाँ।
2: हाँ। अब मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
1: हाँ। अरे अरे इसको भी डालो।
2: हाँ हाँ
1: ये देखो
2: देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा हाँ। था देखो अब कितना बड़ा हो गया ना।
1: प्यारा लग रहा है।
3: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया, लेकिन हाँ उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं, तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
0: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
2: देखा थिमक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
1: हाँ।
2: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
1: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया।
2: हाँ।
1: सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
2: हाँ, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: ऐसा नहीं जैसे हमारा शहर हो।
3: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदूर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
0: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था, लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का समाज सेवा।
3: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
3: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन, अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे सदा याद रखा जाएगा।
8: अभी आप सुन रहे थे विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का। इस रेडियो नाटक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार सुषमा शर्मा, सुनील लोहिया, प्रवीण शर्मा, परवेज गौहर और शिमाइला परवेज।

0: आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मरदा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से, लगता है कोई गा रहा है, जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करने न पड़े फिर तलाश।
0: वनों

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच्ची तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम NCERT। शाम के 6:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं वारसी बंधु।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं वारसी बंधु। आइए सुनते हैं इनके स्वर में कार्यक्रम का अगला सुगम संगीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के हमारे कलाकार थे वारसी बंधु। आप इनके स्वर में सुन रहे थे कुछ कव्वालियां। इसी के साथ में सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। शाम के 6:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत। कलाकार हैं भैरू सिंह चौहान।

आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज के हमारे कलाकार हैं भैरव सिंह चौहान। आइए सुनते हैं इनके स्वर में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे थे अभी लोक संगीत। आज के हमारे कलाकार थे भैरव सिंह चौहान और इनके साथ साथियों की आवाज़ें आपने इसमें सुनी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। शाम के 7 बजने को हैं, थोड़ी देर में हिंदी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय जल्द ही ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमरे और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज की मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। ये पोस्टमार्टम नई दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय 2 भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मौत हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर ये चौथी मौत है। आईपीएल क्रिकेट में हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 465.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रम और इसके पश्चात हम आपको बताएंगे कल के कार्यक्रमों की जानकारी। आज 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, इसमें सुनिए भेंट वार्ता, भारतीय किसान संघ किसानों के लिए फायदेमंद। वार्ताकार होंगे अध्यक्ष विष्णु डांगी और इनसे बातचीत करेंगी स्मिता दुबे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं लोकगीत और साथ ही मंडी के भाव भी इसी कार्यक्रम में आपको बताए जाएंगे। रात्रि 8:00 भोपाल केंद्र से सुनिएगा सुर्खियों में, 8:15 पर दिल ने फिर याद किया प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, आपको बता दें कि रात्रि 9:15 पर हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में 23वां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अलंकरण समारोह और रुस्तम जी मेमोरियल व्याख्यान। इसके पश्चात 10:20 पर आप सुन सकते हैं चित्रगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में आज हम आपको सुनाएंगे विदुषी शोभा गोटू का उपशास्त्रीय गायन। आज सुनिएगा मिश्र खमाज में ठुमरी और मिश्र खमाज में दादरा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल यानी शनिवार 23 मई को आप सुन सकते हैं 6:05 पर भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना, 6:30 पर सुनिएगा चिंतन, 6:35 पर खेती की बातों में विषय होगा मिट्टी परीक्षण। इस विषय पर जानकारी देंगी संध्या कोठारी। 6:40 पर प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरित मानस गान का कल का भाग। 7:20 पर सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सुनहरे पल। 8:30 पर आप आनंद उठा सकते हैं फिल्म संगीत का। सुबह 9:00 लोक संगीत के कलाकार होंगे ललतू मलाकार और इनके साथी। 9:10 पर आप सुनेंगे पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। 9:35 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा विनायक बोरा का गाया राग रामकली। 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, से हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। 10:05 पर फोन इन कार्यक्रम होगा MH हॉटलाइन। इस कार्यक्रम में आप फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंद के गीत। श्रोता, 11:00 से आप सुनते हैं भोपाल केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम, तो कल भी सुनिएगा। इन कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। दिन में 12:00 फिल्म संगीत, 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1:00 प्रसारित होगा कार्यक्रम महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत प्रसारित किया जाएगा। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर चित्रपट संगीत। तो ये थे भोपाल केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम। और आइए अब आपको शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दें। शाम 5:00 हमारी सभा आरंभ होगी, जिसमें सबसे पहले आप सुनते हैं युववाणी। तो कल भी सुनिएगा युववाणी। कल का विशेष क्रम होगा हेलो फ्रेंड्स। तो आप फोन कर सकते हैं और बात कर सकते हैं युवा साथियों के साथ में, युवा कंपियर्स के साथ में, और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। 5:45 पर फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा। शाम 6:00 आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत। 6:30 पर सुगम संगीत की कलाकार होंगी नीलम साहनी। 6:45 पर लोक संगीत के कलाकार होंगे ललतू मालाकार और उनके साथी। 7:20 पर खेती गृहस्थी। रात्रि 8:00

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और त्रिशा शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश। प्रदेश सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स से मुलाकात की। दोनों देशों ने आतंकरोधी, नवाचार, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग समेत कई क्षेत्रों में समझौते किए। श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो चुका है और अगले 5 साल में इसे फिर से दोगुना करने का लक्ष्य है।
4: यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी। हम साइप्रस के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी को एक ग्लोबल फाइनेंशियल और सर्विसेज हब बनाने के विजन को गति देंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश के 47 स्थानों पर एक साथ आयोजित किया जाएगा। चुने गए युवा रेल, गृह, स्वास्थ्य और वित्त समेत कई सरकारी विभागों में काम संभालेंगे। श्री मोदी इस मौके पर युवाओं को संबोधित भी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर आज भोपाल के IIFM में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट हुआ। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश की जीडीपी का आधे से अधिक हिस्सा जैव विविधता से जुड़ा है और इसे बचाना जरूरी है।
5: हमने 2014 में देश में 24 रामसर साइट्स थी, उसको बढ़ा करके अब 99 किया। बहुत जल्दी हमारी 100 साइट जो है रामसर साइट हो जाएंगी। इंदौर तो वेटलैंड सिटी ही डिक्लेयर हुआ है। ये जो वेटलैंड है ये भी हमारी बायोडायवर्सिटी की समृद्ध धरोहर ही नहीं बल्कि हमारे जल संरक्षण और जलवायु संतुलन और लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है।
3: वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व के आसपास वन्य जीव रेस्क्यू सेंटर बनाए जाएंगे ताकि घायल जानवरों को भोपाल न लाना पड़े। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में चल रहे जलगंगा संवर्धन अभियान की जानकारी भी दी।
6: हमारी सरकार ने जल संरक्षण को लेकर भी तीसरा साल चल रहा है, हमने इसको केवल कर्मकांड नहीं इसको प्रतिबद्धता के बलबूते तो इस साल भी लगातार हम अब की बार तो और 3 महीने तक गुड़ी पड़वा से 30 जून तक लगभग 3,000 करोड़ से 56,000 से अधिक जल स्रोतों का जीर्णोद्वार, साथ ही साथ 827 बावड़ी, 1200 से अधिक तालाब, 18 लाख से अधिक नागरिकों की भागीदारी करते हुए जल संरक्षण को लेकर अलग अलग राज्यों में मध्यप्रदेश नंबर 1 पे है।
3: केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने आज जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया जिसमें पहले सिर्फ 8 डिब्बे थे। इस मौके पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण और जैसलमेर में नए कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल

0: का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज दो दिन के प्रदेश दौरे पर हैं। वे अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर, शिवपुरी और गुना जाएंगे। दौरे से पहले श्री सिंधिया ने समर्थकों से अपील की कि उनके स्वागत में कोई पेट्रोल डीजल वाहन न जलाए और उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में ईंधन को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 18 जून को 12 राज्यों की 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें प्रदेश की 3 सीटें भी शामिल हैं। इन तीनों सीटों पर बैठे सदस्यों का कार्यकाल 21 जून को खत्म हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और डॉ सुमेर सिंह सोलंकी शामिल हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। तुषार शर्मा केस में आरोपी पति समर्थ सिंह आज शाम जबलपुर जिला कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा। इससे पहले समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में दायर अपनी अग्रिम जमानत की याचिका भी वापस ले ली थी। वहीं हाईकोर्ट ने आज तुषार का दोबारा पोस्टमार्टम कराने के आदेश दिए हैं, जो दिल्ली एम्स के डायरेक्टर की अगुवाई में भोपाल एम्स में होगा। पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और तब तक पुलिस को शव सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र भेज दिया है। धार में भोजशाला को वाग्देवी का मंदिर घोषित करने के बाद आज पहले शुक्रवार को हिंदू समुदाय ने पूजा अर्चना की। हाईकोर्ट ने 15 मई को शुक्रवार की नमाज पर रोक लगाते हुए यह फैसला दिया था। आज सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और दोपहर 1 बजे महाआरती हुई। माहौल पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा और करीब 1800 सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने अशोकनगर कलेक्टर को चंदेरी के गाड़िया लोहार परिवारों को जल्द आवासीय पट्टे दिलाने के निर्देश दिए हैं। गाड़िया लोहार समाज के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री से मिलकर अपनी मांग रखी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सभी पात्र परिवारों को शासन की योजनाओं का पूरा लाभ दिया जाएगा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। परीक्षा हर रोज 4 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। इस साल से क्लर्क और स्टोरकीपर पदों के अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट भी ऑनलाइन केंद्र पर ही लिया जाएगा। प्रदेश में ईएसआईसी के तहत पंजीकृत मजदूरों और उनके परिवार को अब कैशलेस आयुष चिकित्सा का फायदा मिलेगा। इसके लिए श्रम विभाग और आयुष विभाग के बीच एक समझौता हुआ है। श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी में ये एमओयू साइन किया गया। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा से पहले ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आज 41 जिलों में लू की चेतावनी जारी की। वहीं निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट रहा। इसके अलावा 25 मई से नौतपा शुरू होगा और उसके बाद गर्मी और भी बढ़ने की आशंका है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत ने आज शहडोल के सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे मध्य क्षेत्र कार्यकर्ता विकास वर्ग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के सदुपयोग पर बल दिया है। बैतूल कलेक्टर ने आज रानीपुर पुलिस थाना म्यूजियम में संरक्षित ऐतिहासिक सामग्री एवं स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की। झाबुआ कलेक्टर आज राणापुर विकासखंड के ग्राम समोई में संतृप्त शिविर में शामिल हुए और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। बुरहानपुर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने इंदौर इच्छापुर हाईवे निर्माण का निरीक्षण कर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। राजगढ़ जिले की 23 आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के रिक्त पदों के लिए जारी भर्ती की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। शहडोल के केशवाही वन परिक्षेत्र में एक जंगली हाथी के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। खंडवा में आगामी त्योहारों को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। CBSE ने 12वीं की आंसरशीट की स्कैन कॉपी मांगने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। जापान में होने वाले अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम में प्रदेश के 6 खिलाड़ी और महिला हॉकी टीम में प्रदेश की 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। और IPL में अब से कुछ देर में हैदराबाद में सनराइजर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई अहम क्षेत्रों में हुए समझौते। कल 19वें रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। भोपाल में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का प्री समिट, मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा सभी टाइगर रिजर्व के पास बनेंगे वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर। और तुषार शर्मा मामले में हाईकोर्ट ने एम्स दिल्ली से दूसरा पोस्टमार्टम कराने का दिया आदेश, प्रदेश सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंपी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7:20 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सगला किसान भाई बहन और के स्मिता की राम राम। सबसे पहला तम सबके अणपुरा मालवा परिवार के आकाशवाणी का 90 बरस पूरा होने पे अण आकाशवाणी इंदौर का 71 बरस पूरा होने पे हार्दिक बधाई अण ढेर सारी शुभकामना। आज को दिन सिर्फ स्थापना दिवस कोज नहीं पण संस्कृति सेवा अण विश्वास का 90 बरस का गौरवशाली सफर को उत्सव मनाने को दंड भी है। आकाशवाणी इंदौर नरा बरस से खेती गृहस्थी कार्यक्रम का माध्यम से मालवा की बोली, मालवा निमाड़ की संस्कृति अण किसान का सुख दुख की सच्ची साथी बनी हुई है। कदी मौसम की खबर, कदी खेतना में नई तकनीक, कदी गृहस्थी की समझदारी अण कदी नंदा जी भेरा जी का मजेदार किस्सा। जैसे तुम्हारे एक किस्सो सुनो। नंदा जी एक दिन भेरा जी से बोलिया, भाई थारा खेत में अब तो पैदावार दुगनी होने मंडी गई। भेरा जी बोलिया, अरे नंदा, जब से खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनना चालू करियो है तब से खेत भी खुश है अण घरे भी सगला खुश है। फिर नंदा जी बोलिया, और थारो छोरो? भेरा जी उका बादे गर्व से बोलिया, वो तो कौशल विकास योजना में हुनर सीखी रियो है, अब खेती का संग संग नई तकनीक भी समझे है। भाई बहन, आज गांव का युवा हुनर सीखी के आत्मनिर्भर बनी रिया है। कोई कंप्यूटर सीखी रियो है तो कोई मोबाइल रिपेयरिंग, कोई सिलाई कढ़ाई और कोई आधुनिक खेती, और ई बदलाव में जागरूकता फैलाने में आकाशवाणी को घणो बड़ो योगदान है। याद करो वो जमानो जब सांझ पड़ते घर घर रेडियो चालू हो जाता था और आवाज आती थी, यो आकाशवाणी इंदौर है। अब आप खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनो। बस फिर गांव की चौपाल जम जाया करती, हंसी भी, सीख भी और अपनोपन भी। आज स्थापना दिवस पर हम सभी कामना करा आकाशवाणी यूज जन जन की आवाज बनी के गूंजती रेवे, मालवा की माटी की खुशबू दुनिया भर में फैलती रेवे, अण किसान युवा अण परिवार के नई राह दिखाती रेवे। एक बार आकाशवाणी का 90 गौरवशाली बरस और इंदौर आकाशवाणी का 71 बरस पूरा होने पे हार्दिक शुभकामना। राम राम। भाई बहनों, या तो ही गई हमारा स्थापना दिवस।

की अण साथे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की बातचीत। अब अपना कार्यक्रम के अपन आगे बढ़ावा और अपनो कार्यक्रम को मुख्य आकर्षण लोकगीत जी कोई अपना तमारे भी इंतजार रहे और मारे भी आनंद आवे है। तो अपन सुना यो लोकगीत जी के गायो है रामगीर वर्मा अण साथी नाने। तो सुनाए यो लोकगीत।

भाई बहनों, और हमने यो लोग गीत सुनियो जी के गायो तो रामगीर वर्मा अने साथी ना ने। अब अपना कार्यक्रम के अपन आगे बढ़ावा और सोयाबीन की फसल को बखत आने वालों है तो सोयाबीन का बारे में जानकारी भी जरूरी है। आज अपन

0: जाना डॉक्टर गिरिराज कुमावत से जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किस्म सुधार कैसे करनो। तो चलो सुना या वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर गिरिराज कुमावत। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर में वैज्ञानिक हूं। आज हम चर्चा करेंगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किस्म सुधार पर कार्यक्रम पर। यह विषय हमारे किसानों और समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और कृषि विकास सीधे इससे जुड़े हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या, बदलते मौसम और रोग एवं कीटों का दबाव खेती को चुनौतीपूर्ण बना रहा है। उदाहरण के लिए मध्य भारत में सोयाबीन की फसल अक्सर पीला मोजेक वायरस और एरियल ब्लाइट जैसे कई रोगों से प्रभावित होती है, जिससे उत्पादन में भारी कमी आती है। तो किस्म सुधार का क्या अर्थ है? किस्म सुधार का अर्थ है ऐसी नई किस्में विकसित करना जिनमें अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता, बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरण अनुकूलशीलता हो। उदाहरण के लिए गेहूं की कल्याण सोना और सोनालिका किस्मों ने उत्पादकता बढ़ाकर हमारे देश की हरित क्रांति में बड़ा योगदान दिया था। इसी प्रकार सोयाबीन की किस्म NRC SL3 भी विकसित की गई है, जो पीला मोजेक रोग के लिए प्रतिरोधी है। अब जैव प्रौद्योगिकी क्या है और इसकी किस्म सुधार में क्या भूमिका है? जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों के जीन और कोशिकाओं का उपयोग करके नई तकनीकें एवं किस्में विकसित की जाती है। इसमें मार्कर स्टेट सेलेक्शन, जीन एडिटिंग और जीन ट्रांसफर जैसी कई विधियां शामिल है। तो मार्कर स्टेट सेलेक्शन का मतलब है जीन के आणविक मार्करों की मदद से जल्दी और सटीक चयन करना। उदाहरण के लिए धान में बैक्टीरियल ब्लाइट प्रतिरोधक किस्में इस तकनीक से विकसित हुई है, जिसमें से इम्प्रूव्ड पूसा बासमति 1 प्रमुख है। सोयाबीन की किस्म NRC 142 भी इसी तकनीक से विकसित की गई है, जो कुनिट ट्रिप्सिन इनिबिटर से मुक्त है और सोयाबीन के खाद्य पाचन में सहायक है। दूसरी विधि है जीन एडिटिंग। जीन एडिटिंग का मतलब है पौधों के जीन में बदलाव कर उत्पादकता, रोग प्रतिरोधकता या जल्दी पकने की क्षमता देना। उदाहरण के लिए भारत में विकसित धान की किस्म कमला में जीन एडिटिंग द्वारा उत्पादकता बढ़ाई गई। इसी प्रकार धान की एक अन्य किस्म है पूसा DST Rice 1, जो कि उच्च उपज, सूखा और लवण सहनशीलता तथा नाइट्रोजन उपयोग दक्षता जैसी कई विशेषताओं से युक्त है। तीसरी विधि है ट्रांसजेनिक फसलें। ट्रांसजेनिक फसलों का मतलब है कि दूसरे जीवों के जीन डालकर नई विशेषताएं देना। उदाहरण के लिए बीटी कपास में बीटी बैक्टीरिया का जीन डाला गया, जिसने गुलाबी सुंडी से बचाव किया एवं किसानों की कीटनाशक लागत भी कम की। तो भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय इस किस्म सुधार कार्यक्रम में सक्रिय हैं। उदाहरण के लिए इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र ने भी जल्दी पकने वाली और रोग प्रतिरोधक कई किस्में विकसित की है, जो किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किस्म सुधार कार्यक्रम के मुख्य लाभ है अधिक उत्पादन, रोग और प्रतिरोधक कीट प्रतिरोधक किस्मों से कीटनाशक की खपत कम करना, जलवायु सहनशीलता, गुणवत्ता एवं पोषण सुधार। हालांकि जैव प्रौद्योगिकी के बहुत लाभ है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, जिसमें किसानों तक नई तकनीक पहुंचाना, तकनीकी लागत कम करना, समाज में जागरूकता फैलाना और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना। जैसे बीटी तकनीक से लाभ तो बहुत हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्रों में कीटों ने नई प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, जिसके कारण हमें फिर से नई कीटरोधक किस्म बनाने के प्रयास करने होंगे। तो प्रिय श्रोताओं, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किस्म सुधार कार्यक्रम हमारे देश की खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। यदि हम विज्ञान और परंपरा का संतुलन बनाए रखें, तो आने वाले समय में भारत कृषि क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश बन सकता है। धन्यवाद
0: भाई बहन, हमने यह वार्ता सुनी जिका में हमारे डॉक्टर गिरिराज कुमावत ने जैव प्रौद्योगिकी द्वारा किस्म सुधार कैसे करनो इकी जानकारी दी। अब इका साथे अपन आगे चला और अपना जो लोकगीत को सिल्की सिलो है इके भी बढ़ाता चला और सुना रेखा सोलंकी को गायो यो लोकगीत।

हमने रेखा सोलंकी को गायो ये लोकगीत सुनियो। अब अपना कार्यक्रम के आगे बढ़ावा और सुना भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष विष्णु दांगी जी से बातचीत। हम समय समय पर अपने किसान भाइयों बहनों के लिए ऐसी जानकारियां इकट्ठी करते हैं और ऐसे कई लोगों से, कई जागरूक किसानों से बात करते हैं जिससे कि हमारे किसान भाई बहन कोई परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उनकी परेशानी हल करने में उन्हें मदद मिले और साथ ही वही बड़ी आसानी से अपना जो

0: खेती का कार्यक्रम में काम है वो अच्छे से कर सके। इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं विष्णु दांगी जी से, जो कि किसान संघ के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले तो मैं खेती गृहस्थी परिवार की ओर से आपका आकाशवाणी इंदौर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार विष्णु जी।
1: धन्यवाद मैडम जी।
0: अब आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप अपना परिचय दें और साथ ही यह बताएं हमारे किसान भाइयों बहनों को कि भारतीय किसान संघ क्या है, इसके बारे में आप हमें बताएंगे।
1: जी, मेरा नाम विष्णु दांगी है। मैं भारतीय किसान संघ से इंदौर तहसील अध्यक्ष हूँ और किसान हित में, किसान सम्मान और राष्ट्र हित के उद्देश्य से संगठन के साथ कार्य कर रहा हूँ।
0: जी,
1: भारतीय किसान संघ की स्थापना 4 मार्च 1979 को श्री दंतोपंती ठेंगड़ी जी द्वारा की गई थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: वे हमारे संगठन के संस्थापक रहे हैं और भारतीय किसान संघ किसानों के कल्याण के लिए किसानों द्वारा चलाए जाने वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है। हमारा संगठन भारतीय संस्कृति, गांव, किसान और राष्ट्र हित की भावना के साथ कार्य करता है। हमारा संगठन सत्ता या राजनीति के लिए नहीं, बल्कि किसान हित और किसान सम्मान के लिए कार्य करता है। हमारे संगठन में कार्यकर्ता ही हमारे नेता होते हैं और किसान ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
0: जी,
1: हमारा उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर, संगठित और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि देश का अन्नदाता सम्मान के साथ जीवन जी सके।
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। पर भारतीय किसान संघ जो है वो किसानों के लिए क्या कार्य करता है, किस प्रकार से करता है?
1: इसे भारतीय किसान संघ किसानों की आवाज बनकर कार्य करता है। किसानों को यदि उपार्जन, बिजली, पानी, खाद, बीज, फसल भुगतान, बीमा, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा, मंडी तथा खेती से जुड़ी अन्य समस्याएं आती है तो संगठन प्रशासन और शासन से चर्चा कर समाधान करवाने का प्रयास करता है।
0: जी,
1: और भारतीय किसान संघ किसानों की हर समस्या को गंभीरता से उठाता है और किसान हित में लगातार कार्य करता है। हम किसानों को जागरूक करने, संगठित रखने और उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने का भी कार्य करते हैं। किसान हित से जुड़े जो हर विषय पर भारतीय किसान संघ किसानों के साथ मजबूती से खड़ा रहता है।
0: जी जी जी,
1: खड़ा रहेगा।
0: मतलब आप काफी किसानों की मदद करते हैं। तो विष्णु जी, ये बताइए कि आज किसान की समस्या कौन सी है, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है किसानों को?
1: किसानों को समस्या जो आती है, आज किसान की सबसे बड़ी जो समस्या है, खेती की बढ़ती लागत।
0: अच्छा
1: जी। और उपज का उचित मूल्य न मिल पाना। और जैसे खाद, डीजल, दवाई और बिजली के लगातार खर्च बढ़ते जा रहे हैं। और ऊपर से जो मौसम परिवर्तन के कारण, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि, और कभी अतिवृष्टि जैसी परिस्थितियां बनती है मैडम
0: जी। हाँ,
1: जिससे किसानों के आर्थिक रूप से प्रभावित होता है।
0: तो क्या आपको लगता है कि मतलब खेती जो है वो अब घाटे का सौदा होने लग गया है या बनती जा रही? माने तो
1: बिल्कुल, किसानों को देखिए, किसान पूरी मेहनत और लगन से खेती करता है, लेकिन कई बार लागत के अनुसार मूल्य नहीं मिल पाना, मिलने से किसान परेशान रहता है।
0: जी,
1: हमारा मानना है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। यदि सही दाम और उचित व्यवस्था मिले तो खेती और आज भी सबसे मजबूत व्यवसाय बन सकती है।
0: जी, ये बात भी सही है। तो विष्णु जी, क्या भारतीय किसान संघ जो है वो किसानों की

0: समस्याएं जो है मतलब सरकार तक पहुंचाता है, तो वो किस किस तरह से पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है सरकार तक?
1: बिल्कुल, जैसे हम लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से किसानों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार को हम ज्ञापनों के माध्यम से, बैठकों, हाँ, अधिकारियों से चर्चा और किसान प्रतिनिधियों के माध्यम से किसानों की समस्या
0: जी
1: समस्याओं को उठाया जाता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारा उद्देश्य केवल संघर्ष करना नहीं बल्कि किसानों की समस्याओं का समाधान निकलाना भी रहता है।
0: अच्छा अच्छा
1: जी
0: जी, तो ये तो अपन किसानों की बात चल रही है, तो इसमें अपन अब युवाओं के बारे में भी देखते हैं कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि आज का युवा खेती से दूर होता जा रहा है, कई बार बच्चे आजकल करना नहीं चाहते खेती, तो इसमें आप क्या कहेंगे?
1: सही बात है, युवाओं को खेती से जोड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि खेती नहीं करेंगे तो अन्न प्राप्त नहीं हो पाएगा और अन्न प्राप्त नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देश में समस्या खड़ी होगी।
0: जी, हमारा तो कृषि प्रधान देश है वैसे भी।
1: जी जी, आज की आधुनिक तकनीक जैसे जैविक खेती और वैज्ञानिक कृषि में बहुत संभावना है।
0: जी हाँ,
1: खेती की केवल परंपरा नहीं है बल्कि रोजगार और आत्मनिर्भरता का बड़ा माध्यम है।
0: बिल्कुल,
1: यदि युवा नई सोच और तकनीक के साथ खेती करेंगे तो वे अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी जी जी, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जिसमें आप युवाओं को भी जोड़ना चाहते हैं। अच्छा, आप क्या ऐसा कुछ संदेश जो हमारे किसानों को देना चाहते हैं तो दीजिए।
1: हाँ, मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि पहले तो संगठित रहें, जागरूक रहें
0: जी,
1: और आधुनिक खेती अपनाएं।
0: बिल्कुल,
1: किसान कभी कमजोर नहीं होता है, वहाँ देश का अन्नदाता है। जब किसान मजबूत होगा तभी देश राष्ट्र मजबूत बनेगा।
0: जी हाँ, तो क्या आपका संघ और आप लोग सरकार से भी कुछ अपेक्षाएं रखते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, हमारी अपेक्षाएं सरकार से है किसानों की उपज का उचित मूल्य मिले।
0: जी हाँ,
1: समय पर भुगतान हो और जैसे प्राकृतिक आपदा में तुरंत राहत मिले।
0: जी
1: हाँ, और सिंचाई तथा बिजली की व्यवस्था मजबूत हो जिससे किसानों को सम्मान और सुरक्षा दोनों मिलना बहुत जरूरी है।
0: जी, और आपका जो भारतीय किसान संघ है इसकी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं आप?
1: हमारी सबसे बड़ी ताकत किसानों की एकता है।
0: जी,
1: जब किसान संगठित रहता है तो उसकी आवाज मजबूत होती है। भारतीय किसान संघ हमेशा किसानों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता रहा। अच्छा, रहेगा और लड़ता रहा है।
0: अच्छा जी, तो अंत में आप श्रोताओं को क्या संदेश देंगे?
1: मैं सभी किसान भाइयों को, समाजजनों और देशवासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि किसान का सम्मान करें, किसान खेत में मेहनत करता है तभी देश की थाली भरती है।
0: जी,
1: किसान हित ही राष्ट्र हित है, मजबूत किसान और मजबूत भारत। अंत में मैं सभी किसान भाइयों, समाजजनों, किसान संघ के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि इंदौर के रामबाग मल्लार आश्रम के पास हमारा भारतीय किसान संघ का कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। यह कार्यालय की सेवा और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। प्रांत अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जी पटेल हैं।
0: अच्छा,
1: उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनके मोबाइल नंबर में बताना चाहूंगा। सभी किसान भाइयों, यहाँ हमारे दो नंबर मोबाइल नंबर है, इन पर संपर्क कर सकते हैं, 94-250-53-516 और एक नंबर और है 9977-69-3799, उन पर आप संपर्क कर सकते हैं और किसान संघ से जुड़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भारत माता की जय, जय बलराम जी।
1: जी आपने तो विष्णु जी बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और जरूर से वो इसका लाभ उठाएंगे और भारतीय किसान संघ से भी जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्ते।
1: हमने भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष विष्णु दांगी जी से बातचीत करी। अब इका साथे ज तमारे इंतजार होएगो आज के कृषि उपज मंडी से आयवा भाव को। तो चलो जानीला कृषि उपज मंडी समिति संयोगिता गज प्रांगण से जो भाव आया है उनका बारे में। गेहूं की आवक रही 3545 क्विंटल और भाव रही 1896 रुपया से 4181 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन की आवक रही 464 क्विंटल, भाव रही 1700 रुपया से 7460 रुपया प्रति क्विंटल। मेथी दाना की आवक रही 4 क्विंटल और भाव रही 4305 रुपया से 4905 रुपया प्रति क्विंटल। चना की आवक रही 250 क्विंटल और भाव रही 2995 रुपया से 9425 रुपया प्रति क्विंटल। तिल्ली की आवक रही 1 क्विंटल और भाव रही 6495 रुपया प्रति क्विंटल। उड़द की आवक रही 1 क्विंटल और भाव रही 3000 रुपया प्रति क्विंटल। मटर की आवक रही 300 क्विंटल और भाव रही 2925 रुपया से 4000 रुपया प्रति क्विंटल। राजमा की आवक रही 72 क्विंटल और भाव रही 1600 रुपया से 7850 रुपया प्रति क्विंटल। इमली की आवक रही 68 क्विंटल और भाव रही 3000 रुपया से 10200 रुपया प्रति क्विंटल। मूंग की आवक रही 157 क्विंटल और भाव रही 5560 रुपया से 7885 रुपया प्रति क्विंटल। डॉलर चना की आवक रही 4512 क्विंटल और भाव रही 3000 रुपया से 9710 रुपया प्रति क्विंटल। अमचूर की आवक रही 12 क्विंटल और भाव रही 5190 रुपया से 5900 रुपया प्रति क्विंटल। भाई बहनों ये तो था आज से, आज हमारे कृषि उपज मंडी समिति संयोगिता गंज प्रांगण से मिलिया हुआ भाव। अब हम सुना एक और लोकगीत जी के गायो है सीमा मिश्रा ने।

अब इका साथे ज अपन चलता चलता काल की विदाई करीला। काल हम खेती का कार्यक्रम में सुना खेती की बात में सुनांगा लू से बचाओ, जिका में वाचन होएगो संध्या कोठारी को। खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात भी करांगा और साथेज और नई भेंटवार्ता भी सुनांगा। लोकगीत को आनंद भी हम उठावांगा। तो घड़ी भी मारे इशारों करी रही है, मारे दो अनुमति। राम राम।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि के 8 बजने को हैं, आप सुनेंगे सुर्खियों में भोपाल केंद्र से।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुभा रोहतगी और आज की चर्चा का विषय है साइप्रस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा, सुदृढ़ होते द्विपक्षीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर सचदेवा, आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: शुक्रिया।
2: प्रोफेसर सचदेवा, साइप्रस के राष्ट्रपति श्री निकोस क्रिस्टोड्यूलिडेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। ऐसे समय में जब भारत और यूरोपीय संघ 2027 तक की शुरुआत तक अपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं, साइप्रस इसमें क्या भूमिका निभा सकता है, विशेष रूप से तब जबकि वर्तमान में वह यूरोपियन संघ परिषद का अध्यक्ष है।
3: ये उनकी जो यात्रा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो EU प्रेसिडेंसी की यूरोपियन काउंसिल की वो 6 मंथ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है, उसमें हर 6-6 महीने के बाद वहाँ पे जो है नया कंट्री जो है उसका प्रेसिडेंसी कंट्री बनता है। तो अभी इस साल के पहले 6 महीने की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास है, तो उसका मतलब यह है कि जितनी भी मीटिंग्स वहां पे यूरोपीय संघ की जो होती है वहां पे काउंसिल पे, उनकी जो अध्यक्षता है उन मीटिंग्स की, सब वो प्रेसिडेंसी कंट्री करता है। और उसका हर प्रेसिडेंसी कंट्री अपना एक एजेंडा लेके आता है कि मैं इस 6 महीने के अंदर ये चीजें जो है वो कोशिश करेंगे उनको आगे बढ़ाने के लिए उनकी अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक। तो वैसे तो ये रूटीन मैटर है, हर 6-6 महीने में कंट्री जैसे बदलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे संबंध हैं वो यूरोपीय संघ के साथ बहुत ही प्रगाढ़ हुए हैं पिछले कई सालों में। और अभी हमने देखा था जब जनवरी में भारत में यूरोपीय संघ और भारत की जो समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद से नया रोड मैप हमारा 2030 का उनके साथ उसको अपनाया गया है। और जैसे आपने कहा कि मुक्त व्यापार जो बात है ट्रेड एग्रीमेंट की, उसके नेगोशिएशंस कंप्लीट हो गए हैं, फॉर्मेलिटीज वहां पे चल रही हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितनी जल्दी है उसको क्रियान्वित किया जाए और उसमें जो भी प्रेसिडेंसी कंट्री है निश्चित तौर से उनका एक रोल रहता है, उसको थोड़ा आगे पुश जल्दी कर सकते हैं, तो उसमें साइप्रस भी अपनी भूमिका उसमें अदा कर सकता है। मुझे लगता है जो प्रधानमंत्री का भी दौरा भी था यूरोप का, जिसमें 4 यूरोपीय देशों में गए थे, उसमें भी अपने संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं उन देशों के साथ आगे बढ़ाए हैं। और उसी कड़ी में मुझे लगता है ये जो अभी साइप्रस के राष्ट्रपति डोलिडिस का यहाँ पे जो दौरा है, उसी की श्रृंखला में मुझे लगता है कि एक एक देश के साथ हम बिल्कुल अपने संबंध प्रगाढ़ करते जा रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री भी साइप्रस का दौरा करके 2025 वहाँ पे आए थे, तो संबंध काफी करीब हुए हैं पिछले कुछ सालों में।
2: प्रोफेसर सचदेवा, इससे पहले कि मैं आपसे अपना अगला प्रश्न पूछूं, आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत साइप्रस की मित्रता और भारत EU FTA में साइप्रस की भूमिका के बारे में क्या कहा।
4: भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा। आज जब भारत और यूरोप अपने संबंधों में एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं, तो साइप्रस इस समय न केवल यूरोपियन यूनियन काउंसिल की अध्यक्षता कर रहा है, बल्कि भारत और पूरे यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट गेटवे के रूप में उभर रहा है।
2: प्रोफेसर सचदेवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस संयुक्त प्रेस वक्तव्य में एक और घोषणा की कि भारत और साइप्रस अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया है और अगले 5 वर्षों में साइप्रस में भारत में होने वाले निवेश को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। चलिए पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
4: फ्रेंड, साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई

0: संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं और इस संकल्प को साकार करने के लिए आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं।
1: तो प्रोफेसर सचदेवा, जैसे भी हमने प्रधानमंत्री को सुना और हम भी बात कर रहे थे कि दोनों देशों ने इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है उसको दुगना करने का एक निर्णय लिया है और जो हमारे द्विपक्षीय संबंध है उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर एलिवेट करने का जो उन्होंने एक निर्णय लिया है, इन दोनों ही फैसलों पर आप क्या सोचते हैं?
2: इनफैक्ट ये एक काफी सोची समझी नीति मुझे लगता है भारत की है यूरोप के प्रति, जो काफी अभी बिल्कुल उभर कर आ रही है। आप जानते हैं कि हमारा यूरोपीय संघ के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2004 से है और पहले हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कुछ बड़े देशों के साथ होती थी, जैसे फ्रांस के साथ थी, जर्मनी के साथ थी और यूके जब उनका हिस्सा होता तो उनके साथ थी। वो साझेदारी अभी भी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई और देशों के साथ पार्टनरशिप किया स्ट्रेटेजिक, जैसे इटली के साथ किया, ग्रीस के साथ किया, पोलैंड के साथ किया और अभी जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो 2 और पार्टनरशिप्स को, नीदरलैंड्स को, स्वीडन को भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में तब्दील किया। उसी कड़ी में अभी ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइप्रस के साथ है उसको भी एलिवेट किया गया है और उसके साथ डिफेंस का एक नया रोड मैप भी इनके साथ तैयार किया गया है, क्योंकि यूरोपीय संघ के अंदर यह है कि कॉम्पिटेंसीज कुछ चीजों की जो है यूरोपीय संघ के पास है, बाकी चीजों की, क्योंकि सब अलग अलग इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्रीज है, तो उन सब चीजों की बात आप उस देश के साथ कर सकते हैं। तो हम यूरोपीय संघ के साथ बात कर रहे हैं, उनके साथ हमारी साझेदारी है, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट देश हमको लगता है उनके साथ हम अपने रिलेशंस को एलिवेट कर रहे हैं। और जैसे इंडिया नॉर्डिक समिट में था तो हमने एक समूह के साथ भी वहां पे उनके साथ अलग से बातचीत कर रहे हैं। तो क्योंकि साइप्रस जो है हालांकि एक छोटा सा टापू है, छोटा सा देश है, लेकिन भारत की दृष्टि में मुझे लगता है क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री पिछले साल भी गए थे वहां पे और अभी वहां के राष्ट्रपति यहाँ पे हैं और इस रिलेशनशिप को अपग्रेड किया गया है, इसका मतलब यह है कि हम सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जगह पे स्थित हैं और मेडिटेरेनियन के अंदर इसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। और जिस तरीके से निवेश की बात है, क्योंकि वहां के जो नियम कायदे कानून है मॉरिशस की तरह काफी खुले हैं, उसकी वजह से वहां से निवेश चाहे वो साइप्रस का हो चाहे दूसरे देशों के व्यापारी हो, वो भी साइप्रस के थ्रू काफी निवेश दूसरे देशों में करते हैं। तो उसी का कारण है कि काफी निवेश वहां से, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा हमारे टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से साइप्रस है और अगर उनके साथ हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं और एक पूरा अच्छा प्लान बनता है तो निश्चित तौर से वहां से निवेश और भारत की तरफ अधिक आ सकता है। और साइप्रस जो हमारा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक गलियारा की हम बात करते हैं कनेक्टिविटी के लिए, उसके लिए भी जो साइप्रस है काफी भूमिका अदा कर सकता है भारत और यूरोप को जोड़ने के लिए, क्योंकि वो ऐसी स्ट्रेटेजिक जगह पे है जहां पे मेडिटेरेनियन के अंदर है और अफ्रीका के देश भी वहां से बहुत दूर नहीं है और पश्चिम एशिया के देश भी वहां से पास हैं। तो इसलिए मुझे लगता है सोची समझी नीति के मुताबिक भारत ने इनके साथ अपनी रिलेशंस को अपग्रेड किया है।
1: इससे पहले कि बातचीत को आगे बढ़ाएं, सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के बारे में क्या कहा।
0: रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: तो प्रोफेसर सचदेव, जैसे भी हमने सुना प्रधानमंत्री को कि रक्षा और सुरक्षा दोनों की जो उन्होंने बात कही, डिफेंस कोऑपरेशन की दोनों देशों के बीच में बात कही, तो आज दोनों देशों के बीच में एक काउंटर टेररिज्म पर भी एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप के लिए भी एक एमओयू साइन हुआ है। साथ ही दोनों देशों ने डिफेंस कोऑपरेशन के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया है 2026 से 2031 तक के बीच में। तो भारत साइप्रस संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में रक्षा और समुद्री सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
2: एक तो ये है क्योंकि पूरी दुनिया का, जैसा आप जानते हैं, वातावरण काफी तनावपूर्ण है और क्योंकि साइप्रस का अपना एक तनावपूर्ण हिस्ट्री रही है। और तीसरी बात यह है क्योंकि जैसे यूक्रेन का युद्ध अभी चल रहा है और उसके चलते यूरोप के जितने भी देश हैं और साइप्रस भी उसका हिस्सा है, तो उसमें पूरे का पूरा आप देखते हैं कि जो सुरक्षा का जो प्रबंधन है पूरे यूरोप के अंदर, उसके अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। और ट्रांस एटलांटिक जो पार्टनरशिप है,

0: था कि आने वाले सालों में 2030 तक यूरोप के पूरे देश मिलके 800-900 बिलियन यूरो और ज्यादा डिफेंस के ऊपर खर्च करेंगे। तो हम देखते हैं कि अभी जैसे प्रधानमंत्री पहले भी गए थे वहां पे चार देशों में जैसे मैंने कहा, और जर्मनी और फ्रांस के साथ भी हमारे अच्छे सुरक्षा संबंध बड़े हैं पहले डिफेंस के, तो उसमें जो पूरी नई पूरा डिफेंस इंडस्ट्री वहां पे जो पूरा बढ़ रहा है, काफी उसके अंदर निवेश हो रहा है। और भारत की हमारी जो है अपनी एम्बिशन है कि एक मेक इन इंडिया के अंदर हमारा डिफेंस मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफेंस इंडस्ट्री को हम मजबूत कर रहे हैं, और काफी अभी पिछले कुछ सालों में निर्यात भी हमारा डिफेंस से हुआ है। तो ये पूरा एक प्लान है जिसके अंदर हम उसको साइप्रस को अलग करके भी देख सकते हैं, और पूरे यूरोप के साथ जो है हमारा जो संबंध जैसे प्रधानमंत्री ने बोला उसी पूरे संबंध के अंदर व्यापार की बात, निवेश की बात, तकनीक की बात और ग्रीन ट्रांजिशन की बात तो करते हैं, लेकिन साथ में अभी सुरक्षा और डिफेंस एंड सिक्योरिटी वाला जो मामला है ये भी एक बहुत अहम मुद्दा उभरता हुआ आ रहा है। और ये जब हम देखते हैं कि जब साइप्रस के राष्ट्रपति भी यहाँ पे हैं तो एक हमने पूरा रोड मैप पूरा डिफेंस कोऑपरेशन का वो साइप्रस और भारत के बीच में 5 साल के लिए वो भी एक पूरा तैयार किया है। और आतंकवाद के प्रति तो दोनों देशों की पहले से ही एक जैसी सोच रही है, और क्योंकि वो भी उससे जूझते रहे हैं पहले, तो इसलिए जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म है उसका भी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय संबंधों के प्रति भी और भारत के जो संबंध है यूरोपीय संघ के उसके अंदर भी इन दोनों के आने से काफी मजबूती मिलेगी।
1: जी
0: तो ओवरऑल संबंध है वो पूरा यूरोप के साथ हमारा संबंध है। जब वो 2004 में जब यूरोपीय संघ को साइप्रस ने ज्वाइन किया था
1: जी
0: तो वो एज ए डिवाइडेड साइप्रस वहां पे उन्होंने ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर वो जो है यूरो जोन का भी हिस्सा बन गए हैं। तो जो यूरोपीय संघ की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर भी काफी अच्छी भूमिका वो निभा रहे हैं, क्योंकि अब भारत को अपना अच्छा दोस्त मानते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो उनकी चिंताएं भारत समझता है कि हमारी चिंताएं हैं, और क्योंकि तो उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है उसका फायदा भारत भी लेना
1: जी
0: चाहता है, इसलिए प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और कनेक्टिविटी और ये सब बातें को
1: जी
0: आगे बढ़ाने के लिए इसको पूरी रणनीतिक साझेदारी हमारी उनके साथ बन रही है।
1: एक आखिरी सवाल आपसे प्रोफेसर सचदेव है, भारतीय बिजनेसेस हैं जो यूरोप तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, उसके लिए तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं कि साइप्रस एक लॉन्च पैड के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा, बट इसके अलावा अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण एक वाइडर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन खाड़ी और उत्तरी अफ्रीका के बाजारों के लिए एक आधार के रूप में और लॉजिस्टिक हब के रूप में साइप्रस कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है भारतीय बिजनेसेस के लिए?
0: नहीं, भारत के बिजनेस देखिए ऑलरेडी वहां पे काफी हमारा जैसे निवेश वहां से आ रहा है, काफी भारतीय वहां पे बसे भी हुए हैं, और अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा था कि हम जो मोबिलिटी और माइग्रेशन के
1: जी
0: एग्रीमेंट है और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बारे में भी बात काफी आगे बढ़ चुकी है, तो उसके बारे में भी कुछ समझौते जल्दी होने की उम्मीद है। उसका मतलब ये है कि दोनों सरकारें ये कोशिश करेंगी कि जो भारतीय वहां जाते हैं वहां काम करते हैं उनके लिए भी काफी सुविधा हो जाए, कि वो आराम से वहां पे जा पाएं और अपने व्यापार को वहां पे स्थापित कर पाएं और दोनों देशों के बीच में संबंध वो बढ़ाएं। और इसीलिए क्योंकि पूरे जो जैसे आपने कहा कि जो उनकी भौगोलिक जो स्थिति है वो, हालांकि हर देश जैसे यूरोप में भी होता है अपने आप को कहता है कि हमारी भौगोलिक स्थिति अच्छी है, तो आप उसको एज ए गेटवे आप यूरोप के मान सकते हैं। चाहे आप इटली में गए थे तो इटली के प्रधानमंत्री वो कहती थी कि आप यहाँ से इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन जो सी है दोनों का मिलाप
1: जी
0: होता है तो इंडो मेडिटेरेनियन जो बनता है। इसी तरीके से दूसरे देश भी कहते हैं, फ्रांस की
1: जी
0: भी, सब देशों की अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन इसकी एक क्योंकि खास भूमिका है यूरोप के अंदर, और जिस तरीके की जियोपॉलिटिकल टेंशन इस वक्त इस पूरे इलाके में है उसके अंदर मुझे लगता है भारत के लिए उसकी जो स्थिति है उसके साथ अच्छे संबंध बनाना, अच्छे संबंध हमारे हैं उनके साथ, लेकिन उन संबंधों को और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज करना और उनको प्रगाढ़ बना के उसको आगे बढ़े, तो उसमें दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा, हमारे लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से
1: जी
0: भी, और वैसे भी यूरोपीय संघ के अंदर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए अच्छा मुझे लगता है मौका मिलेगा।
1: प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, आप आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और अपने विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया।
1: श्रोताओं, आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर।

दिल ने फिर याद किया सुनने वाले सभी श्रोताओं का। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन कीजिए स्वीकार। आपकी रेडियो दोस्त श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज दिल याद कर रहा है उस दिन को जब आकाशवाणी इंदौर की स्थापना हुई थी, और आज से 70 साल पहले ये हुआ था। तो आज हम मना रहे हैं आकाशवाणी इंदौर का 71वां स्थापना दिवस। केवल ये दिन एक उत्सव का दिन नहीं है, बल्कि भावनाओं, यादों और अपनत्व का पर्व है। रेडियो और श्रोताओं का रिश्ता हमेशा से दिल का रिश्ता रहा है। एक ऐसा साथी है रेडियो, जो बिना देखे ही हर पल साथ निभाता है। कभी सुबह की ताजगी बनकर, कभी शाम की मधुर धुन बनकर, तो कभी मुश्किल समय में हौसला बनकर रेडियो ने हर दिल में अपनी खास जगह बनाई है। हर दिल की धड़कन में बसा है रेडियो का प्यार, हर दिल की धड़कन में बसा है रेडियो का प्यार। सालों से यूं ही कायम है ये खूबसूरत संसार।

प्रिय श्रोताओं, आप सभी हमारे लिए केवल श्रोता नहीं बल्कि परिवार और सच्चे दोस्त हैं। दुनिया में बहुत से रिश्ते समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन रेडियो और श्रोताओं की दोस्ती हमेशा वैसी ही रहती है, सच्ची, आत्मीय और दिल से जुड़ी हुई। आवाजों का रिश्ता है एहसासों की कहानी है। आवाजों का रिश्ता है एहसासों की कहानी है। रेडियो और श्रोताओं की दोस्ती बहुत सुहानी है।

श्रोताओं, आपसे जो दोस्ती है वो हमेशा ही हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आपकी फरमाइशें, आपके संदेश और आपकी प्रतिक्रियाएं जब हमारे पास पहुंचती हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना कोई बेहद करीब हमसे बातें कर रहा हो। नजरें कभी मिली नहीं फिर भी दिल करीब है, नजरें कभी मिली नहीं फिर भी दिल करीब है, रेडियो के संग बिताए लम्हे बहुत ही अजीब हैं। और साथ ही ये लम्हे जो हैं वो बहुत खूबसूरत भी हैं, क्योंकि आप और हम कभी मिले नहीं लेकिन हमारे दिल हमेशा आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और अगर आप हमारे साथ हों तो हमारे कार्यक्रम और भी खूबसूरत हो जाते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आज हम बातें कर रहे हैं आकाशवाणी के 71वें स्थापना दिवस की। श्रोताओं, इन 71 वर्षों के सफर ने अनगिनत इस सफर में अनगिनत यादें जुड़ी हुई है। इस मंच ने संगीत, साहित्य, संस्कृति और समाज को जोड़ने का काम किया है। कितने ही गीतों ने लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी, कितनी ही बातों ने लोगों को प्रेरणा दी और कितनी ही आवाजों ने अकेलेपन को दूर किया है। यही कारण है कि रेडियो की ये दोस्ती आज भी उतनी ही खास और अनमोल है जैसे कि शोले फिल्म की ये दोस्ती।

गीतों में मुस्कान मिली, गीतों में मुस्कान मिली, बातों में अपनापन, आकाशवाणी ने बांटा है हर घर में मधुर स्पंदन। दोस्ती ऐसी और कहां जो हर पल साथ निभाए, रेडियो की प्यारी दुनिया हर दिल को अंदर तक छू जाए।

0: तो आइए श्रोताओं, इस खुशी के अवसर पर हम सब मिलकर इस खूबसूरत रिश्ते का जश्न मनाएं। गीतों की मिठास, बातों की गर्माहट और दोस्ती के इस अनमोल एहसास के साथ एक बार फिर से कहें, रेडियो सिर्फ आवाज नहीं, दिलों को जोड़ने वाला एक खूबसूरत एहसास है। आप सभी श्रोताओं को आकाशवाणी इंदौर के 71वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: और बाप रे,

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।
1: श्रोताओं, इसी के साथ दिल ने फिर याद किया कार्यक्रम समाप्त होता है। 8:45 होने को हैं, आप सुनेंगे समाचार संध्या।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
3: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
2: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
3: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
4: Discussions focused on enhancing cooperation.
5: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
4: इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म।
2: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
6: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
2: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। यह सफल परीक्षण भारत के रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। यह देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट यूजी परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल त्रिशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। त्रिशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने त्रिशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला की वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए, तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बनाया जाए जिन्हें तोड़कर दाखिल होना मुमकिन न हो। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में मुख्तसर दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 की कामयाबी के साथ आजमाइश की है।

0: भारत ने अफगानिस्तान में टीकों से मुतालिक 20 टन अहम तरीन सामान रवाना किया है ताकि बच्चों की टीकाकारी के प्रोग्राम
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए श्रोताओं, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की गरिमामयी उपस्थिति में 23वां सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अलंकरण समारोह और रुस्तम जी मेमोरियल व्याख्यान।
2: मोहन और डी एंड्रयू, आइए विज्ञान भवन चलें।

0: नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डीएनट्रू के साथ आकाशवाणी की ओर से। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais, and now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन वीर सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है। अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित कीर्तिमान स्थापित किए हैं और

0: The 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And right now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं. उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है. हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी. पिछले 6 दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है. सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा की सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए 2 वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं. हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं: सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण. गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है. अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है. गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है. साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है. सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. पिछले 1 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं. यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है. साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है. यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है. सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है. इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है. महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है. हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है. अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ. जय हिंद.
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का. और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा.
3: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है. यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और अद्वितीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
4: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
5: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
4: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
5: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृहमंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगत से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
4: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लड लाइट, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
6: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
4: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के करकमलों से।
0: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they have done for the country and what they have achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
7: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi area domination ke liye aage badh rahi thi. तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्म पत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात गृहसभा की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदेवी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

रविंद्र राठौर उप कमांडेंट। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस, शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट।

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक।

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह
1: एवं नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ अ ईयर। He walks to the podium.
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी निर्देशक आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय, श्री महेश कुमार अग्रवाल

विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण, अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा, कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए अति गौरव की बात है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए
गृह मंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया, जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को, उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे, और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया, और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर, दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई, इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई, अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इस चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है, और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा। मगर आपने, आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते। हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन, इस सबके साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हमें

कई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरे को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नार्कोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है। और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल 2,70,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1,262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एक बार एयर स्ट्राइक करकर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार करकर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है। और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। और मैं मानता हूं उसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है
कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद्य बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से, निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इन्फॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए।

और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिस सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा गिरीड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के में कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण

0: होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
1: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
0: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट के रूप में प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
1: धन्यवाद श्रीमान। और
2: हेलो एवरीवन टू द होम मिनिस्टर बाय द डीजी ऑफ द Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
0: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
3: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
2: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय द राष्ट्रगीत।
4: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का। इसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And, well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life. All the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam G. Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस, समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है। हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा, कमल सिंह, हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। लीजिए सुनिए चित्रगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है ताजमहल फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, गीत साहिर का, संगीत रोशन का।

0: इसी गीत के साथ चित्रगीत अब समाप्त होता है।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। रात्रि के 10:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं विदुषी शोभा गोटू का उपशास्त्रीय गायन। पहले सुनिए ठुमरी, राग है मिश्र खमाज़।

अभी आप सुन रहे थे ठुमरी। लीजिए अब सुनिए दादरा। कलाकार हैं विदुषी शोभा गोटू।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत में विदुषी शोभा गोटू का उपशास्त्रीय गायन। इसमें आपने सुनी मिश्र खमाज राग में पहले ठुमरी और फिर दादरा। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत समाप्त होता है। अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।

0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा है कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
1: Discussions focused on enhancing cooperation.
2: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
1: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।